सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दोस्त लोग सवेरे सवेरे आ गए बाड़ी राव रेडियो दोस्त दीपाली आ करे तरी रोवर सब के सुप्रभात प्रणाम। ठीक सोचनी श्रोता लोग, कार्यक्रम है आपन दी आपन देखभाल। दोस्त लोग सवेरे सवेरे हम रोवर से ना मिली तबले ई लग भी ना करेला की सवेर भइल बा। तो दोस्त लोग सवेर ता हो गइल बा, तो चली यही के साथ शुरुआत कई जाओ अपना प्रोग्राम के। अहम बताई आज के हेल्थ टिप्स। दोस्त लोग आज जानल जाए सबसे पहले पाइनएप्पल यानी अनानास के घरेलू नुस्खा। एसिडिटी में पाइनएप्पल के जूस के सेवन करी, ये एंजाइम से भरल होला। खाए के बाद अगर पेट अधिक भरल व भारी महसूस हो रहा हो के, तो आधा ग्लास ताजा अनानास के जूस पी। सारा बेचैनी और एसिडिटी ऐसे खत्म हो जाए। पाइनएप्पल के अपना डाइट में इस्तेमाल कर बढ़त उम्र के साथ कमजोरी, चक्कर आयल और अनिद्रा के भगावल जा सकेला। रोग से लड़े के क्षमता बढ़ावे खातिर अनानास के जूस लाभकारी है। पथरी के मरीज के अनानास जूस लेवे के कहल जाला, ताकि आगे और स्टोन ना बने। अनानास में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होला, ऐसे दृष्टि दोष दूर होला। अनानास के जूस के मिश्रण कुछ मिनट तक आँख के नीचे लगा के रखे से काफी फायदा होला। तो दोस्तों चलिए अब जानल जाओ सौंदर्य के लाजवाब घरेलू नुस्खा। एगो पपीता के टुकड़ा चेहरा पर रगड़े से चेहरा चमकदार होला। कच्चा दूध में बादाम पीस के मिलाई आ ई पेस्ट के नियमित रूप से चेहरा पर मले से चेहरा आकर्षण लागेला। शकरकंदी के उबाले के पश्चात बचल पानी से फटल होखल एड़ी धोए से वो ठीक होला। बाल के काला करे

धूप में रखी, फिर बाल में हल्का हाथ से मालिश करी। इसे बाल के जड़ मजबूत हुई और ये बाल लंबा हुई। गोभी के पत्ता के पीस के और के रस में थोड़ा सा शहद मिला के चेहरा पर लगाई और ये सूखे पर धोली। इसे त्वचा के खुश्की व कालापन कम होला। पालक के काट के उबाल ली आ ई पानी के हल्का हाथ से चेहरा पर लगाई। इसे त्वचा में निखार आई। खीरा के रस में थोड़ा सा दूध मिला के चेहरा पर लगावे से रंग साफ होला। खीरा के टुकड़ा के चेहरा पर रगड़े से चेहरा के दाग धब्बा कील मुहासा व छाई कम होला। श्रोता दोस्त, ई तरह है सौंदर्य के लजबाब घरेलू नुस्खा। चलिए अब हम बतावे जात बानी कुछ उपयोगी घरेलू नुस्खा। बथुआ के भाजी के पानी में उबाल के वो पानी से हाथ पैर धोए से त्वचा मुलायम हो जाला। बच्चा के सर्दी लग जाए तो वो लोग के हाथ पैर के नाखून पर ब्रांडी लगाई और छाती व पीठ पर भी ब्रांडी लगा के मालिश करे से सर्दी के असर मिट जाला। शिशु के पतला दस्त लाग रहल होके तो बड़ा हरड़ ठंडा पानी में घीस के एक छोटा चम्मच भर सुबह दोपहर शाम के पिलावे से पाचन क्रिया सुधर जाला। और पतला दस्त लागल बंद हो जाला। अगर कब्ज होके तो बड़ा हरड़ गर्म पानी में घीस के छोटा चम्मच भर दिन में दो बार ये दो तीन दिन तक लेवे से कब्ज मिट जाला। नाभि में प्रतिदिन तेल या शुद्ध घी रात के लगा के सूते से होठ ना फाटेला। होठ मुलायम चमकीला व गुलाबी हो जाला। तो दोस्त लोग, आप चली हम बता दी चक्कर आवे तक का करे के चाहिए। कभी कभी केहू के भी चक्कर आवेला। बैठे रहे के बाद उठे पर आँख के सामने अंधेरा छा जाला और ई चक्कर आवेला। ई स्थिति में एक सफल सिद्ध नुस्खा हम बतावे जातानी। एगो कड़वा सूखा लंबा या गोल लौकी या तुम्बी जौन पकावे के बाद अपने आप सूख चुकल होके। लेके एक डंठल के तरफ से काट दी ताकि अंदर के पोला यानी खोखलापन दिखाई दे। एकरा

इमे ऊपर तक पानी भर के 12 घंटा तक रखी, फिर हिला के पानी निकाल के साफ कपड़ा से दो बार छान ली। ये पानी के ऐसन बर्तन में भरी जिमे राउर नाक डूब सके। नाक डुबा के इमे खूब जोर से सांस खींची ताकि पानी नाक से अंदर चढ़ जाए। दिन भर नाक से पानी टपकत रही। पानी खींचे के बाद नाक नीचा करके आराम करी। ये उपाय से ये व्याधि सदा खातिर नष्ट हो जाई। तो चलिए अब जानल जाओ अखरोट के अचूक फायदा के बारे में। बच्चा के बहुत ज्यादा क्रीमी हो गए लोके तो उ लोग के रोज एगो अखरोट की गिरी खिलाई, ऐसे सारा क्रीमी मल के रास्ता से बाहर आ जाए। छिलका और गिरी सहित अखरोट के बारीक पीस ली आ रोज सुबह शाम ठंडा पानी के साथ लगातार 15 दिन तक एक एक चम्मच ली, पथरी मूत्र मार्ग से बाहर आ जाए। अखरोट के तेल लगावे से दांत खाज में बहुत फायदा मिलेगा। बच्चा के बिस्तर गीला करे के आदत छुड़ावे खातिर बच्चा के रोज सूते से पहले 2 अखरोट और 15 किशमिश खिलाई। पंद्रह दिन ये प्रयोग करके देखी, बच्चा की आदत अपने आप छूट जाए। एक एक खाए से नर्वस सिस्टम की फायदा और दिमाग की तरावट मिलेगा। अखरोट के साथ कुछ बादाम और मुनाका खाई वह एकरा ऊपर से दूध पिए से वृद्धा के बहुत फायदा मिलेगा। अखरोट खाए में थोड़ा सावधानी रखे के चाहिए क्योंकि अखरोट गर्मी करेला और कफ बढ़ावेला, ऐसे एक बार में 5 से ज्यादा अखरोट ना खाई। ज्यादा अखरोट खाए से पित्त बढ़े की संभावना रहेला, जिसे मुंह में छाला, गला में खुश्की या खुजली और अजीर्ण होके की संभावना रहेला। तो दोस्तों चलिए अब जानल जाओ एलर्जी से बचे की कुछ घरेलू नुस्खा। धूल मिट्टी से नाक में एलर्जी हो जाला तो ये सब परेशानी खातिर चली हम बता देता नहीं कुछ नुस्खा। सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपर और मिश्री ये सब द्रव के चूर्ण 10-10 ग्राम, बीज निकालल होखल मुनाका 50 ग्राम, गोदंती हरताल भस्म 10 ग्राम। तुलसी के 10 पत्ती इस सब के मिला के खूब घोंट के पीस ली और 3-3 रत्ती के गोली बना के छाया में सुखा ली। आ 2 गोली सुबह व 2 गोली शाम के गर्म पानी के साथ 3 माह तक सेवन करी। ठंडा पदार्थ बर्फ, दही, ठंडा पेय से परहेज करी, ऐसे नाक की एलर्जी दूर हो जाएगी।

0: कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल। अब दी इजाजत दीपाली के जाए के, फिर हम लेके आए कल कुछ दूसर नुस्खा। नमस्कार।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज आदर्शों पर चलना सिखाते हैं, शिव जीने की असली राह दिखाते हैं। अब आगे
9: नमन, एक बार उठाकर बात कर लो, कब तक ऐसे ही फोन इग्नोर करोगे? आखिर पापा हैं वो तुम्हारे।
10: आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक प्लीज।
11: नमस्ते।
9: नमस्ते,
11: ये लीजिए प्रसाद। हर हर महादेव।
9: हर हर महादेव। आई एम सॉरी पर आपको पहचाना नहीं, आप?
11: मैं आपका महादेव? मेरा मतलब नील, मेरा नाम नील है। आप मुझे नहीं जानते, बट क्या मैं आपके कुछ मिनट ले सकता हूँ प्लीज?
10: हाँ हाँ,
11: थैंक यू सो मच। यहाँ जरा साइड में आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था, मेरा नाम नील है, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने ही वाला हूँ। रास्ते में मिले लोगों से कुछ बातें करता हूँ, उनकी कहानियां सुनता हूँ और उन्हें अपनी कुछ कहानियां सुनाता हूँ। Would you mind being a part of my journey?
10: Wow, Neil, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे पास है ना कुछ टाइम? No problem. क्यों सृष्टि?
9: हाँ, no problem. कहिए, क्या करना होगा हमें?
11: कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बातचीत।
9: ठीक है, let's start.
11: तो आपका नाम?
9: सृष्टि।
10: Hi, I'm Naman.
11: आप लोगों की अभी अभी शादी हुई है?
10: हाँ,
9: एक महीना पहले।
11: अच्छा, तो आप लोग हनीमून पर यहाँ आए?
9: Yes, kind of.
11: Lovely. आप लोग एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं?
10: यही कोई 6 साल।
11: वाओ। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है?
9: मेरे घर में मम्मा, पापा और मेरा भाई विहान।
11: और आपके घर में नमन?
10: कोई नहीं।
9: नमन?
10: डैड है।
11: क्या आपको इस टेंपल की कहानी पता है?
9: टेंपल की कहानी मतलब त्र्यंबकेश्वर की कहानी?
10: नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है?
11: हाँ बिल्कुल पता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं।
9: हाँ प्लीज।
11: तो कहानी कुछ ऐसी है कि महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपोवन में रहकर साधना और तप किया करते थे। उनके साथ कुछ और ब्राह्मण परिवार भी रहते थे। एक बार जाने क्या हुआ कि उन ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई।
12: सुनिए।
13: क्या हुआ भगवान?
12: ये अहिल्या ना अपने आप को रानी ही समझती है।
13: अहिल्या? कौन? महर्षि गौतम की पत्नी?
12: सुनिए जी, आप कुछ कीजिए, उस अहिल्या को उसके पति के साथ ही इस गांव से बाहर निकाल दीजिए।
13: पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? महर्षि के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचना बहुत कठिन है।
12: सुनिए, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, यदि आपके मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम है तो मेरी ये इच्छा पूरी कर दे बस।
13: देखो भाई, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है हमें ये षड्यंत्र रचना ही होगा।
14: महर्षि गौतम,
15: हाय हाय।
14: महर्षि गौतम,
15: हाय।
14: महर्षि गौतम
15: हाय हाय
14: महर्षि गौतम
15: हाय हाय
16: ये क्या हो रहा है क्या हुआ कुछ बताइए तो सही
14: तुम हत्या

0: मैं जानता हूँ कि मुझसे गो हत्या जैसा महापाप हो गया है। मैं बहुत लज्जित हूँ। आप जो निर्णय लेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। मैं दंड लेने के लिए तैयार हूँ।
1: दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा।
2: तुम्हें ये आश्रम छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा।
0: हाँ ठीक है, मैं अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ से चला जाऊंगा।
1: गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, समझे?
0: मैं आपके सभी दंडों को भोगने के लिए तैयार हूँ ब्राह्मण देव, किंतु आपसे निवेदन है, आप लोग मेरे प्राश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताइए।
3: ऐसा कुछ बताते हैं कि ऋषि लौट के ही ना आ सके।
2: तो सुनो गौतम, तुम अपने पाप को सारे संसार को बताते हुए पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो।
1: इसके बाद ब्रह्मागिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा गंगा जल से स्नान करो और 1000 शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो।
2: इसके पश्चात पुनः गंगा में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो, फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से शिवलिंगों का स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा।
0: ठीक है ब्राह्मण देव, जैसी आपकी आज्ञा।
4: जैसा कि ब्राह्मणों ने कहा था उसके अनुसार महर्षि गौतम ने वो सारे कार्य पूरे किए और अपनी पत्नी के साथ गंगा के तट पर पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे।

0: गौतम मेरे पुत्र आंखें खोलो।
1: प्रभु आप?
0: बोलो पुत्र, क्या वरदान मांगना चाहते हो?
1: भगवान, मुझसे घोर पाप हुआ है, मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। प्रभु,
0: गौतम तुम स्वतः निष्पाप हो।
1: ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु, मुझसे पाप हुआ है?
0: नहीं पुत्र, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, तुम्हारे साथ छल हुआ है, इसलिए तुम पर पाप लगने का तो प्रश्न ही नहीं होता।
1: मेरे साथ छल? प्रभु मेरे साथ छल?
0: हाँ, गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था, इसलिए छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के दुष्ट ब्राह्मणों को दंड मिलेगा, तुम्हें नहीं। बोलो तुम क्या दंड देना चाहते हो उन्हें?
1: प्रभु, उन ब्राह्मणों को दंड दिलाने का अधर्म मैं नहीं कर सकता।
0: ये तुम क्या कह रहे हो?
1: उन्हीं के दंड के कारण तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें। प्रभु क्रोध ना करें।
0: अद्भुत, मुझे तुम पर अभिमान है महर्षि, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम निष्पाप हो, इसलिए तुम्हें दंड तो नहीं मिलेगा, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए तुम मुझसे जो चाहे वो वर मांग सकते हो।
1: मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं सब कुछ पा चुका हूं, किंतु यदि आप मुझे कुछ वर देना ही चाहते हैं तो जिस पावन भूमि पर आपने मुझे दर्शन दिए हैं वहीं पर सदा के लिए वास करें प्रभु।
0: ठीक है महर्षि, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं यहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा, और तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ये ज्योतिर्लिंग धरती पर मनुष्यों को समस्त पुण्य प्रदान करेगा। आयुष्मान भव।
2: वाओ, दैट्स अमेजिंग नील।
3: थैंक्स यार नील, मुझे नहीं पता था ये स्टोरी।
4: माय प्लेजर दोस्तों। अच्छा कहानी तो सुन ली, क्या दोबारा सवालों पर आ सकता हूँ?
3: और भी सवाल हैं?
4: हाँ बिल्कुल है। इस कहानी से आपको क्या सीखने मिलता है?
2: यही कि फॉरगिवनेस मतलब माफ कर देना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भगवान जी खुश हो जाते हैं और रिवेंज के रास्ते बंद हो जाते हैं।
4: वेरी गुड सृष्टि, आप तो प्रो हो गई हैं ऑलरेडी। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां आपके पास एक चॉइस हो बिटवीन रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, तो आप क्या चूज करेंगे नमन?
3: रिवेंज।
2: व्हाट? स्टॉप इट नमन यार, नॉट अगेन, फिर से नहीं।
4: आई एम सॉरी, क्या मैं?
3: यू नो सृष्टि, उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि खुद के पैरों पर खड़े होकर आओ।
2: नमन, व्हाई डू यू फॉरगेट कि वो तुम्हारे डैड हैं?
3: डैड? वो सिर्फ नाम के लिए डैड हैं। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और आज जब मैं सक्सेसफुल हूं तो ही वॉन्ट्स मी बैक।
2: नमन,
4: आप अपने डैड को तो माफ कर ही सकते हैं, है ना नमन?
2: मैंने तुम्हें कितना समझाया है नमन, सुनो आज एक कड़वा सच और सुन लो। तुम्हारे डैड ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, अगर वो तुम्हें उस वक्त घर से बाहर नहीं निकालते ना तो तुम कभी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते।
3: सृष्टि,
2: मैं तुम्हें पिछले 6 साल से जानती हूँ नमन, मैंने देखा है तुम्हें ग्रो करते हुए, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होते हुए, और अब तुम्हें भी ये समझ आना चाहिए अपना ईगो साइड में रख के डैड के पास वापस चले जाओ नमन।
4: सही तो कह रही है सृष्टि, उन्हें माफ कर देने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और फिर उन्होंने जो किया उससे आप ही का भला हुआ ना।
3: हाँ ठीक है, मैं हम डैड के पास जाएंगे।
2: क्या? यस, आई एम सो हैप्पी नमन, फाइनली तुम्हें ये सब समझ आ गया। थैंक यू नील, तुम्हें कुछ बात तो है, नमन भी तुम्हें मना नहीं कर पाया, एक बार में तुम्हारी बात मान ली।
4: बात मुझ में नहीं, महादेव की शक्ति में है। चलिए अब मैं चलता हूँ, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आई मीन तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है?
4: अमरनाथ।
5: तुम अमरनाथ जा रहे हो?
2: कैन वी फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम?
4: इंस्टाग्राम तो नहीं है, पर मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस की एग्जीबिशन है अमरनाथ में। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको वहीं आना होगा।
2: व्हाई नॉट, जरूर आएंगे, है ना नमन?
5: हाँ, पूरे परिवार के साथ आएंगे।
4: तो वहीं मुलाकात होगी, ठीक है? हर हर महादेव।
2: हर हर महादेव।
6: जैन धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है पर्युषण। पर्युषण जिसका उद्देश्य है छोटा सा संसार, गलतियां पार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। कर लीजिए निवेदन स्वीकार, मिच्छामि तुकड़म। मतलब सिंपल है बिड़ू, हम इंसान लोग गलतियों का पुतला है, गलतियां करते रहते हैं, कभी जान के कभी अनजाने में। मगर सोचता हूं मैं गलती करूं और अगर मुझे कोई माफ ना करे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। मगर प्रॉब्लम क्या मालूम, जब हम गलती करते हैं तो हम वकील बन जाते हैं, उसे डिफेंड करते हैं, मतलब उसका ढाल बन जाते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो अपन माय लॉर्ड, मतलब जज बन जाते हैं, उसको जज करने लगते। देख बड़ो, ज्यादा दिल पे नहीं लेने का, माफ कर देने का, सिंपल। बाबा शिव महाराज गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं, शिव महाराज माफ करना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87 894 18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। गंडक नदी में शव मिलने की सूचना पर चलाया गया सर्च अभियान। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 30 वर्ष कैद की हुई सजा। और रंगदारी के मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धूमधाम से पूरे जिले में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की रिक्त सीटों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र एवं इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट का आयोजन शनिवार 10 अप्रैल 2027 को किया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन पत्र भरते समय विद्यार्थियों को सभी आवश्यक विवरण सावधानी पूर्वक दर्ज करने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 3 दिनों के लिए करेक्शन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान निर्धारित विवरणों में आवश्यक सुधार किया जा सकेगा। करेक्शन विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अभिभावकों से अपील की गई कि पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के बाद समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें, ताकि अंतिम समय में तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। आज गंडक नदी में शव दिखने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो प्रशासन अलर्ट हुआ। बताया जा रहा है कि सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर के जन प्रतिनिधि के द्वारा गंडक नदी में नेपाल की ओर से बहकर मानव शव आने की सूचना दी गई थी। प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया। टीम मौके पर पहुंची, जिसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शाहनवाज यूसुफ जई, अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल, थाना प्रभारी जादवपुर, आपदा मित्र सुधीर कुमार, SDRF के 3 सदस्य और मेडिकल टीम के लोग शामिल थे। टीम ने जन प्रतिनिधियों के साथ नाव के माध्यम से गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में पहुंचकर सूचना के आधार पर व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान मौके पर किसी भी मानव शव की बरामदगी नहीं हुई। हालांकि कुछ मृत मछलियों एवं पशुओं के शव देखे गए। टीम ने आसपास के क्षेत्रों में भी सघन जांच की। जांच में मानव शव बरामद नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने नेपाल से आई बाढ़ के कारण बहकर आने वाली मृत मछलियों को देखते हुए आम लोगों से विशेष कर सावधानी बरतने की अपील की है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी के अपवाह क्षेत्र में नाव का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। आमजन नदी में नाव का परिचालन नहीं करें, साथ ही नदी में बहकर आने वाले अथवा मृत मछलियों का सेवन नहीं करें। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी बनाकर काम कर रहा है। आम जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज गोपालगंज में माननीय न्यायालय ADJ 6 की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक कुमार पिता जितेंद्र शाह ग्राम पुरानी किला रोड हथुआ का निवासी है। इसके साथ अखिल शर्मा पिता उमेश शर्मा ग्राम सिंघा टोला पंडितपुरा थाना मीरगंज का रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है और इन्हें 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक आरोपी को 50,000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि गोपालगंज पुलिस के द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में की गई सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर दंड की सजा मिली है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि वादी को दोनों अभियुक्तों ने बहला फुसलाकर अगवा किया था और बलात्कार किया था। इसी मामले में 2022 में दोनों को गिरफ्तार कर इन पर केस दर्ज किया गया था और तभी से दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही थी और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई। रंगदारी के मामले में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के राम बालक गिरी पिता सीताराम गिरी साकिन बड़का गांव थाना मीरगंज को मोबाइल फोन के माध्यम से रंगदारी मांगी गई थी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए अभियुक्त श्याम कुमार यादव को गिरफ्तार किया जो मीरगंज के कालो पट्टी निवासी बाबूलाल यादव का पुत्र है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। साथ ही उसके निशानदेही पर और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रंजीत कुमार राय पिता वासुदेव राय साकिन भैरव पट्टी थाना मीरगंज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त श्याम कुमार यादव से विधिवत पूछताछ में उसने बताया कि वह एक जमीन खरीदना चाहता था लेकिन जमीन का रेट राम बालक गिरी के द्वारा बढ़ा दिया गया था। इसी बात को लेकर राम बालक गिरी को उलझाने के उद्देश्य से स्वयं को विशाल सिंह का आदमी बताते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। अब इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई कर रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के दंगसी गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पिता की मौत हो गई। पुत्र की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक सिवान जिला के जामो थाना क्षेत्र के खुशहाल डुमरी गांव के रहने वाले दीनानाथ महतो हैं, जो अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और इनके पुत्र का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही परिजनों में शोक व्याप्त है। आज पूरे जिले में धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग पूरे उत्साह और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। अपने अपने तरीके से भक्त भगवान श्री कृष्ण का नमन और पूजन कर रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर मटका तोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। माझा के लंगटू हाता में भी दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां बढ़ चढ़कर युवाओं ने दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा भी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भक्तों ने अपने अपने स्तर से दही हांडी कार्यक्रम का भी आयोजन किया। पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भक्त मना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बरौली थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। लंबित कांडों, फरार अभियुक्तों और वारंट तथा कुर्की और शराबबंदी की कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी, अभिलेखों के बेहतर संधारण और थाना परिसर की साफ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। 18 लीटर देशी शराब के साथ कटिया थाना की पुलिस ने अभियुक्त अमेरिका चौहान को गिरफ्तार किया, जो रामायण चौहान का पुत्र है और रूपी बगही का रहने वाला है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शहर के कमला राय कॉलेज रोड में एक निजी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत महिला के कुल्हे का ऑपरेशन करने के लिए निजी हॉस्पिटल में परिजन भर्ती किए थे और यहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजन हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। मृत महिला सिवान के कबीरपुर गांव के संजय गुप्ता की 54 वर्षीय पत्नी, जो पूर्व BDC सदस्य रही हैं, तारा देवी बताई जा रही हैं। पुचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक पक्ष से प्राथमिकी अभियुक्त मुकेश शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो वर्मा शाह का पुत्र है और मथैली खास थाना उचका गांव का निवासी है। तो वहीं इसी मामले में दूसरे पक्ष से आरोपी सुधीर शाह और लाल बाबू शाह, ये दोनों सगे भाई है और काशी शाह के पुत्र है, मथैली खास थाना उचका गांव के ही निवासी है। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त सुमित कुमार, पिता नरेंद्र यादव, साकिन बंतरिया धूर, थाना भोरे को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के बाद विधिवत आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही इस मामले में 2 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र से पुलिस ने 188 लीटर देशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भोरे थाना क्षेत्र के ग्राम पांडे खजुराहा के पास छापेमारी की। इस दौरान एक गाड़ी को पकड़ा गया। कार को रोककर जब विधिवत तलाशी ली गई, तो कार में सवार तस्कर वाहन से उतरकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर से 188 लीटर देशी शराब मिली, जिसे पुलिस ने कार के साथ जब्त किया है। वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध अब कांड दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र में NH-27 पर माधोमठ गांव के पास छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहन यादव को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसके भी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भोरे के भिंगारी जाने वाली सड़क पर छापेमारी करते हुए 2 शराब तस्करों को 18 लीटर से अधिक शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी वीरेंद्र कुमार प्रजापति है तो दूसरा आरोपी ज्योतिष कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों विजयपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने विशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहिनिया में छापेमारी करते हुए 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। साथ ही 243 लीटर से अधिक देशी शराब पकड़ी गई है। इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी तस्कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर अज्ञात तस्करों पर मामला दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट की घटनाओं में 3 लोग घायल हैं। घायलों में मीरा टोला गांव की चंदा देवी, यादवपुर गांव की सुमन कुमारी एवं कुंदन कुमार का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक अन्य समाचार के अनुसार पूरे प्रखंड पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। गंडक नदी में शव मिलने की सूचना पर चलाया गया सर्च अभियान। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 30 वर्ष कैद की हुई सजा। और रंगदारी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धूमधाम से पूरे जिले में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 9707065775।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
14: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त RJ दिव्या। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस की। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ताकि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस विषय को गहराई में समझने के लिए हमारे साथ है सेहतिया भैया। भैया, हेपेटाइटिस क्या होता है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस में क्या मनाया जाता है?
15: देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन आ जाना। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, इससे लीवर खराब हो सकता है और कैंसर तक हो सकता है। इसलिए हर साल 28 जुलाई को लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी चलिए इसे समझते हैं और आसान बनाते हैं। मतलब इस बीमारी में जो रुकावटें हैं, जैसे टेस्ट ना होना, इलाज महंगा होना या जानकारी की कमी, उन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।
14: हेपेटाइटिस से दुनिया और भारत में कितने लोग प्रभावित हैं?
15: हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है। दुनिया में करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी या सी बीमारी के साथ जी रहे हैं। भारत की बात करें तो करीब 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 6 से 12 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जब बीमार होती है तो इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, पैसों पर, कामकाज पर और पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है।
6: सेहतिया भैया, हेपेटाइटिस कितने तरह का होता है? क्या हर तरह का हेपेटाइटिस एक जैसा होता है या कोई ज्यादा खतरनाक भी होता है?
15: हेपेटाइटिस 5 तरह के वायरस से होता है, ए बी सी डी और ई। ये सब एक जैसे नहीं होते। हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर गंदा खाना या पानी पीने से फैलता है। ये थोड़े हल्के माने जाते हैं और ज्यादातर लोग उचित इलाज, आराम और साफ सफाई से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये खून के जरिए फैलते हैं, जैसे संक्रमित सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बिना जांच के टैटू वगैरह से। अगर समय पर इलाज न हो तो ये लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लीवर सिरोसिस या कैंसर तक का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस डी थोड़ा अलग है, ये अकेले नहीं होता, ये सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है। जब बी के साथ डी भी हो जाए तो बीमारी और भी गंभीर हो जाती है।
6: सेहतिया भैया, आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई खाने पीने से फैलता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?
15: हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर संक्रमित खाना और पानी पीने से फैलता है। कई बार लोग बाहर का खुला खाना खाते हैं या गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं तो ये वायरस पेट में चला जाता है और लीवर में सूजन कर देता है। इन दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं, जैसे कि शुरू में थकान लगना, भूख कम हो जाना, हल्का बुखार, पेट में दर्द या भारीपन, उल्टी जैसा मन करना, पेशाब गहरा हो जाना और सबसे खास लक्षण है पीलिया यानी आंखें और चमड़ी पीली पड़ जाना। अब बात करें बचाव की तो सबसे पहला उपाय है साफ सफाई। खाने से पहले और शौच के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना, साफ और उबला हुआ पानी पीना, घर का बना ताजा खाना खाना और खुले में कटे फल सब्जियां नहीं खाना चाहिए। अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच कराएं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा खतरनाक हैं। ये खून के जरिए इंजेक्शन या संक्रमित सुई से फैलते हैं। ये लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं और धीरे धीरे लीवर को खराब कर सकते हैं। इससे सिरोसिस या लीवर कैंसर तक हो सकता है। हेपेटाइटिस डी तो सिर्फ उसी को होता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है, मतलब ये अकेले नहीं आता। देखिए, हेपेटाइटिस डी अपने आप नहीं होता, ये सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो। इसीलिए हेपेटाइटिस बी से बचाव ही हेपेटाइटिस डी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। ये बात है मेरे मौसी के बेटे रमन की। बहुत सीधा साधा लड़का था। जब कॉलेज में था तो एक बार बीमार पड़ा और एक लोकल क्लिनिक से खून चढ़वाया, लेकिन शायद खून की सही जांच नहीं हुई थी। कुछ ही महीनों बाद रमन को हल्का बुखार, थकावट और कभी कभी पेट में भारीपन महसूस होने लगा। शुरुआत में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें और स्किन पीली पड़ने लगी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जांच में पता चला रमन को पहले से ही हेपेटाइटिस बी था और अब हेपेटाइटिस डी हो गया है।
6: तो क्या ये डबल वायरस और ज्यादा खतरनाक हो सकता है?
15: बिल्कुल भाई, डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस डी लीवर पर और तेज हमले करता है। अगर इलाज में देरी हो जाए तो लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रमन की बीमारी वक्त रहते पकड़ में आ गई। डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया, खास दवाइयों का कोर्स चलाया। रमन ने दवा समय पर ली, आराम किया और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा।
6: तो फिर वो ठीक हो गया?
15: हाँ, आज रमन एकदम स्वस्थ है और मजबूती से जिंदगी जी रहा है।
8: तो दोस्तों, हेपेटाइटिस डी का खतरा तभी होता है जब पहले से हेपेटाइटिस बी हो। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाएं। और हाँ, खून चढ़ाने या इंजेक्शन लगवाने से पहले साफ सफाई और जांच की पुष्टि जरूर करें।
6: सेहतिया भैया, हेपेटाइटिस सी के लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?
15: आरजी, हेपेटाइटिस सी भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर पर असर डालता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके शुरुआती लक्षण नजर ही नहीं आते। अब मैं आपको ट्रक चालक कालीचरण की आप बीती सुनाता हूँ। सालों साल वो सड़क के किनारे कभी होटल तो कभी ढाबों पर खाना खाता रहा। जब तबीयत बिगड़ती तो मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेता था। एक बार उसे कमर में दर्द हुआ तो लोकल क्लिनिक से इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन वहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ महीनों बाद उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी।
6: तो कालीचरण को क्या लक्षण दिखने लगे?
15: बस यही तो परेशानी है। हेपेटाइटिस सी के लक्षण धीरे धीरे आते हैं। कालीचरण को हर वक्त थकान महसूस होती थी, काम में मन नहीं लगता था, हल्का बुखार रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये गंभीर बीमारी के संकेत हैं। फिर एक दिन कालीचरण की हालत बहुत बिगड़ गई। उसका पेट फूला हुआ सर लगने लगा, कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार उसे शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां जब खून की जांच हुई तो पता चला कालीचरण को हेपेटाइटिस सी है। डॉक्टर ने बताया कि संक्रमित सुई या खून के जरिए उसे ये बीमारी हुई है।
6: फिर उसका इलाज कैसे हुआ?
15: डॉक्टर साहब ने काली जरड़ को समय पर दवाइयाँ लेने, पूरा कोर्स खत्म करने और खाने पीने में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है, बस धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। काली चरण ने करीब 6 महीने तक दवा ली, परहेज किया, फिर पूरी तरह ठीक हो गया और आज वो फिर से ट्रक चला रहा है।
6: सेहतिया भैया, सरकार की तरफ से इस बीमारी को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?
15: सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए काफी मेहनत कर रही है। साल 2018 में भारत सरकार ने एक खास योजना नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू की थी। इस योजना का मकसद है कि 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूरी तरह खत्म किया जाए और बाकी वायरल हेपेटाइटिस का बोझ भी कम किया जाए। इस योजना के तहत सरकार कई काम कर रही है। लोगों को बीमारी के बारे में जानकारी दी जा रही है, साफ सफाई और सुरक्षित इंजेक्शन देने की आदतें बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि लोग हेपेटाइटिस के लक्षण पहचान सकें और समय पर इलाज करा सकें। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहां डॉक्टरों और नर्सों की खास ट्रेनिंग दी जाती है कि हेपेटाइटिस के मरीजों का सही इलाज कैसे किया जाए। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा है ताकि अगर मां को हेपेटाइटिस हो तो बच्चों में ना फैले। ये चीजें दूसरी योजनाओं जैसे हेल्थ मिशन और स्वच्छ जल सफाई कार्यक्रम से भी जोड़ी गई हैं। कोशिश है कि साथ मिलकर बीमारी को खत्म किया जा सके।
6: सेहतिया भैया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? क्या वहाँ हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज होता है?
15: आयुष्मान आरोग्य मंदिर दरअसल गांव और मोहल्ले के पास बने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं, जहां लोग सबसे पहले इलाज के लिए आते हैं। ये केंद्र सिर्फ मामूली बुखार या खांसी के लिए ही नहीं है, बल्कि हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारियों के पहचान और इलाज में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर हेपेटाइटिस की जाँच मुफ्त में होती है ताकि बीमारी को जल्दी पहचान यहाँ पर हेपेटाइटिस की जांच मुफ्त में होती है ताकि बीमारी की जल्दी पहचान हो सके। अगर किसी को लक्षण नजर आते हैं या खतरा होता है तो फौरन स्क्रीनिंग की जाती है और अगर कोई मरीज पॉजिटिव निकलता है तो उसे जरूरी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। सबसे अच्छी बात है इन केंद्रों पर इलाज के बाद भी मरीजों की लगातार निगरानी की जाती है। ध्यान रखा जाता है कि मरीज दवा समय पर ले और बीमारी दोबारा न बढ़े। इसके अलावा वहाँ योग, काउंसलिंग और सेहत से जुड़ी दूसरी गतिविधियाँ भी कराई जाती हैं, जिससे लोग न सिर्फ बीमारियों से बचें बल्कि पूरी तरह तंदुरुस्त रहें।
6: दोस्तों, अब तक हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई जैसी बीमारियों की बात कर रहे थे जो वायरस से फैलती है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनका वायरस से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी लीवर बीमार हो जाता है? सेहतिया भैया, जरा समझाइए ना।
15: अरे बिल्कुल, देखिए, जब कोई लंबे समय तक शराब पीता है या कुछ ऐसी दवाई लेता है जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है तो लीवर में सूजन आ जाती है। इसे गैर वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं।
6: भैया, आप तो समझ में आ गया, वायरस हो या शराब या दवाइयाँ, लीवर तो बेचारा हर हाल में झेलता है।
15: सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है अगर सही समय पर जांच हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है।
6: तो भैया, अगर कोई ज्यादा शराब पी रहा है या रोज दवा खा रहा है और अगर उसे थकान, भूख कम लगना या पीलापन जैसा कुछ दिखे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
15: एकदम जाना चाहिए। लीवर हमारे शरीर का जरूरी हिस्सा है, वो सही रहेगा तभी बाकी चीजें भी ठीक चलेंगी।
6: तो साथियों, आज की एक बात गांठ बांध लीजिए कि हेपेटाइटिस सिर्फ वायरस से नहीं होता, हमारी आदतें भी लीवर को बीमार बना सकती हैं। तो सावधान रहिए और जरा भी शक हो तो डॉक्टर से जरूर मिलिए।
15: और अच्छी बात यह है कि अब इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, सरकार भी पूरी ताकत से हमारे साथ है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में हेपेटाइटिस की जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती है।
6: हाँ भैया, और कई सरकारी अस्पतालों में तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन, ब्लड टेस्ट और जागरूकता कैंप भी चल रहे हैं ताकि हर आदमी को सही जानकारी मिले और समय रहते इलाज हो सके।
15: और देखिए, बच्चों के जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा है, साथ में जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं भी मिलती हैं ताकि किसी को भी पैसों की वजह से इलाज न छोड़नी पड़े।
6: ब्लड बैंक और अस्पतालों में खून की सख्ती से जांच होती है ताकि संक्रमण आगे ना फैले। साथ ही मुफ्त काउंसलिंग और हेल्थ सलाह भी दी जाती है।
8: दोस्तों, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए साफ सफाई रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और अगर कोई लक्षण दिखे तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिले। सरकार भी आपके साथ खड़ी है, जांच, इलाज और दवाई अब आसानी से निशुल्क उपलब्ध है।
6: सेहतिया भैया, तो क्या हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से हम पूरी तरह बच सकते हैं?
15: बिल्कुल बच सकते हैं भाई, बस जरूरत है सही जानकारी, समय पर जांच और इलाज की। देखिए, हेपेटाइटिस अब भी हमारे देश और दुनिया के लिए एक बड़ी बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार की योजनाएं और लोगों की जागरूकता धीरे धीरे इसे हराने में मदद कर रही है, जैसे कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये दोनों मिलकर गाँव-गाँव तक इलाज, जाँच और जरूरी दवाएं पहुँचा रहे हैं।
16: दोस्तों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बहुत अहम बात याद दिलाती है कि हमें इस बीमारी के बारे में चुप रहने की जरूरत नहीं, बल्कि खुलकर बात करनी चाहिए। कई लोग आज भी हेपेटाइटिस को लेकर शर्माते हैं, डरते हैं या इलाज टालते हैं, लेकिन इसमें बीमारी और बढ़ जाती है। अगर हम समय पर जानकारी लें, जांच कराएं और इलाज शुरू करें, तो ये बीमारी पूरी तरह से काबू में लाई जा सकती है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, मुफ्त जांच, इलाज और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। अब जरूरत है कि हम अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर जागरूक बने और दूसरों को भी समझाएं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो 2030 तक हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं सेहत से ही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक और जरूरी स्वास्थ्य विषय के साथ। याद रखिए कि अगर सेहत सही रहेगी तभी तो जिंदगी में असली लाभ मिलेगा। श्रोताओ, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
18: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
19: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
18: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
19: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
18: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
19: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
18: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
20: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
21: सुनिए सुनिए सुनिए,
22: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
21: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
22: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
21: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।

0: पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें कर

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO 10 कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
5: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुश्नर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
8: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
10: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
11: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। उस वक्त की अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर एनएचएआई ने कार्यक्रमों की एसओपी में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, यह दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
14: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
15: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
15: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
14: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
16: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
17: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
16: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
17: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
16: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
18: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
15: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
14: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
19: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
20: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
18: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
21: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
22: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894-18744।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमर जेड पर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
7: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में बिहार के दो शिक्षकों समेत 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पटना में 37 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। गंगा, पुनपुन, गंडक, सोन और कोसी समेत कई

0: नवाचार और समर्पित शिक्षण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं बांका जिले के बिदायडी स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका खुशबू कुमारी भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी। समारोह में सभी पुरस्कार विजेताओं के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। इधर पटना में शिक्षक दिवस के अवसर पर शैक्षणिक योगदान और बेहतर कार्य के लिए 37 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे और शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में गंगा, पुनपुन, गंडक, सोन और कोसी समेत अन्य नदियों में उफान से 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पटना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने के साथ ही राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई में बेहतर व्यवस्था बनाने को कहा है। बाढ़ की क्या स्थिति है बिहार में, इस पे प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
1: पटना समेत औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, लखीसराय और वैशाली में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। पुनपुन घाट के रेल पुल संख्या 21 के डाउन ट्रैक पर कल रात पानी आ जाने के बाद ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने राहत और बचाव कार्य तेज करने के साथ ही राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई में बेहतर व्यवस्था बनाने को कहा है। लोगों को भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिले में गंगा और पुनपुन नदियों में जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से दानापुर प्रखंड समेत दियारा के अनेक निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लोग ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं। इस बीच पटना नगर निगम ने गंगा में जाने वाले सभी नालों को बंद कर दिया है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा और कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है।
2: कटिहार में लगातार हो रही बारिश और गंगा कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने नदी के जलस्तर, तटबंध, जलजमाव, सड़कों और आवागमन की स्थिति पर निगरानी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कुर्सेला प्रखंड की जल्लाही पंचायत स्थित गुमटी टोला और 12 नंबर स्पर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रखंड एवं अंचल स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से मुकेश चौधरी।
0: भागलपुर में गंगा नदी के उफान से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ का पानी कई स्थानों पर शहरी इलाकों में प्रवेश कर गया है। इधर मालदा फरक्का रेलखंड पर रेलवे ट्रैक धंस जाने से रेल परिचालन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली गुवाहाटी कामाख्या एक्सप्रेस, मालदा नई दिल्ली मालदा एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस समेत कई रेलगाड़ियों को भागलपुर की जगह नौगछिया के रास्ते चलाया गया। कई अन्य गाड़ियों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। जिले के 5 अंचलों की 20 पंचायतों के 24 गांव और 45 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 22,000 की आबादी प्रभावित हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षित आवाजाही और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए वर्तमान में 11 सरकारी और 76 निजी कुल 87 नावों का परिचालन किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार नावों की संख्या बढ़ाने की कार्रवाई भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा

0: है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में नावों का परिचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इधर सारण जिले के कई इलाकों में बाढ़ और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोनपुर घाट से डोरीगंज घाट तक नौका परिचालन की निगरानी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह राहत और बचाव कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग और निरीक्षण कर रही हैं। जिले के राघोपुर, बिदुपुर, हाजीपुर, महनार, सहदेई और देसरी प्रखंडों के प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन द्वारा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद चिराग पासवान ने भी राघोपुर दियारा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया के रानीगंज में सबसे अधिक 51 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 5 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है, जबकि उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी में आज भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। इस दौरान इनमें 35 वियतनाम पीपल्स आर्मी के जनरल ली वॉन प्रकाश के साथ के मस्तक गर्व

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में 330 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 72 उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कृषि मंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 3,44,000 टन यूरिया, 1,52,000 टन डीएपी, 2,48,000 टन एनपीके और 1,17,000 टन एसएसपी का स्टॉक उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और बिक्री पर नियंत्रण के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़न दस्ता गठित किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने छपरा और समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र से पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। एनएमसी ने छपरा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा समस्तीपुर के श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमबीबीएस की 50-50 सीटों पर नामांकन की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बिहार में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र यूजीसी नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में 100 टेक्नोलॉजी सेंटर विकसित किए जाएंगे। श्री चौधरी ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि टेक्नोलॉजी सेंटर से अधिक युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के युवा नई तकनीक अपनाते हुए बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। विभाग की अधिसूचना के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनिल कुमार को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव गुंजन सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे बिहार राज्य संवाद समिति के प्रबंधन निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। गया जी स्थित अफसर प्रशिक्षण अकादमी ओटीए में आज शॉर्ट सर्विस कमीशन तकनीकी कोर्सों का चौथा पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी में आज भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। इस दौरान 253 ऑफिसर कैडेट अंतिम पद पार कर भारतीय सेना में शामिल हो गए। इनमें 35 महिला ऑफिसर भी शामिल हैं। वियतनाम पीपल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ली वॉन हुआंग ने परेड की समीक्षा की और सर्वोत्तम कैडेटों को स्वर्ण, रजत और कांस्य के साथ चैंपियन कंपनी को बैनर देकर सम्मानित किया। सेना में शामिल होकर जवानों के मस्तक गर्व से खिल उठे। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह, कमांडेंट ऑफिसर प्रशिक्षण केंद्र गया सहित कई अधिकारी मौजूद थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
0: केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी के संगठनात्मक संरचना में युवा और महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा कि संगठन को मजबूत और व्यापक बनाने की दिशा में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। श्री पासवान ने कहा कि पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। प्रदेश के नए नगर निकायों के गठन और पुराने नगर निकायों को उत्क्रमित करने तथा क्षेत्र विस्तार की प्रक्रिया 15 सितंबर के बाद शुरू होगी। नगर विकास और आवास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने बाढ़ की खबर पर लिखा है, बिहार में बाढ़ से 28 लाख की आबादी प्रभावित, पुनपुन में ट्रैक पर चढ़ा पानी, पटना गया रेलखंड पर ट्रेनें बाधित। दैनिक जागरण ने पुलिस मुख्यालय के हवाले से लिखा है, बिहार सरकार के कर्मियों पर कार्रवाई से पहले सीबीआई को लेनी होगी अनुमति। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सैटेलाइट लॉन्च हर 30 मिनट में देश की तस्वीरें खींच सकेगी। प्रभात खबर ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर लिखा है, रजिस्ट्री के बाद मनमाने तरीके से नहीं मांगा जा सकता अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों समेत 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पटना में 37 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। गंगा, पुनपुन, गंडक, सोन और कोसी समेत कई नदियों में बाढ़ से प्रदेश के 16 जिले प्रभावित। युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, खाद की कालाबाजारी के आरोप में 330 दुकानों के लाइसेंस रद्द। और गया जी स्थित अफसर प्रशिक्षण अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन। भारतीय सेना को मिले 253 अफसर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
12: हेलो
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
12: आपको भी सोनी जी नमस्कार।
13: जी नाम बता दीजिए।
12: लाल बहादुर प्रसाद
13: जी। कैसे हैं लाल बहादुर जी?
12: ठीक है, आप कैसे हैं?
13: हम भी बढ़िया है। तो लाल बहादुर जी आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: सुजन प्रसाद अवस्थी रात्रि देवी
13: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है लाल बहादुर जी आपकी?
12: प्लस वन
13: तक। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
12: जी
13: जी। तो लाल बहादुर जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़, बी पत्ती, सी तना। आपका समय स्रोत है अब।
1: जड़ में होता है।
0: श्योर है?
1: श्योर है।
0: लॉक कर दे?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए लाल बहादुर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जड़ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पत्ती।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं हीर मकरियार बदली से, नाम आर्यन गुप्ता।
0: आर्यन जी कहाँ से बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बताइए।
2: हीर मकरियार बदली।
0: ये कहाँ पड़ता है आपका गाँव?
2: सिवान में।
0: सिवान में, तो क्या करते हैं आर्यन जी आप?
2: पढ़ाई करता हूँ अभी।
0: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई करते हैं आप?
2: सेवन।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अभी तो अच्छी चल रही है।
0: अभी अच्छी चल रही है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं?
2: नहीं
0: किए हैं। तो आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर कहाँ से मिला?
2: मामी से।
0: मामी से। इससे पहले इसका प्रसारण सुने हैं आप?
2: नहीं,
0: प्रसारण भी नहीं सुने हैं। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया है तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ।
0: आप जहाँ हैं वहाँ अकेले हैं ना, शांति है ना? ऐसा नहीं है ना कि कोई बीच में आकर डिस्टर्ब करेगा।
2: ओके,
0: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ।
0: ओके,

0: आर्यन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ होती है? पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है?
1: पत्तों में।
0: चोर है?
1: हाँ।
0: ब्लॉक कर दूँ?
1: हाँ लीव।
0: चलिए तो चलिए आर्यन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर पत्ता लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विद्वान शब्द का सही विलोम क्या होगा? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ज्ञानी।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: चलिए तो लॉक करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ज्ञानी आर्यन जी।
1: हाँ।
0: और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मूर्ख। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: मैं मनोज कुमार प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं मनोज जी?
1: मैं अच्छा हूँ मैम।
0: जी, तो मनोज जी एक बार बता दीजिए, पढ़ाई कहाँ पे किए हैं आप?
1: मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है।
0: अच्छा।
1: इसी साल ग्रेजुएशन मेरा कम्प्लीट हुआ है।
0: तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: जी, मम्मी का नाम है दुलारी देवी, राम दुलारी देवी, और पापा का नाम है अनुरुद्ध सिंह।
0: जी, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो मनोज जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम आर्यभट्ट।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सहारा मरुस्थल।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, चलिए मनोज जी, आपसे दूसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है? किस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम और सी न्यूटन का तृतीय नियम।
1: मैम न्यूटन का तृतीय नियम।
0: श्योर है?
1: तीसरा। यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका चौथा प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम नाइट्रोजन।
0: क्यों है?
1: नो मैम, 50-50% चांस।
0: 50-50 है। लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नाइट्रोजन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपको चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा हीलियम, ना कि नाइट्रोजन। ओके, हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम में, फ्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: शालू कुमारी से।
0: कैसी हैं शालू जी?
2: हम ठीक है, आप बताइए आप कैसी?
0: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या हो रहा था शालू जी अभी?
2: अभी कुछ नहीं, कॉल लगा रहे थे।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
2: अभी 9th क्लास में।
0: अच्छा, 9th में। पढ़ाई कैसी चल रही है?
2: अच्छी चल रही है, अभी तो समर वेकेशन है, अभी छुट्टी है स्कूल।
0: तो छुट्टी में कहीं घूमने उमने गई कि नहीं?
2: गए थे मौसी के घर, फिर आ गए।
0: तो स्कूल से होमवर्क मिला है घर पे बनाने के लिए कि नहीं मिला अभी?
2: नहीं, हम लोग का क्लास चल रहा था ना सारा, 10 days बस छुट्टी मिला हुआ है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सालू जी।
2: मम्मी का नाम है श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार प्रसाद
0: जी। तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके,

0: तो सालू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शेर, बी बाघ, सी हाथी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी बाघ।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाघ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़, बी पत्ती, सी तना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी क्या था?
0: ऑप्शन बी पत्ती।
1: ऑप्शन बी।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पत्ती को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक जल से ढका है? पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक जल से ढका है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध और सी भूमध्य रेखा क्षेत्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उत्तरी गोलार्ध।
0: जी क्या बोलिए आप?
1: उत्तरी गोलार्ध।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: श्योर तो नहीं है लेकिन लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध, न कि उत्तरी गोलार्ध। ओके, हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765665750।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921, 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
11: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगसिंग के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
11: थैंक यू मैम।
0: जी, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
11: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी बमस्तान गोपालगंज से।
0: जी, कैसी हैं सलोनी जी?
11: ठीक हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
11: कुछ नहीं।
0: नहीं, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी सलोनी जी?
11: अच्छी चल रही है।
0: और किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
11: BA फाइनल हो
0: गया है। आगे का क्या प्लान है?
11: आगे प्लान है, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की।
0: चलिए, तो मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
11: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल।
0: तो लिया गया पहला प्रश्न आज का आपसे।
11: हाँ जी।

0: तो सुनील जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण प्रमंडल, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन फिर से दीजिएगा।
0: ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर।
1: सारण।
0: सारण, कोसी, भागलपुर।
1: सारण लगाइए।
0: हाँ,
1: सारण।
0: सारण लगाऊं? श्योर है? लॉक कर दूं?
1: हाँ, लॉक कर दीजिए।
0: चलिए, तो सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सारण को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भागलपुर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिंगिन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं सचिन कुमार बोल रहा हूँ।
0: सचिन कुमार,
2: पचरुखी।
0: सचिन नाम बताया आपने?
2: जी
0: जी, पचरुखी से बात कर रहे हैं, पचरुखी सिवान।
2: जी जी
0: जी, क्या करते हैं सचिन जी?
2: 12वीं क्लास में पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, 12वीं क्लास में
2: जी।
0: और आगे क्या करने का प्लान है, सोचा है कुछ आपने?
2: हाँ, तैयारी करते हैं मैम।
0: किस चीज़?
2: गवर्नमेंट जॉब।
0: अच्छा, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: बढ़िया चल रही है।
0: चलिए, बढ़िया की बात है। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिताजी का नाम दिनेश ठाकुर और मम्मी का नाम उषा देवी।
0: जी, और क्या करते हैं पापा जी आपके?
2: फार्मर हैं।
0: ओके, आप इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: जी जी, किया।
0: तो आज के पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी
0: जी,

0: तो सचिन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या मुझे ऑप्शन एक बार और बोलोगी?
0: ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर।
1: भागलपुर फिक्स कीजिए मैं।
0: क्योर है
1: जी?
0: ओके, तो चलिए सचिन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी श्री कृष्ण सिंह और सी कर्पूरी ठाकुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: श्री कृष्ण सिंह।
1: जी।
0: क्यों रहे हैं? लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो चलिए सचिन जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बेतिया फिक्स कीजिए मैं।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो चलिए सचिन जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 108 डिग्री है तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन
1: 72 डिग्री।
0: क्यों रहे?
1: 108 बोली मैम।
0: जी 108 बोले हैं।
1: हाँ।
0: तो लॉक कर दो।
1: जी।
0: चलिए तो सचिन जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 72 डिग्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका पांचवा प्रश्न ये है, भ्रष्टाचार और भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी और सी अमृत प्रीतम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए।
0: अमृत प्रीतम।
1: जी।
0: चोर है?
1: चोर नहीं।
0: चलिए तो चलिए सचिन जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अमृत प्रीतम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा किरण बेदी।
1: ठीक है मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो,
14: क्या मैम आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट से बोल रहे हैं?
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
14: यस मैम, आज क्यूज होगा?
13: जी हो रही है क्यूज। आप नाम बता दीजिए अपना।
14: सुमित कुमार।
13: सुमित कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं सुमित जी?
14: सासा मुसा।
13: जी, क्यूज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं?
14: यस मैम।
13: ओके, क्या करते हैं आप सुमित जी?
14: अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
13: किस क्लास की?
14: अभी मैं 10th में अब हूँ।
13: अच्छा, इस साल 10th में गया है, मतलब आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर।
14: अगले साल।
13: जी जी, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
14: बढ़िया चल रही है।
13: आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
14: हाँ, आगे 10th की पढ़ाई करके उसके बाद क्रिकेट में ज्वाइन होऊंगा।
13: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: मम्मी का नाम श्रीमती मीरा देवी और पापा जी का नाम श्री संतोष स्वामी।
13: ओके, तो शुरू किया जाए पहला प्रश्न आपके साथ।
14: यस मैम।
13: ओके,

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य को कितने परमंडल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ।
0: श्योर है?
1: यस मैम, श्योर। नौ।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम, लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सुमित जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान और सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
1: खजिरगा।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सुमित जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी खजिरगा राष्ट्रीय उद्यान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैं सोनू दुबे बात कर रहा हूँ पार्टी से।
0: जी कैसे हैं सोनू जी?
2: बढ़िया है मैम, अपने बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है सोनू जी आपकी?
2: ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा
0: है। पढ़ाई ठीक चल रहा है ना?
2: जी
0: जी। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष दुबे।
0: जी, तो लिया जाए पहला प्रश्न।
2: जी
0: ओके, तो सुनो जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उपराष्ट्रपति को फिक्स कीजिए।
0: श्योर है? आपके बगल से आवाज आ रही है, शायद रेडियो चल रहा है।
1: हवाएं चल रही है अभी, ठीक जा रहा है?
0: हेलो, ठीक है। हवा का आवाज नहीं आ रहा है, कुछ और चीज का आवाज आ रहा है।
1: ठीक है,
0: ओके, तो लॉक कर दे उपराष्ट्रपति को।
1: जी जी
0: जी। तो सोनू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए ओ टू, बी ओ थ्री, सी सी ओ टू। आपकी कॉल स्पीकर पे है।
1: जी।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
6: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
6: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
6: शुभम कुमार सिंह।
0: शुभम?
6: हाँ, शिवम।
0: शिवम कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
6: मीरगंज।
0: मीरगंज से क्या करते हैं आप?
6: अब तो करते कुछ नहीं है, बैठा है घर।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
6: मेरा ग्रेजुएशन हो गया है।
0: ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं?
6: करते थे, अभी घर पे बैठे हैं।
0: अच्छा अच्छा, मतलब अभी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं है?
6: नहीं है, बीच में भी ब्रेक लिया है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है,
6: इसी कारण है।
0: ओके, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
6: जी मम्मी का नाम है मनोरमा देवी, पापा

0: में फरवरी माह का विषय क्या है? सुरक्षित शनिवार में फरवरी माह का विषय क्या है? ऑप्शन ए, मैं हूँ समाज सेवक, बी मैं हूँ शिक्षक, और सी मैं हूँ साहित्यकार। आपका समय श्रोता है अब।
1: क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया।
0: ओके,
1: दूसरा क्वेश्चन पूछिए। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया?
0: आपसे पहला प्रश्न ये है, बिहार के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं?
1: और श्री कृष्ण से।
0: हाँ,
1: श्री कृष्ण से बिहार केसरी।
0: श्योर है?
1: हाँ,
0: लॉक कर दो।
1: हाँ, करिए।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं, और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है,
1: जी,
0: ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी है? ऑप्शन ए O2, बी O3, सी CO2। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी।
0: ऑप्शन बी।
1: हाँ।
0: O3।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: तो चलिए शिवम जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी O3 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी संभर झील। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उलर झील।
0: उलर झील।
1: हाँ।
0: चल रहे हैं आप?
1: थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है सांभर झील को लेकर, लेकिन उलर झील को ही करिए।
0: ओके, तो चलिए शिवम जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर उलर झील को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: चौथा प्रश्न ये है आपसे, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लौह पुरुष के नाम से कौन?
1: सरदार वल्लभ भाई पटेल।
0: चोर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दो।
1: जी। अरे बिना ऑप्शन दिए बोल रहे हैं तो श्योर है?
0: चोर है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो चलिए शिवम जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: संविधान के प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आपका पांचवा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां। आपका समय श्रोता है अब।
1: 42वां।
0: चोर है?
1: हाँ, 1978 में हुआ था।
0: तो चलिए आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर 42वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज से छठा प्रश्न ये है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: वही होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं होगा, रविंद्रनाथ टैगोर।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर, अच्छा टैगोर होगा। हाँ जी जी, यहाँ टैगोर ही लिखना था लेकिन ठाकुर लिख दिया गया है।
1: हाँ तो वही वही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: श्योर है लॉक।

0: दें?
1: जी जी।
0: चलिए आपके छठे प्रश्न का उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए हिंदी, बी अवधी, सी संस्कृत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: किस भाषा में लिखी थी? अवधी। अवधी कौन करिए?
0: श्योर है?
1: नहीं है, संस्कृत भी लग रहा है, अवधी भी लग रहा है।
0: तो कौन सा करे, अवधी या संस्कृत?
1: अवधी करिए।
0: ओके चलिए। तो चलिए सिवम जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अवधि को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी कैल्शियम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कार्बन होगा।
0: कार्बन होगा
1: शायद, कंफर्म तो नहीं है, ऑक्सीजन भी लग रहा है लेकिन कार्बन की चूज कर रहे हैं।
0: तो कार्बन को लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो चलिए शिवम जी, आपके आठवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कार्बन को लॉक करते हैं।
1: जी।
0: और बता दें कि आठवें प्रश्न का उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर होगा ऑक्सीजन।
1: ऑक्सीजन
0: जी।
1: कितना होता है इसका, मतलब रेशियो या परसेंटेज?
0: परसेंटेज यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन सबसे अधिक अच्छा। मात्रा में ऑक्सीजन होता है।
1: जी जी
0: जी। हेलो पीयूष, कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी बहुत बहुत।
0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम का कार्यक्रम हेलो पीयूष कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैम मेरा नाम आराध्या श्रीवास्तव है और मैं गोपालगंज बिहार में रहती हूँ।
0: जी, क्या करती हैं आराध्या जी?
2: अभी 8 स्टैंडर्ड में है।
0: 1 में?
2: 8 यस। हाँ
0: अच्छा। और पढ़ाई कैसी चल रही है आराध्या?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
2: हाँ सोचे हैं एक IAS ऑफिसर बनने का।
0: जी बहुत ही अच्छा सोचा है आपने, आपकी सोच बहुत अच्छी है। और आपके मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम नीलम देवी और पापा का नाम है शशि श्रीवास्तव।
0: जी, क्या करते हैं पापा जी आपके?
2: पापा अम्बी टोयोटा में काम करते हैं।
0: आप इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: नहीं आज तक तो नहीं किए हैं।
0: अच्छा, कहाँ से पता चला आपको इसके बारे में?
2: रेडियो रिमझिम जो बजता है ना छोटे वाले फोन में, तो उसी से पता चला है।
0: अच्छा अच्छा, तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ तैयार है।
0: चलिए लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए बोधि वृक्ष, बी बरगद, सी पीपल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पीपल का।
0: श्योर है आप?
1: हाँ श्योर।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: और चलिए आराध्या जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी पीपल का लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा बोधि वृक्ष।
1: ठीक है सर।
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो के 90.4 FM में।
13: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
13: निरंजन कुमार बोल रहे हैं, बता देते।
0: जी कैसे हैं निरंजन जी?
13: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं जी। तो क्या करते हैं निरंजन जी आप?
13: जी बाहर रहते हैं
0: जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
13: इंटर तक हुई है।
0: इंटर तक हुई है
13: जी।
0: जी तो अभी पढ़ाई छोड़ दिए हैं आप?
13: हाँ पढ़ाई छोड़ दिए हैं।
0: कोई नहीं, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: माता जी का नाम है श्रीमती चन्मती देवी और पिताजी का श्री सुमनमा जी।
0: क्या करते हैं पापा जी आपके?
13: वो भी सूरत में रहते हैं।
0: और आप क्या काम करते हैं?
13: मैं ट्रेनिंग का काम करता हूँ।
0: तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
13: जी

0: जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।
1: हेलो
0: जी, तो निरंजन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बिहार राज्य का प्रमंडल
0: कौन सा प्रमंडल छोटा है?
1: कोसी होगा।
0: कोसी होगा, क्यों रहे?
1: कौन तो नहीं है,
0: तो लॉक करें?
1: नहीं तो भागलपुर कर दी।
0: भागलपुर को लॉक करें
1: जी,
0: कंफर्म है ना?
1: हाँ कर दीजिए, कंफर्म नहीं।
0: चलिए तो, चलिए निरंजन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी भागलपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जय प्रकाश नारायण, और ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लाल बहादुर शास्त्री होगा।
0: क्यों है
1: जी?
0: लॉक कर दूं
1: जी।
0: चलिए तो, चलिए निरंजन जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: जी आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मोतिहारी होगा।
0: मोतिहारी होगा, क्यों है?
1: पश्चिमी चंपारण।
0: पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय
1: बेतिया में होगा।
0: बेतिया में?
1: हाँ बेतिया में।
0: क्यों है?
1: कंफर्म नहीं है।
0: लॉक कर दें?
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए तो निरंजन जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए टेलीविजन, बी रेडियो, सी कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कंप्यूटर।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: लॉक कर दूं?
1: कर दीजिए।
0: चलिए तो निरंजन जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कंप्यूटर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: पांचवा प्रश्न आपसे ये है निरंजन जी, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? भ्रष्टाचार भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी, सी अमृत प्रीतम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्वेश्चन आप सुनिएगा, भारत
0: भ्रष्टाचार और भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी और सी अमृत प्रीतम।
1: अमृत प्रीतम होगा।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ लॉक कर दो।
0: चलिए तो निरंजन जी आपके पांचों प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अमृत प्रीतम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा किरण वेदी।
1: किरण वेदी
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87 894 18744।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली जुलने की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। मैं देखिए आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेम 96.4 FM पे थोड़ी लेट हो गई है आप सभी के बीच उपस्थित होने में और क्या ही करें, कार्य जो है एक पूरा करने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति मिलती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो आप तो जानते ही हैं कि पुराने गाने के फरमाइश करना है। यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइशों के साथ। और इस मैसेज को किए हुए हैं बुलेट चौधरी जी बढ़िया थाना 3 फेड़िया से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू पहले सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत राधे कृष्ण के तरफ से शुभकामनाएं। आज मैडम जी को एक मेरे माध्यम से सॉन्ग कृष्णा जी का सुना दे। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में आप दोनों का, लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता के करियर अक्सोल नेपाल बॉर्डर से। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी बिले सभ्य फील्ड गोपालगंज से और मेरे तरफ से पूरे लिसनर को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रेडियो एमछिम परिवार के तरफ से भी आप सभी श्रोतागण को और हमारे विज्ञापनदातागण को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। हमेशा उनकी जीवन में खुशियाँ आए यही कामना करता है रेडियो रिमझिम परिवार। और आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और पहले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं हम। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, अलका याग्निक एंड उदित नारायण जी की आवाज़ में।

रेडियो रेम छेम 94 FM पे इस प्यारे से शाम को सुन रहे हैं आप सब और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं, ये सारी बातें बतानी है और कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता, गाने की फरमाइश, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। स्वर लता जी का डेडिकेट सभी हमारे श्रोताओं को, जय श्री कृष्ण। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो भाईजान, सलाम अलैकुम, समीर सागर चौराव से और सॉन्ग सुनना है वो लड़की बहुत याद आती है। ओहो, चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कमलेश जी की तरफ से, नाइस सॉन्ग, बिल्कुल नाइस सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भैया नमस्ते, हम सिद्धार्थ बरौली से और मेरे तरफ से रेडियो रिमझिम से जुड़े सभी श्रोता दोस्तों को कृष्ण जन्माष्टमी का ढेर सारा बधाई। भैया गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं रेडियो रिमझिम 94 FM पे इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिखा गया है कि चलिए सोनू बाबू शुक्रिया, राधे कृष्ण, आपके जीवन में सदा खुशियों की बांसुरी बजाते रहे। एक बार फिर से स्पेशल में शुभकामनाएँ आप लगाए थे रिमझिम परिवार को, हैप्पी जन्माष्टमी। लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता भैया की तरफ से पहुंचा हुआ है। चलिए आपको भी, पूरे परिवार को, रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से, साथ ही साथ जो भी श्रोतागण अभी कार्यक्रम से बने हुए हैं और उन सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है आज़ाद अंसारी और मैं मोहनपुरा से जुड़ चुका हूँ। और क्या हाल है? तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत इस कार्यक्रम में गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे किए हुए हैं शमीर सागर चौराव से और गाने का बोल देते हैं वो लड़की बहुत याद आती है। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

कमल के शाम रेडियो रिम झेम 9.4 FM पे सुन रहे हैं हम सभी, और शो चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर प्रणाम, अंकुश कुमार सर, मुझे गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचाए हुए हैं सिद्धार्थ जी बरौली से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे जब तक जिएंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिम झिम 90.4 FM पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: Radio 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, लिखा गया है कि शुक्रिया भाई जान शॉन्ग प्ले करने के लिए। और इस मैसेज को पहुँचाए हुए हैं समीर सागर जी, और चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो भाई कैसे हैं, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक हैं, सुपर गाना चल रही है भाई। सविता चौहान छपरा से मैसेज करती हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बढ़िया, ये आपके कसम है या कथन। अब फरमाए गए गाने के फरमाइश करने वाले श्रोतागण ही बताएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अर्जुन कुशवाहा श्रिस्या सासा मूसा से अब लौट चले, अब लौट चले गाने के फरमाइश करते हैं। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। अर्जुन जी थोड़ा सा सब्र करें, आपकी मैसेज हमारे पास दोनों पहुंची है और गाने के फरमाइश पूरी करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने का बोल दिया गया है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी। अंकुश जी आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझम 94.4 FM पे।

जेम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि आप दोनों की बात कोई मानेगा, ये चुपचाप होम डिलीवरी मंगा कर पिए और किसी से दुख ना सुनाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, और बात सही है, और बिहार में तो बंद है तो ये तो कानूनी अपराध में चला जाएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अर्जुन कुशवाहा त्रिशिया से, तो बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है, हेलो सर कैसे हैं, मेरा नाम है श्वेता और गोपालगंज से हूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश तो है लेकिन समय की कमी है, आज पूरा नहीं हो पाएगी और आपने थोड़ी लेट कर दी है। आगे मैसेज कई हमारे पास पहले से भी पहुंचे हुए, तो उनकी फरमाइश प्ले करने करते करते गाने की समाप्ति के तक समय भी हमारा समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आगे कई गाने हैं, तो चलिए अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश किए हुए हैं आज़ाद अंसारी जी, और गाने का बोल दिए हुए हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये गाना सुनना है और सुनाना है आपको और सभी सुनने वाले को, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

रेडियो एमसीएम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं। और आगे मैसेज भी कमेंट्स पहुंचे हुए कमाल के, और लिखा गया है कि इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जब भी किसी से दिल लगाए तो हजार बार सोच समझ कर दिल लगाए, नहीं तो यही गीत सादा गाते रहिएगा भाई। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के घर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, बात सही है। और जो भी कार्य करें थोड़ा सोच समझ कर करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोना के साइकिल चांदी के पहिया, ए सोनू बाबू तू हमरा से मिलवा कहिया। बिल्कुल मुलाकात तो होगी 5 जनवरी को, और स्थापना दिवस के दिन जब कार्यक्रम होगी तो बिल्कुल मुलाकात होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भाई मेरा तो आज तो नहीं, आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगले गाने की फरमाइश हमारे पास त्रिशिया से पहुंचा हुआ है, अर्जुन कुशवाहा जी के तरफ से, और आ अब लौट चले का टाइटल ट्रैक। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सब अंतिम गाने के साथ इंजॉय करें, जो भी सुट्टागढ़ छूट गए हैं, सप्ताह का आज अंतिम दिन, श्वास के लिए बस इतना ही। सुनते रहे रेडियो एमसीएम 90.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: बराबर कोनो जचल होना।
1: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, आज आप सभी को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास जब तक हमारे प्यारे श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूँगी और गाने की बोल है गुरु में संसार समाया और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे ये प्यारा सा सॉन्ग गुरु में संसार समाया, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा, दिल छू गया। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती मैम, कैसी हैं, और हम भी जुड़ गए हैं शो में सिद्धार्थ बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्ते, कैसी हैं आप, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ छपरा से, और मुझे आपके आने का बरसों से इंतज़ार रहता है। मैम मुझे भी गाना सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम। तो मेरा तो ठीक है, आप बताइए और कैसे हैं आप, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो मैडम जी नमस्कार, मैं सुनील यादव दुबई से, आप कैसी हैं भारती जी, और मेरा भी एक गाने की फरमाइश है, और मेरा कितना दिन हो गया टाइम नहीं बताई, तो आपको मंडे का गाना प्ले होता है और हमारा गाना बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, आ गई नहीं हम हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा जी मैम, और वाओ बेहद लाजवाब खूबसूरत सॉन्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और इसी के साथ है यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं नैयम अंसारी जमतारा से जुड़े हुए हैं, और सॉन्ग सुना दीजिएगा फिल्म तुम मेरे हो, और गाने की बोल है दिल नहीं वो चीज़ जो बाज़ार में मिल जाए, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती मैम जी, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और विश्व दिवस की शुभकामनाएं। ये न्याय पारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसराज, पप्पू ठाकुर, प्राची ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ पे जो कि मेरे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैम गाना चला दीजिए, आते आते गाने की बोल पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भारती जी, मेरा भी सॉन्ग बजा सकती हैं क्योंकि 1 सप्ताह हो गया है। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी UAE, दुबई से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। और यहाँ बिल्कुल जी, आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है मेरे पास जो कि लिख रहे हैं, हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। और मैडम जी आप कार्यक्रम रुक रुक कर चल रहा है, तो ऐप में प्रॉब्लम है या फिर रेडियो में, ये मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाह सुपर, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम नमस्ते, सूर्यभान सिंह, विसुंदरी घोरावल, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मेरे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले की। और मैसेज करने वाले हैं नैयम अंसारी। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है मेरे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी गुड आफ्टरनून, और मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और सूरत में सिलाई का काम करता हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मुझे मैम एक गाना सुनाइएगा। और गाने की बोल पहुँची हुई है, गाने की बोल है तेरे जाने के बाद कितने गम मिले मुझको, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है, तो चलिए इनके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, तेरे जाने के बाद कितने गम मिले मुझको। और मैसेज करने वाले थे मोहम्मद आरिफ अयोध्या से, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और का हो उत्तम भाई का हाल चाल बा हो। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह और अवंतिका सिंह और अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धनेश जी की आप दोनों मैम कैसी हैं ये ज़रा ज़रूर बताइए। तो जी हम सब ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हमारी वजह से सब खुश होते हैं। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नौसाद लालगंज से, और हाय मैम गुड आफ्टरनून बजाजी रोड लालगंज से मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद सदाम, और टीचर डे की आप सभी को और सारे आरजे और लिसनर को बधाई, और साथ में मोहम्मद निसार और मोहम्मद रिजवान और अभिनंदन टेलर भी जुड़े हुए हैं, और साथ में असगर जी भी सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी, और आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और रेडियो रिमझिम के सभी दोस्तों को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं देवराज कुमार रेशम नगर और भगैया जिला गोंडा झारखंड से आज के प्रोग्राम में जुड़ गया हूं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ उत्तम सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उमा शंकर भैया नमस्ते, मस्त हूँ, आप कैसे हैं बताइएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हैं और लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, बहुत खूबसूरत है, मेरी ज़िंदगी पर बिल्कुल बैठता है और रुला दिया गाने के कल रात एक पति रुला दिया गाने ने। और लिख रहे हैं कि कल रात एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति बोला काली कलूटी मोटी भैंस चुड़ैल कहीं की, पत्नी ने भी बोला पियक्कड़ दारू बाज नसीड़ी कहीं का, फिर पति बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा पर तू वैसी की वैसी ही रहेगी। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँचा हुआ है शमशाद अली जी की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है इरशाद मास्टर जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं मोबाइल पर कार्यक्रम रुक रुक कर चल रहा है यानी ऐप में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है मौसम अभी मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, और हमारे यहाँ से तो ठीक ही चल रहा है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगली गाने की जो कि फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और गाने की बोल है ओढ़नी के रंग पियर भोजपुरी सॉन्ग है, और थैंक यू मैम गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को एक बात और बता दूं कि आप हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से, लिख रहे हैं भारती जी इरशाद मास्टर को बताइए, इरशाद मास्टर भाई को बताइए कि ऐप बहुत अच्छा चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत सुंदर सॉन्ग उड़ने के रंग पियर, गाना सुन के मज़ा आ गया, और देवराज कुमार रेशम नगर भगैया से जुड़े हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाओ काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है। मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और लिख रहे हैं यहाँ पे कि हाय दी नमस्ते, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, का हाल बादी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं, आपकी तो तबीयत खराब थी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं मैं हजरा सूरत से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से एक प्यारी सी लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रही हैं कि अब चुप रहना ही सही लगता है, अब चुप रहना ही सही लगता है क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाला है वो तो बातों का अलग मतलब निकाल कर बैठ जाते हैं। और काफ़ी खूबसूरत लाइन है और मीनिंगफुल लाइन भी है, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
9: हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं हजरा सूरत से, और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है शौकाने में, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को। हिना जी है, शफाक जी है, सलेहा जी है, शाहजहाँ जी है, रुबीना नाज है, ब्यूटी परवीन है, और शाहजहाँ जी है, रुखसार है, रोशनी है, और इरफान जी है, कमरान जी, गुलाम हुसैन, बीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, और जो बाकी जो छूट गए इन सभी लिस्नर को। मैं हाजरा गुजरात से।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमा जेड पर।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी को आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रमझिम के सारे प्रोग्राम को काफ़ी आसानी से सुन सकते हैं कहीं भी और किसी भी वक्त। तो

0: इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है हजरा जी की तरफ से, जो कि फीडबैक मैसेज है वॉइस के माध्यम से, तो प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, दिल से शुक्रिया। और मैं अपना गाना सुन रही हूँ, नेक्स्ट टाइम में पुराना वाला बजा दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं हजरा सूरत से।
0: तो यहाँ हजरा जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत वॉइस पहुँची हुई है और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हम रूठे तो किसके भरोसे और कौन आएगा हमें मनाने के लिए। हो सकता है तरस आ भी जाए आपको, पर दिल कहाँ से लाएं आपसे रूठ जाने के लिए। भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, हजरा जी को नमस्कार, और बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं सॉन्ग सुपर, दिलीप राम दिल्ली से। और लिख रहे हैं कि तकदीर लिखने वाले एक एहसास एहसान कर दे, मेरे दोस्त की तकदीर में एक और मुकाम मुस्कान लिख दे, न मिले कभी दर्द उसको, तू चाहे तो उसकी किस्मत में मेरी जान लिख दे। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहा है कि हेलो रुद्रपुर में ठीक चल रहा है, और रेडियो रिमझिम देवभूमि उत्तराखंड से। और मैसेज पहुँचा हुआ है उमा शंकर सिंह जी की तरफ से, और यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश पहुँची है, लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्कार, मैं अमन कुमार यादव सासा मुसा से, और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करती हूँ और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
5: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और हमारे स्टूडियो के घड़ी में अभी 1:09 हो रहा है। और आप सभी को एक और बात बता दूं कि आप फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां पोस्टर में लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को भी नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहां हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि धनेश जी प्यारी से चुटकुले के साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि टीचर इतना लेट कैसे हो गया? पप्पू जी, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, चलो बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद। टीचर, आज फिर लेट। पप्पू जी, पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, अभी तेरे पापा ठीक नहीं हुए क्या? पप्पू, अरे नहीं, मेरे पापा तो डॉक्टर हैं, टीचर बेहोश। और यहाँ काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है धनेश जी के तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्ते मोतिहारी से MD मीनू जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, और हैदराबाद से जुड़े हैं निगम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे, पाजी UP 54 से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि शराब की बोतल लाओ, महतरमा खुश खबर लाई हैं, आज किसी के साथ देखा था हमने उस बेवफा को, और हमारे सामने निर्दोष बनकर आई हैं। और काफ़ी मीनिंगफुल लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि शंभू यादव जी की तरफ से पहुंचा हुआ लिख रहे हैं, हर हर महादेव, भारती जी शंभु यादव पुलिस लाइन से, और मेरा लिख रहे हैं कि यहाँ पे नाम छूट गया था उनका, लिख रहा हूँ शनाव जी और प्रतीक्षा जी और हम भी जुड़ गए हैं हर हर महादेव, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
0: हर हर महादेव भारती जी, मेरा नाम शंभु यादव, घर बस्टीला भागरखाप जिला गोपालगंज बिहार। मेरे को गाना सुनना है हिंदी में, राम तेरी गंगा मैली पिक्चर से कोई भी गाना सुनवा दीजिएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा सॉन्ग आज ही 1:30 बजे से पहले बजा दीजिएगा, क्योंकि रोटी खाने जाना होता है। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, राधिका गर्मेंट और दिलीप सर, और हमारे रंजन जी और हमारे भूगर भैया और हमारे मनीषा जी जो नए नए ज्वाइनिंग ली हैं, मनीषा जी और हमारे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जो डेरवा गांव से शंकर सिंह हलवाई हैं, और राजेंद्र भैया हैं, और राजेंद्र सिंह हैं, शैलेंद्र सिंह हैं, थावे से कैंची में धार लगाते हैं वो भैया हैं, तो और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा जो हमारे ही साथ में काम करते हैं, तो प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा। और हमारे कुछ दोस्त हैं उनको मैं सुनाना चाहूँगा, तो प्लीज़ प्लीज़ बजा दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
7: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: प्रसाद क्लिनिक
4: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी।

0: और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि भारती मैम नमस्कार, मैं नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से, और आज मेरी भी एक फरमाइश है, प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि खूबसूरत सी शायरी पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं कि फूल है गुलाब का जो टूट कर भी खुशबू दे जाता है, और प्यार करनी उसी से जो रूठ कर भी अपना हो जाता है। फूल है गुलाब का मेरी जान तोड़ मत देना, और बहुत प्यार करते हैं तुमसे हमें छोड़ मत देना। और लिख रहे हैं कि मत मारो पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा, तुम मत हो उदास मेरी सोना, तुम्हें कोई देख कर जीता ही होगा। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है पर लाइनें काफ़ी खूबसूरत हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं और आप कौन हैं और कहां से हैं। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर गीत राम तेरी गंगा मैली हो गई, और मैसेज करने वाले हैं सूर्यभान सिंह सुंदरी गुरवाल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और लिख रहे हैं भारती जी मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। ओके, तो आपका भी गाना प्ले होगा। और उससे पहले जो कि हमारे पास गाने की एक फरमाइश पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं कि मैं निखिल कुशवाहा कोनवा मोड़ से जुड़ा हूँ, और मुझे भी एक गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुंची हुई है, लिख रहे हैं मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, और हम सुन रहे हैं। तो गाने की बोल है पहली बार मोहब्बत की है, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कृष्णा जी लिख रही हैं, प्लीज़ बजा दीजिए दी, मेरा बजा दीजिए दी। तो मैं आपका गाना आज प्ले नहीं कर सकती क्योंकि आपके गाने को मैंने 2 बार प्ले कर चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जय राम, राम जी, भारती जी, आप हमको मुझे गाना सुना दीजिएगा। और न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, रूपेश्वर ठाकुर, भीमबा ठाकुर, तोशन ठाकुर गाने के बोल पहुंचे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है हजरा जी की तरफ से, लिख रही हैं थैंक यू दिलीप राम जी मेरे तरफ से। और मैसेज करने वाली हैं हजरा जी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम, कैसी हैं आप? मुकेश यादव अहमदाबाद गुजरात से जुड़ गया हूँ और मुझे लिख रहे हैं कि आपने हमें सुना नहीं, बाकी हम ठीक हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि न्याय पारा विरई से बसंत ठाकुर, सरोज ठाकुर, पप्पू ठाकुर, भारती जी, हम खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा लो मैडम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अगर मैं खाने चली गई तो फिर शो में कौन रहेगा? और मैं खाना दोपहर न्यूज के चलने के वक्त खाती हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो नमस्ते मैम, हम रवि कुमार तिवारी दिल्ली से और हम भी शो से जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप जी की मुझे भी आज गाना सुनना है भारती जी, तो अगर समय बचा तो आपको भी देखा जाएगा। और उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारी अगर शायरी एक के बाद दूसरी और शामिल नहीं होगी तो हमसे मना कर दो, बता दो जरूर। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, आपकी शायरी को शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ज़्यादा ही गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो सोचे पहले उसे प्ले कर दे, उसके बाद आपके शायरी को पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, आप दोबारा भेज सकते हैं, मैं शामिल कर दूँगी। और काफ़ी अच्छी शायरी आपके तरफ से आती है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सूर्यभान सिंह, वसुंधरा घुरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि बाजीगर मूवी का गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है, तेरे चेहरे पर प्यार मुझे नज़र आता है, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम में सभी के साथ।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
8: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं, अगर आपको जो हमारे साथ हमारे पुराने लिसनर और श्रोतागण जुड़े हैं, उन्हें रूल्स तो मालूम ही है, पर जो हमारे नए श्रोतागण जुड़े हैं उन्हें बता दूं, आप अपने गाने की फरमाइश हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए तो आप रोज़ जुड़ सकते हैं और सभी के द्वारा फरमाइश किए गाने को एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने गाने की फरमाइश हफ्ते में एक बार करें और फिर अगले हफ्ते में एक बार आपका गाना प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मुकेश भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? इतना लेट आए, पर आए तो सही, वेलकम, थोड़ा और पहले आए होते तो शायद आपको भी मिल जाता। बड़ी ही दिलचस्प सॉन्ग चल रहा था और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि क्या मैम आप, यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली UP 21 से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं पति तुम बहुत हसीन हो, पत्नी छोड़ो ना, पति तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, पत्नी छोड़ो ना, पति तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं, पति अजी छोड़ो ना, और पत्नी, पति तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है, पत्नी हे भगवान अब छोड़ भी, छोड़ो भी, पति इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, अब और कितनी छोड़ूं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ शमशाद जी जुड़े हैं और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, मैं भी आपके प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ और मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और लिख रही हैं कि और सुनाना चाहती हूँ सबसे पहले आपको और सभी रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोताओं को, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं पल्लवी कुमारी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उषा जी जुड़ी हुई हैं साथ में और यहाँ पे जो कि गाना आपका भी प्ले होगा। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सन्यासी रंजन जी, लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिर लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले किए इसके लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से, और मेरा एक गाना है और गाने की फरमाइश है, और गाने की बोल है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। यही गाना है, कृपया प्ले कर दीजिए, धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:49 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है दीनानाथ यादव जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे, जिनकी सास कहती है कि मेरे बेटे को इसी ने सिखाया पढ़ाया है। और यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है, और यहाँ पे सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मास्टर ही इकलौता वह इंसान है जो बिना तेल, नमक और मसाले के मुर्गा बना देता है। हैप्पी टीचर्स डे। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हैं, और आप सभी को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं भारती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पसंद के गाने सुनवाने के लिए, और जब पसंद के गाने प्ले हो जाते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है। बात तो बिल्कुल आपकी सही है। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि पति, काश मैं गणपति होता, तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मज़ा आता। पत्नी, हाँ काश तुम गणपति होते और मैं रोज़ लड्डू खिलाती और हर साल विसर्जन करके नए गणपति घर लाती, बड़ा मज़ा आता। और इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे 4 बजे से पहले। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँच रही है कॉल के माध्यम से, तो लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: जी नमस्ते मैम।
11: जी नमस्ते,
12: मैं भूमि मन बहुत परेशानी से।
11: जी कैसी हैं आप?
12: हम बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
11: जी हम भी ठीक हैं। तो बता,
12: मौसम उधर का कैसा है?
11: इधर का तो मौसम अभी अच्छा बना हुआ है, काफी सुहाना मौसम बना हुआ है।
12: इधर भी बहुत अच्छा मौसम हो गया है।
11: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए।
12: आज तो टीचर्स डे है तो कोई गाना बजा दीजिए।
11: कोई गाना तो कोई गाने की बोल बता ही देती तो अच्छा होता है।
12: गुरु में संसार समाया यही वाला सॉन्ग सुना दीजिए।
11: शुरुआती सॉन्ग मैंने प्ले किया था पर कोई नहीं, आपके लिए एक बार और सही बजा ही देती हूँ।
12: बजा दीजिए।
11: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: धन्यवाद
11: जी। वेलकम।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो

0: या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम बन के सितारे जगमगाते रहना, हर खुशी अपने होठों पे सजाते रहना, दोस्ती के लिए दो चीज़ें ज़रूर है, याद करते रहना और याद दिलाते रहना। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है भाजी यूपी चौहान जी की तरफ से, और इसके लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशाद अली मुरादाबाद से मुझे लिख रहे हैं कि मुझसे पंगा मत लिया करो, आज सुबह ही मैंने एक बिस्किट को चाय में डुबो डुबो कर मार दिया, तो फिर तुम किस खेत के टमाटर हो। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगली मैसेज पहुँची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, लिख रहा है कि स्कूल में होमवर्क उसी दिन चेक होता था जब वो कंप्लीट नहीं होता था, जिस दिन कंप्लीट होता था उस दिन मास्टर नहीं आते थे, और ज़िंदगी तो बचपन से ही मज़े ले रही है। और बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय भारती दी गुड आफ्टरनून, का हाल बा जरूर बताएं। और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि वाव सुपर सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि हमारे रुद्रपुर में सब कुछ ठीक है। और लिख रहे हैं कि मुझे भी हम लोग को भी एक गीत की फरमाइश है दिए हैं उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह और अर्चित सिंह, और रुद्रपुर देवभूमि से उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और काफ़ी खूबसूरत सा गीत है। और गीत के बोल हैं वो कागज़ की कश्ती। चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सेवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और शो है योर वॉइस योर चॉइस का। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277166696। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम, आप कैसी हैं, और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गई हूँ। और भारती मैम के लिए एक शायरी है और लिख रही हैं, मेरी तरफ से अधूरी है बात कहना जरूरी है, मेरी आखिरी सांस तक तेरा रहना जरूरी है। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं, लिख रही हैं, जुड़ी हुई हैं रेशमा जी पठानपट्टी से, और बोल रही हूँ सबको बोल दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी तरफ से सभी को बोल दिया गया है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँच गया है उमा शंकर जी की तरफ से, तो चलिए प्ले करते हैं और सुनते हैं क्या है इनकी फीडबैक मैसेज।
6: मैम आपने हमारा गीत सुना, आपको धन्यवाद, मेरा नाम अर्जुन सिंह है।
5: और काफ़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है, तो इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो कॉल लेते हैं और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
7: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
7: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते।
7: काल बा
5: जी, हमारा तो ठीक बा, रोआ बताएं।
7: हमारा ठीक बा।
5: तो आज बता दी कौन सा गाना सुने।
7: गाना सुना दी

0: टिकेट सबसे पहले रहुआ के बाटे और मनोरमा दीदी के आज इतना सुनते हैं लोग के और जने हम गणेश भैया के रही यार हाँ सुने
1: चलिए तरह और गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी आपसे मुलाकात होगी फिर दोपहर न्यूज़ के बाद, और जिनके भी गाने को प्ले नहीं किए हैं फिर से होगी दोपहर न्यूज़ के बाद प्ले। तब तक आप सभी इस गाने को एंजॉय करते रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकाश से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
3: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और पीवी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
6: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
7: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करें 87-894-18744।
15: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
12: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
14: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
12: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
14: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
12: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
14: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ के टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
12: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
16: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो रिमझे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास अभी काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि ब्रेक के पहले कृष्णा जी का गाना प्ले किए थे और लिख रही हैं बहुत अच्छा गाना है और सुपर सॉन्ग बोल देना। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी चलिए खाना खा लीजिए। तो जी अभी मैं खाना खा के आई हूँ, और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि शमशाद अली मुरादाबाद से फिर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना, जब तन्हाई सताए तो हमसे बात कर लेना, खुशियाँ बांटने के लिए तो आपके हजार दोस्त होंगे मगर जब गम बांटना हो तो हमें याद कर लेना। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं शमशाद जी फिर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं रेडियो बादल से पंकज जी, और लिख रहे हैं राम राम मैम और सीट खाली बाका। तो जी बिल्कुल आपके लिए भी सीट खाली है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना किस दिन बजेगा बताइएगा भारती जी, न्यायपारा विरई से प्रमोद कुमार साहू रूपेश्वर ठाकुर भीमा ठाकुर। और मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को मंडे को प्ले किया जाएगा, और आपका गाना मंडे को प्ले हुआ था। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि हाय, और हाय के सिवा तो कुछ लिखे नहीं है, तो मुझे आप ज़रूर बताएं कि आप कौन हैं और कहां से हैं ताकि मुझे पता चल सके। तो बहुत बहुत स्वागत है लेकिन आपका भी। और यहां पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि आपकी पसंद आपको प्यार भरा आदाब, और लिख रहे हैं प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग, और लिख रहे हैं फिल्म नाम है साजन बिन सुहागिन और 1978 का मूवी है, और आवाज़ है यशुदास हेमलता अनुराधा पौडवाल का, और गीत है मधुवन खुशबू देता है जीना उसका जीना है, और सहावर रोज रोड गुंज डुडवार से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और शामसुल कमर राही, और लिख रहे हैं थैंक्स फॉर यू मैसेज पढ़ने के लिए। और चलिए बिना देरी के आपके गाने को भी प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:54।

राधे राधे भारती जी, मैं देवराज कुमार रेशम नगर बघैया से एक बार फिर से प्रोग्राम में जुड़ गया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, टुडे ऑल सॉन्ग इज रियली गुड, थैंक्स फॉर गुड चॉइस। और सोनू सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ लिख रहे हैं कि मैम कैन यू पॉसिबल टुडे माई रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑलरेडी आई नो आई नॉट कम्प्लीट वन वीक, सो प्लीज ट्राई टू टुडे माई रिक्वेस्ट एंड थैंक यू। सोनू सऊदी अरब से जुड़े हैं, तो जी बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय हेलो भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाहिया खास से और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। हम भी अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और लिख रहे हैं सुपर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जी। और यहाँ लिख रहे हैं कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा नाम लालू प्रसाद है और मुझे एक गाना सुनना है और ये गाना बजा दीजिएगा। और गाने की बोल है कस्मे वादे प्यार वफा, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे काफी खूबसूरत सा सॉन्ग, और गाने की बोल थी कस्मे वादे प्यार वफा, और काफी खूबसूरत सा गाना था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय, तो आप ज़रूर बताएं आप कौन हैं और कहाँ से हैं ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं, और आपको भी स्वागत करते हैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि थैंक यू भारती जी गाना बजाने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं लालू प्रसाद। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ऑडियो के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुंची हुई है और इन्हें भी गाना सुनना है, तो चलिए इनके वॉइस को प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: पढ़ते हैं आगे।
0: और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, अहमद अली सारिया वार्ड नंबर से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं मुझे भी एक गाना सुनना है, और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने की बोल है तू हकीकत है और मैं सिर्फ एहसास हूँ, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710 3992 या 97 65 65 750।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:11 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सब तो जानते ही हैं कि अभी जो शो चल रहा है उसका नाम योर वॉइस योर चॉइस, यानी कि आपकी आवाज़ और आपकी पसंद। तो आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और अपनी आवाज़ में गाने की फरमाइश कर सकते हैं, और ध्यान रहे रिकॉर्डिंग 30 से 35 सेकंड का ही हो, और अपने गाने की फरमाइश को अपनी आवाज़ में भेज सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरेराज बाबा की नगरी से जुड़ गए हैं, और भारती जी गुड आफ्टरनून, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुलामी तो तेरे इश्क की है, वरना ये दिल कल भी नवाब था और आज भी है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग चल रहा है, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं भारती जी क्या ऐसा हो सकता है कि एक सिर्फ पुराने गाने की ही फरमाइश किया जाएगा, न्यायपारा विरई से प्रमोद कुमार कोई गलत बात किए तो माफ़ करना, धन्यवाद, एक दिन नया गाना की फरमाइश किया जाए। तो अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत दर्ज कराना है तो आप हमारे आपका संदेश मिला में कर सकते हैं, और जो भी बात रखनी है वहाँ पे आप रख सकते हैं अपनी बातों को। और ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगा, इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है, बस आप अपनी सुझाव को रख रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगली फरमाइश पहुँची हुई है, सोनू सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं कि बिग थैंक यू मैम, यू एक्सेप्ट टुडे माय रिक्वेस्ट सॉन्ग। तो चलिए इस आपके गाने को प्ले करते हैं। और यहाँ गाने की जो बोल पहुँच हुई है, गाने की बोल है, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, और गाना सुनना चाहते हैं और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: नशा जहा किसे छीने सप दे डंग वर्गा, आज दिन चढ़िया।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना सोनू जी की तरफ से, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उनकी यादों का हार जाना अच्छा है, आंखों में आंसू का भर जाना अच्छा है, उनको तो कोई परवाह ही नहीं, अब तो अरमानों का मर जाना ही अच्छा है। और लिख रहे हैं, मैम थैंक यू सो मच, प्ले फॉर माई सॉन्ग। और सोनू सऊदी अरब से जो कि जुड़े हुए हैं लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से, जो कि लिख रहे थे कि मुझे भी गाना सुनना है और गाने की भी बोल भेजे हुए थे। तो चलिए आपके भी गाने की फरमाइश को आज पूरा कर देती हूँ। और यहाँ गाने की फरमाइश जो कि पहुँची हुई है, हल्फा मचा के गइल। और बिना देरी किए चलिए आपके गाने को आज प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रंजीम 90.4 FM में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ, उत्तम सोनी जी की तरफ से लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वो लाख तुझे पूछती होगी मगर तू खुश ना हो ए खुदा, वो मंदिर भी जाती है तो मेरी गली से गुजरने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। और लिख रहे हैं कैसन साली रहली जी, और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि दिलीप जी सबसे पहले आपका तो धन्यवाद करते हैं, और आप भी कमाल करते हैं, धोती फाड़ के रुमाल करते हैं, भोजपुरी गाने का क्या कहना है, यह भी ऊपर से और बवाल करते हैं। और मैसेज करने वाले हैं सोनू जी सऊदी अरब से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैं तारकेश्वर मांझी दुबई से, और यहाँ लिख रहे हैं कि कुछ बातें करके वो हमें रुला के चले गए, हम न भूलेंगे यह एहसास दिल के चले गए, आएंगे कब वो अब तो यह देखना है, उम्र भर बुझ रही है आग जिसे वो जला कर चले गए। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ यहाँ इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है सनम दूसरा के दीवाना भिलवा, और काफ़ी बढ़िया सॉन्ग है, तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे तर्कवेश्वर मांझी जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग सनम दूसरा के दीवाना भइल बा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है इनकी तरफ से, जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना प्ले की। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी क्या हाल है जी। और अनूप कुमार कुशवाहा ग्राम निर्जना से अभी पुणे से सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे जो कि हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो नमस्ते दी
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं।
1: क्या
0: आप कैसी हैं बताइए, क्या हाल चाल है आपका।
1: हम ठीक है, अपना बताइए।
0: जी तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप।
1: हमको सोहर सुनना है, भतीजी हुई है तो।
0: अच्छा आपकी भतीजी हुई है।
1: हाँ। और... कोई अच्छा सुना दीजिए सोहर।
0: और ये गाना आपकी भतीजी के लिए है।
1: हाँ।
0: तो चलिए आपके लिए एक प्यारा सा गीत प्ले कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। और आप सभी को मैं एक और बात बता दूं कि आप हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम की वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, कैसी हो? और हम भी जुड़ गए हैं शो से और मैं सिद्धार्थ बरौली से और मेरा भी गाना चला दीजिए। और गाने की बोल है, आते आते तेरी याद आ गई, टाइम मिले तो बजा दीजिएगा मैडम जी। तो चलिए बिना देरी किए आपके इस गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज।

0: गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
1: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:57 हो रहे हैं और सो है समाप्ति की ओर। और आप सभी को बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं और कहीं भी और कभी भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी फिर से आपके साथ आ गए हैं और कैसी हैं ज़रूर बताइएगा। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लिख रहे हैं कि लड़का मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे हैं। लड़की तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का एक पत्नी और एक दो बच्चे। और काफ़ी मज़ेदार लाइन्स पहुँची हुई हैं धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से। पर यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं बाय बाय भारती जी कल मिलेंगे। और मैसेज करने वाले हैं गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से और यहाँ इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से, ये भी बाय बाय के मैसेज इनकी तरफ से भी पहुँच गया है। और यहाँ गणेश कुमार जी की तरफ से भी बाय बाय के मैसेज पहुँच गया और काफ़ी सारे लिसनर की तरफ से भी मैसेज पहुँच गया है। और यहाँ पंकज जी की तरफ से भी मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मस्त सॉन्ग धन धन बाग ललनवा। और इसी के साथ यहाँ लिख रहे हैं ओके भारती मैम मज़ा आया शो में और मिलते हैं फिर बाय बाय। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिलीप राम जी की भारती जी हमरों के बाय बाय करके रहुआ जाए तो रहो के हमरा तरफ से बाय बाय बा। और यहाँ हमारे पास जो कि आखिरी फरमाइश पहुँची उसको प्ले करते हुए आप सभी से विदा लूँगी। और गाने की बोल है हमके भूल गईलू हो और गाना है रितेश पांडे का। और सुनना चाहते हैं अंश मिश्रा जी मीरगंज से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही के गाने के साथ प्ले करते हुए आप सभी से लूँगी विदा। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। जी हाँ 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ 7277-16-65-96। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आप सबके लिए ये गाना प्ले करते हुए और लिख रहे हैं यहाँ पे कि सिद्धार्थ बरौली से कि आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू मैम मेरा गाना प्ले की। और चलिए आप सभी के लिए लास्ट सॉन्ग प्ले करते हुए जा रही हूँ बाय बाय और गाना प्ले करते हैं। एंजॉय कीजिए आप सभी।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0097-06-575।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज।

प्रस्तुत बा निर्गुण रउआ सबके सेवा में छोट भाई के द्वारा हम और बाबूजान भाई देखी एह के बाबूजान भाई सजौले वाले कितना बढ़िया आ गलती के क्षमा करब प्रस्तुत बा निर्गुण सुनी संसार में का होता आ का करे के चाहिए शेरबा

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी।

राम नाम आधार बा एह जीवन में एही से कवि कहतड़े देही का कहतड़े राम नाम रस पिया भैया हंसी।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमा जेड पर।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे। क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: Now pick it up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी बहुत बहुत स्वागत
2: है। नमस्ते
1: जी, नमस्ते।
2: अनिल बात कर रहे हैं आपको।
1: हाँ जी, कैसे हैं?
2: कैसी हैं?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?
2: मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हार्दिक तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
2: गाना हमको सुना दीजिएगा, वीर गति मूवी का एक गाना है, आप हम आपकी निगाह में का गाना है।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सबसे पहले आपको और राकेश सोनी जी को, मनोरमा जी को, सोनू जी को, आमे से बोला भैया को, पछेड़ा से आमे से रामा जी भैया को, पछेड़ा से बोला भैया को, दुबई से इरफान भैया को, और लुधियाना पंजाब के प्रमुख भैया को,

हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, कर याद उसको हर

अभी लेके चल।

आंचल हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल हर याद उसको हर पल ये है कैसा रिश्ता ये है कैसा

0: मुश्किल में किसी को याद करो, लम्हा अपने आप मिल जाएंगे। मुश्किल में किसी को याद करो, लम्हा अपने आप मिल जाएंगे। वक्त निकालो मिलने की, बहाना अपने आप मिल जाएंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: कमरा नसीब, डिस्ट्रिक्ट सिवान, जिले बकरी सुल्तान से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: हम तो बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसी हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ।
0: नहीं,
1: आज नाश्ता नहीं किए हैं, आज
0: जन्म परिवार।
1: जी, घर परिवार में सबको ठीक है।
0: हमने टाइम असल में देखा नहीं था, टाइम देखा कि साढ़े बारह हो गया। कॉले नहीं लगाया, जल्दी लगाऊ में देखिए लग भी दिया। बारिश हो रहा है?
1: हाँ, बारिश तो दिन में या रात में एक बार हो ही जा रहा है।
0: अच्छा, इधर तो हो ही नहीं रहा, दिल्ली में बारिश नहीं हो रहा
1: है। अच्छा जी।
0: हाँ, उत्तराखंड में शहर बारिश हो रहा है और नेपाल का तो हालात बहुत डाउन है वहाँ
1: तो पूरा डाउन है।
0: इधर बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी है, समझिए कि 4 नंबर हो गया, नंबर आने वाला है, जल्दी आएगा।
1: जी जी।
0: और बाकी सब ठीक ठाक है आपका?
1: हाँ हाँ जी, सब कुछ ठीक है। आप सब
0: ठीक? जी सब बढ़िया है। आपका नाम क्या हुआ?
1: मेरा नाम भारती है।
0: देखिए आपका नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार।
1: नहीं,
0: आपको मैंने पहचान लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो जो नई आरटीआई है वो भी शो चलाती है क्या?
1: मनोरमा जी? हाँ, वो भी चलाती है कभी कभी।
0: वो कौन शो चलाती
1: है? ये यही वाला।
0: अच्छा वही वाला। अच्छा यही वाला।
1: वो भी आपको आती है, जुड़ती है मेरे साथ, कभी कभी बैठती है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब ट्रेनिंग में तो आप लोग बस दो ही लोग है ना?
1: हाँ,
0: सोनू भाई है, वो तो हाँ। वो तो रात को करते हैं, उनका ड्यूटी है रात में। एक है रिंगीन में, जो भी आगे आए तो हम, ये तो सबसे बड़ी बात है, हमसे जो भी आए हमसे बड़ा दम था। हाँ, हमसे बहुत अच्छा लगा।
1: आप बात ही इतना अच्छा कहते हैं।
0: और मैं बहुत पुराना लिस्नर भी हूँ, और रेडियो रिंगीन का बहुत पुराना लिस्नर हूँ मैं। मुझे 2009 में इसकी स्थापना हुई, 2010 में जुड़ना शुरू किया। हेलो को लेकर मैंने हर कार्यक्रम में जुड़ता ही था, अंताक्षरी, दसपुरिया एक्सप्रेस, योर वॉइस ऑफ चॉइस, और कितने लिस्नर हमारे दूर हो गए, चले गए पहले का, अब काम काज में लग गए, फिर शादी ब्याह हो गया। रेडियो में एक फायदा है कि दोस्ती पहचान हर चीज का लगाव होता रहता है।
1: जी जी, नए लोग आते रहते हैं।
0: हाँ, नए लोग आते हैं, पुराने हो जाते हैं, फिर नए आते हैं, ये तो सिलसिला चलता रहता है। और जानती है भारती जी, बात है कि सिलसिला अच्छा भी है, व्यवहार हर इंसान से बनाए रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
0: लगाव अपना रखना चाहिए। मैं बहुत अलग टाइप का हूँ मैं, बातचीत हमको देखिए, मेरा एक अंदर स्थिति है, हम आप हमसे अच्छा से बात करिएगा, मैं भी करूँगा।
1: जी जी।
0: और हमको तीन लोग एकदम पसंद नहीं है, एक तो घमंड करने वाले, एक मतलब से रखने वाले, और तीसरा गलत करने। ये तीन लोग हमको एकदम पसंद, हम इन लोगों को पसंद नहीं, और इन लोगों से हमसे जमता ही नहीं। हमसे जमते ही जमता, और तभी बाकी सब
1: ठीक है। जी जी, बाकी ठीक है।
0: जी, तो आज हमको गाना, आज कव्वाली सुना
1: तो बता दीजिए। कव्वाली कोई
0: अपने अपने माँ बाप का दिल ना दुखा, ये कव्वाली सुना दीजिएगा। हाँ, और डेडिकेट है सबसे पहले तो आपको और आयशा, सबनम सिद्दीकी, अब्बास, सबीना, रोशनी कुमारी, इन्नीसा सुकुनवा, समीर आलम, गुलाम हुसैन, अहमद अली अख्तरी, और शाहजहां, रुखसार, हेना, हबीरा, भास्कर, वर्जू, मुकेश, उमा शंकर, दिलेंद्र, दिलीप राम, और जितने लिस्नर सुन रहे हैं, छूट रहे हैं, सबको सुना लीजिएगा। और योर वॉइस से चौथा मेरे साथ लगता है खत्म नहीं हुआ है, किस दिन कॉल किया हमको याद भी नहीं है। हमको उतना याद नहीं रहता है, क्या करेगा भारती जी, हजार टेंशन है।
1: ये तो है, टेंशन तो के पास।
0: हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान उस लाइफ का है उसका भी टेंशन है, जो उस लाइफ का नहीं है। टेंशन किसी को छोड़ता नहीं,
1: ये तो बात है।
0: किसी का कुछ का है तो किसी का सब कुछ का है, वो रहता है, वो छोड़ता है। हाँ, रानी और अकवा को भी डेडिकेट है, वो तो जुड़ती है। रानी जी तो जुड़ती है। मेरा कहना आपका, मेरे जिन ऐप डाउनलोड किया था डिलीट हो गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया था ना, उसको फिर मैं करा दूंगा। आज सुनूंगा था जो वाला एलोमेट चॉइस,
1: मेरा शनिवार को चलेगा।
0: आपका शनिवार को चलेगा? आज आज कौन चलेगा, बुध वाला?
1: नहीं मनोरमा जी, आज रिकॉर्ड करेंगे इस हाउस के।
0: ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। फिर मंडे को मिलेगा भारती जी। ओके, नमस्कार।
1: नमस्कार रेडियो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: जी थैंक यू मैडम जी, हमको गाना सुनना है।
11: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
12: ये है अपना सर झुकना जाने कौन सी पल, ये मौकी अमानत है, हर पल के गमों से लगा के जियो और न सर झुका के जियो।
11: जी जी, और ये गाना किसी को सुनवाना है।
12: जी अपना रेडियो FM का जितने भी प्रेमी आदमी है, रेडियो रिंगिंग सुनने वाले उन सबको।
11: जी,
12: और अपना आपका जो स्टाफ है उन सबको भी, आप भी सबको दीजिए करना, ठीक है।
11: जी जी,
12: ये गाना मिलेगा सुनने के लिए कि कल?
11: ये आपको शनिवार को मिलेगा सुनने को,
12: शनिवार शाम को है।
11: जी जी,
12: चलिए ठीक है।
11: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हथुआ से। हथुआ, हाल चाल है मैम?
1: मेरा, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: ठीक हैं।
1: अभी क्या हो रहा है?
0: बैठे हैं दुकान पे।
1: क्या कर?
0: दावा का दुकान है।
1: अच्छा,
0: गोपन मंदिर गेट के सामने।
1: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: कोई भी भोजपुरी गाना सुना दीजिए मैम।
1: गाने की बोल बता दीजिए। मतलब कौन सा गाना सुनना चाहते हैं उसकी लाइन बता दीजिए।
0: भोजपुरी कोई गाना बजा दीजिए, खेसरिया का।
1: अच्छा, खेसारी लाल जी का।
0: जी, जो ये वाला की जो मेहराबू से जीतल बा, तो जो गाना है तो वाला बजा दीजिए।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सुनवाना एक है हमारे दोस्त अर्जुन।
1: जी
0: जी, और अर्जुन इरफान, उसी को सुनवाना है।
1: ओके, प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: जी जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87894 18744।
12: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
13: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
12: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
13: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
12: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
13: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
12: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
17: नमस्ते।
16: नमस्ते,
17: कैसे हैं?
16: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
17: मैं भी ठीक हूँ। नमस्कार, तो हो गया?
16: नहीं, आज व्रत है।
17: हाँ, जन्माष्टमी। और सब बढ़िया है ना?
16: जी,
17: रेडियो रिमझिम टीम सभी सही है ना?
16: जी जी, सब कोई सही है। आप सबकी दुआ है।
17: क्या है? स्पोर्ट का दुआ है।
16: आप सब ठीक है ना?
17: हाँ हाँ, बढ़िया है। अभी रेडियो से ही सुन रही हूँ।
16: अच्छा, तो कौन सा गाना सुन रहे हैं आप?
17: रेडियो रिमझिम में कॉल लगाना।
16: अच्छा,
17: बहुत मुश्किल से लगा है।
16: अच्छा जी, आज कौन सा गाना सुनना है?
17: गाना जन्माष्टमी का ही सुनवा दीजिए।
16: अच्छा, कुछ गाने की बोल पता है आपको?
17: हाँ हाँ, है ना, कान्हा का जन्म आया है, घर घर में खुशियाँ लाया है।
16: और गाना किसी को सुनवाना है?
17: गाना सभी सुनेंगे, जितने सुनने वाले हैं, आप सुनेंगी, मैं सुनूंगी।
16: ओके, तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
17: थैंक्स।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम
0: जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैं सुधीर कौर बोल रहा हूँ जिला देवघर झारखंड से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी ठीक हैं।
1: और आपके रेडियो रंजन से पूरे टीम सब कैसे हैं?
0: जी जी सब कोई ठीक है।
1: जी जी
0: आप तो ठीक है?
1: जी बिल्कुल ठीक हूँ मैम, पूरे परिवार के साथ परिवार से कुशल मंगल है।
0: ओके तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
1: आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की को बधाई मैम, आपके पूरे रेडियो रंजन के परिवार को बधाई और देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई मैम।
0: जी जी आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी आज पुरानी फिल्म है, खानदान फिल्म है मैम, उसका गाना सुना दीजिए मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: गाने की बोल बता दीजिए।
1: जी की बोल है, बड़ी देर भाई नंदलाला तेरी राह तकी तेरी जुबाला।
0: ओके और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी सबसे पहले मैं आपको और जितने भी आरजे हैं के सबों को और हमारे कुछ दोस्त भी हैं, मदन कुल हैं, विष्णु कुल हैं, भोलाना कुल हैं, राजकुमारी हैं, शिखर प्रसाद यादव, रोहित कुमार सिंह, विष्णु प्रसाद यादव, राजीव रोशन, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ।
0: ओके तो फिर गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैम थैंक यू।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
10: जी मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरा से।
9: जी
10: कितना कॉल अटेंड कर लिए अभी तक?
9: अभी तो लगभग 4-5।
10: तो और सब सुनाइए, और सब खैरियत है?
9: हाँ हाँ, और सब खैरियत है।
10: चलिए खैरियत है। तो आज तो अष्टमी है ना आप लोग का, तो आप कॉल पे बैठी है, आप लोग का पर्व होना चाहिए।
9: नहीं तो वो तो व्रत रहते हैं ना, और शाम को जाके मनाते हैं, जो करना होता है शाम को होता है।
10: अच्छा, ये बरस शाम को होता है ना?
9: शाम को।
10: आज हमको उम्मीद नहीं था, अष्टमी को लेकर को उम्मीद नहीं था कि आप कॉल अटेंड कर पाएंगी या नहीं।
9: नहीं कोई बात नहीं, इसी में सब चीज है।
10: नहीं तो कोई गाना सुनवाइए, मैं तो खाली लिए सुन लोग को तो गाना ही सुनने के लिए फोन करता है जी, और कुछ तो लिए नहीं करता है। क्योंकि हम रेडियो रिमझिम है ना, हमको मजबूर कर दिया है ये आपका रेडियो रिमझिम जो है, हमको मजबूर कर दिया है हर वक्त जो है रेडियो रेडियो रेडियो है ना। हाँ, हम तो ज्यादातर मोबाइल से नहीं सुनते हैं, हमारे पास रेडियो है। रेडियो को लेकर कुर्सी पर बैठ जाता हूँ या कोई काम करता हूँ तो उसी के हालत में मैं सुनते रहता हूँ। और आप लोग से जो है इतना प्यार मिला है, जो कि आपसे बातें आदमी इतना कॉल लगने के बाद 10-15 मिनट आदमी इतना मेहनत करता है कॉल लगाने के लिए, क्यों? आप लोग से थोड़ा सा मोहब्बत है, में दो बातें कर लेता है, दूसरा और कुछ नहीं है मैडम इसमें, बस प्यार जिंदाबाद और रेडियो हमारा जिंदाबाद। तब मैडम आज कौन सा गाना सुनवाइएगा
9: बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे?
10: तो गाना तो सब बजता है, ये सब सुना हुआ गाना बजता है ना। आप कोई गाना सुनवा दीजिएगा मैडम
9: आपके नाम का।
10: मेरा नाम तो बेनाम तो है ये है, मैं मनान इसमें रखता हूँ रेडियो स्टेशन में, मेरा नाम है लिखा पढ़ी के नाते पे जो है वो मनान बोला जाता है, और ओरिजिनल लोग गांव वाले लोग बोलते हैं बेनाम बेनाम। बेनाम के नाम तो कोई गाना है?
9: देखना पड़ेगा।
10: हाय हाय हाय हाय यार आओ मैं बेनाम हो गया,
9: अच्छा
10: ऐसा एक गाना है अमिताभ बच्चन का शायद है, तो वही गाना सुनवा दीजिएगा।
9: ओके
10: यार आओ मैं बेनाम हो गया।
9: हाँ
10: गाना है
9: यारा
10: इसमें बेनाम हो गया। हाँ आपको भी सब गाना सुन सुन के सब मालूम हो जाता है। चलिए ठीक है मैडम सुनवाइए यही गाना।
9: ठीक है फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
10: ओके थैंक यू।

0: ठीक है, आप अपना बताए। आज तो जन्माष्टमी का त्योहार है ना
1: जी,
0: आज सुबह में इसीलिए हेलो फरमाइश नहीं चल रहा था 9 बजे से।
1: जन्माष्टमी का शायद सॉन्ग ही बज रहा है।
0: जी जी, और सब खैरियत ठीक है आप लोग के तरफ का, बारिश उसका?
1: हाँ हाँ, अभी तो मौसम काफी अच्छा बना हुआ है।
0: हम लोग के तरफ कल बारिश हुआ था, आज तो अभी तक बारिश नहीं हुआ है, रात में भी नहीं हुआ है।
1: जब तो चल रहा था ना उस टाइम, उस समय बारिश हुआ था हम लोग के भी तरफ कल।
0: चलिए तो वो गाना सुनवा दीजिएगा।
1: बता दीजिए,
0: गाना थोड़ा सा गा देते हैं।
1: बिल्कुल गाइए।
0: खत लिखना है पर सोचती हूँ, खत लिखना है पर सोचती हूँ, ये कैसे लिखूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी मानो इतना लिख दो, ख्वाबों की इनायत हो गई है। और सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ मनोरमा जी को भी, और जितने रेडियो रिमझिम के सदस्य हैं सभी को, और जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को इशाद मास्टर की तरफ से सुनवाना चाहता हूँ।
1: तो आप शुकाना भी करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 94.4 FM।

0: आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 94.5।
11: सलामुअलैकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम।
11: मैम आज तो भीड़ नहीं है, दम लगाए फोन लग गया।
12: हाँ भीड़ तो है, पर अभी जैसे कॉल कटा है वैसे आपका आया।
11: जी जी, बीच में रिचार्ज खत्म हो गया था, इसीलिए कॉल नहीं जा रहा था।
12: अच्छा जी
11: जी, वो दुकान है ना मेरा, वहाँ पर दुकान पर चल जाता है, इसीलिए घर पर रहते हैं तो करते हैं रिचार्ज वाला।
12: अच्छा, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले, रिकॉर्डिंग होता है कर लीजिएगा, कोई बात नहीं।
11: ठीक है, तो गाना सुना दीजिए मैम।
12: बता दीजिए,
11: अपना मन से सुनाइए आज।
12: हम अपने मन से, हम तो अपने मन से डेली सब कुछ सुनाते हैं, आप बताते तो बहुत अच्छा लगता।
11: नहीं मैम, अपना मन से, मेरा याद नहीं है।
12: अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
11: सब कोई को, जो जो जुड़ा होगा।
12: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 94.5।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम 90.4 FM
0: जी, नमस्कार। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
1: जी, नमस्कार। और आप जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: चलिए, खाना वाना लगता है क्या? स्टार्टिंग है क्या? खुशी तो जीवन है। और बताइए भारती जी, मौसम कैसा है पहले ये बताइए अपनी तरफ।
1: अपने तरफ तो मौसम डेली काफी अच्छा बन रहा है।
0: बारिश हो रही सुबह है कि नहीं?
1: बारिश भी हो रहा है बीच बीच में।
0: तो मैंने देखा कि सिवान रेलवे स्टेशन के पास जो है ना पूरा पानी भरा हुआ है। और बाढ़ का कहर जो है जगह जगह पे निचली इलाका है वहाँ पे अपना कहर मन ढा रहा है।
1: हाँ, अब धीरे धीरे असर दिख रहा है हर जगह पे।
0: जी, मैंने परिस्थिति जो जितना खराब है बाढ़ को लेके आदमी के जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, तो क्या कहा जाए, देख के ही इंसान अलग ही अपना अपना दिमाग भाव को जा रहा है। जो लोग कैसे अपनी परवरिश कर रहे हैं, कहीं कहीं पे पानी के लिए लोग तरस रहा है कि खेतों में पानी हो जाए तो धान की फसल अच्छा हो गई।
1: ये तो बात है,
0: नाश्ता पानी तो अब एक बड़ा रात नहीं होगा। और सब ठीक है ना?
1: हाँ,
0: आप मनोरमा जी कहाँ हैं?
1: वो भी हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो हम तो 11:30 से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अब जाके लगा है। मैंने कहा कि 11:30 के बाद ही लगेगा, लगता है।
1: हाँ, वैसे भी होने ही वाला है।
0: वहाँ से मैंने गाड़ी निकाला, वहाँ से कॉल करते करते कनॉट प्लेस आ गया। कनॉट प्लेस में आके सवारी उतारे हैं तो अब जाके लगा है। अब बताइए, इतना टाइम हो गया। आज एगो नायक भोजपुरी गाना लेके आए हैं,
1: बताइए
0: कि मर्दा पर के ताकि तक गर्दा उड़ाते हैं, शिल्पी राज।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सबसे पहले आप हैं, मनोरमा जी हैं, गुड़िया जी हैं, सविता जी हैं, बबीता जी हैं, निशा जी हैं, रोशनी जी हैं, कमरान भाई हैं, और ओकरा बाद स्पेशल सोनू भाई हैं, और वीरेंद्र भैया जी हैं, और तमाम जितने रेडियो रिंझिन सुनेंगे उन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट है। तो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इसलिए कि और भी लोग कतार में खड़े होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। तो आपको भी नमस्कार, मनोरमा जी को और तमाम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दिलीप राम, नाम तो पूछी ही नहीं थी।
1: नाम तो पता है आपका, दिलीप राम दिल्ली से।
0: जी, इसलिए कि नाम आप पूछे ही नहीं थे तो हम ही बता दिए हैं कि दिलीप राम दिल्ली से।
1: जी जी, आपकी वॉइस ही सब कोई पहचान जाएगा कि हाँ आप ही हैं।
0: तो नमस्कार, चलिए
1: रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी दिन शुभ।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AM-Z पर।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: राधे राधे। हार्दिक शुभकामना रेडियो पूरा परिवार के पूरे टीम को।
9: जी जी, आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
10: तो और आप लोग कैसे हैं?
9: जी हम सब भी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: बस चाय पी रहे हैं।
9: अच्छा, आज व्रत है कि नहीं?
10: नहीं, हम लोग क्या व्रत रखेंगे। हम लोग व्रत रखेंगे तो गाँव में थे तो व्रत रहते थे, परदेश में आने के बाद में कोई वो नहीं रहता।
9: कोई बात नहीं,
10: गाँव में कहे है जो पूर्व परदेश गए देवता पितर सबसे गए। तो इसको हम लोग याद रखे है, ये जो कहा है एक नंबर की बात बोला है।
9: वो तो है।
10: हाँ, तो यहाँ अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे?
9: ये तो बात सही है बिल्कुल आपकी।
10: व्रत भी है, व्रत भी रखना जरूरी है, वैसे हो काम की नहीं खाने पर भी चल जाएगा, तब तो व्रत करना सही है। और आप लोग सही है ना?
9: जी हम सब ठीक है।
10: चलिए, तो आज फरमाइश यही रहेगा जन्माष्टमी के ही अवसर पे एक बढ़िया सा कोई सोहर बजा देना।
9: अच्छा।
10: जिसमें राधे कृष्ण का हो, चर्चा सोहर की, कोई सोहर बजा देना अपने पसंद से आज।
9: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
10: पूरे जितने लिसनर सुनने वाले हैं सबको, और आप तीनों को, सोनू सर सुनेंगे वो भी सुन लेंगे, डायरेक्टर सर वो भी सुन लेंगे।
9: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: चलिए ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल?
0: मेरा हाल ठीक है।
1: क्या हाल है अभी?
0: अभी तो आप
1: उस समय से कॉल लगा रहे हैं, मेरा कॉलेज
0: तो कॉल पे बातें हो रही थी ना।
1: अच्छा, पहचान रहे कि नहीं?
0: गणेश जी।
1: जी, और सब बताइए?
0: मेरा ठीक है, आप करिश्मा जी का बताइए कैसी हैं?
1: करिश्मा जी थोड़ा तगड़े हैं, डाउन चल रहा है।
0: अच्छा,
1: सर्दी खोखी बुखार है, सही हो रहा है? सभी लोग तबियत खराब है मेरे घर में, पापा के, मम्मी के, करिश्मा की।
0: तो होगा ही, इसीलिए बचा के थोड़ा रहना पड़ेगा, और क्या।
1: नहीं तो बारिश में थोड़ा टाइम खाता है, करिश्मा नहा लेती है बारिश में।
0: नहीं तो बाद में नहीं नहाना चाहिए, ये थोड़ा ठंडा गर्म इधर लगता है तो तबियत जल्दी ही खराब होता है।
1: मनोरमा दीदी कहाँ पे हैं?
0: वो भी अपने काम में लगी हैं।
1: तो मनोरमा दीदी रिकॉर्डिंग नहीं करती हैं क्या?
0: करती हैं।
1: बात करने भेज?
0: हाँ, तो 12 बजे के बाद उनसे बात कीजिए, हो जाएगा।
1: फिर अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर 12 बजे के बाद क्यों करेंगे?
0: हाँ, मतलब आपको बता दे रही हूँ, फिर कभी करना होगा तो कर लीजिएगा।
1: नहीं तो अब करना होगा तो रिकॉर्डिंग मान लीजिए एक बार हो गया तो दोबारा करेंगे, दिक्कत होगा ना। उसका बोली बहुत अच्छा लगता है ना।
0: हाँ हाँ, बहुत मीठा है।
1: इसीलिए
0: तो आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना मेरे को सुनना है, आप तो जन्माष्टमी है तो इसी के गाना पे जा दीजिए, राधा कृष्ण जी के।
0: कौन सा गाना
1: आपका पसंद से जो भी सुना दीजिए।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, देवी को, पूरा रेडियो रिमझिम को सुनाना है।
0: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470-10-30-9-92 या 9765-65-7-50।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
5: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: सलाम अलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम।
8: कैसे हैं मैम?
7: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
8: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं? परापरी दोनों आदमी लेते हैं लोग का कॉल।
7: हाँ हाँ, अभी तो मेरा चल रहा है, बाद में उनका चलेगा।
8: अच्छे है ना? तो आज हमको सॉन्ग सुनवाइए विवाह मूवी से, खुदा की कसम खा के कहते हैं हम। हेलो, खुदा की कसम खा के कहते हैं हम, और सुनवाना है सबसे पहले आपको
7: जी,
8: और मुनारमा मैम को भी, सोनी मैम को, अख्तरी को, कमरान रशीद को, राघव जी को, असलम भाई को, और फिरोज भाई को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
7: ओके, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
8: थैंक यू मैम। योर वॉइस योर चॉइस चलेगा क्या मैम?
7: जी जी बिल्कुल चलेगा।
8: हाँ चलिए, आज मेरा नंबर है, आज अगले जुम्मा को किए। अब मेरे तरफ से सभी भाई बहनों को जुम्मा मुबारक।
7: जी जी

0: मैं
1: विनय कुमार गौरव तहसील कुवाया जिला शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और अभी सुन रहे थे तो अचानक आपका चैनल आ गया रेडियो रिमझिम।
0: जी
1: 4-5 दिन हुए लगभग। अच्छा लगा, आप लोगों का नंबर बताया वो भी नोट कर दिया हमने, लगाते रहे फोन भी लग गया।
0: अच्छा जी,
1: और अच्छा लगता है कार्यक्रम आपका।
0: चलिए बढ़िया, आपको अच्छा लगता है इसके लिए धन्यवाद।
1: और हमारा अनुरोध आप लोगों से है कि कृपया हिंदी भी गाना है कुछ अधिक सुनवाया कीजिए, क्योंकि भोजपुरी हम लोगों को इतना समझ में नहीं आता है ना। हम लोग उसी के हैं।
0: आधे घंटे के लिए भोजपुरी गाना चलता है वो शाम को,
1: इसी फरमाइशी कार्यक्रम में ना,
0: और इसमें जो फरमाइश करते हैं तो उनकी पसंद का होता है, तो अब इसमें कुछ कह नहीं सकते। मान लीजिए आप जो आपकी पसंद है वो आप बताइएगा तो मैं तो सुनाऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, आप जाके कूच का कार्यक्रम होता है उसका बताएंगे टाइमिंग क्या रहता है? सुना था हमने एक बार।
0: हाँ हाँ, उसका भी टाइमिंग है।
1: उसका प्रसारण तो सुबह में होता है, कोई टाइम है?
0: 12 से 1:30 बजे के बीच में होता है रिकॉर्डिंग।
1: और प्रसारण उसका कब होता है?
0: उसका प्रसारण संडे को ही होता है, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगता है और बढ़िया है।
0: जी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: हमारी फरमाइश है एक फिल्म है अर्पण,
0: और गाने की बोल
1: गाने के बोल है तौबा कैसे है नादान, आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत है रजनीकांत प्यारेलाल का, गीत आनंद भट्टी का है। और यहाँ पर हमारा कहना है इस गाने में जो नायिका है वो घुंघरू के माध्यम से मन की बखाप नहीं कहती है, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं हारमोनियम वगैरह प्ले करता हूँ और संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरीके से अच्छा लगता है हमको इसे सुनना और बजाना, गाना से बचा लगता है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: नहीं, सभी को सुनवाना है, जितने लोग सुनते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, सभी को सुनवाना है।
0: बिल्कुल जी, तो आपका गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो।
15: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 9.4 FM में।
15: नमस्कार मैम।
14: नमस्कार,
15: कैसे हैं मैम?
14: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
15: हम भी अच्छे हैं मैम। और सब RJ लोग कैसे हैं?
14: जी सभी RJ ठीक हैं।
15: तो मैम गाना सुनवा दीजिए।
14: जी बता दीजिए कौन सा।
15: बोल राधा बोल तुमने ये क्या किया,
14: और ये गाना किसी को सुनवाना है?
15: रेडियो रिमझिम के जितने भी श्रोता है सभी सुनेंगे।
14: अच्छा, और ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 9.4।

0: स्वागत
1: हेलो,
0: है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। आज आपको कितने बार ट्राई करना पड़ा?
1: आज तो बहुत कम ही करना पड़ा।
0: ये सब तो अच्छा है कि आज ट्राई नहीं करना पड़ा ज्यादा। क्या हाल है आपकी?
1: ठीक है भाई, ठीक है। आपने बताइए।
0: लोग भी ठीक है।
1: तो मौसम कैसा है आज का उधर?
0: मौसम तो काफी सुहाना डेली बन रहा है, कहीं अच्छा लग रहा है।
1: और तो पानी आ ही गया होगा नदी में?
0: पूरा पानी आ गया है,
1: पूरा फुल हो गया है। और सब बताइए।
0: और सब ठीक।
1: आज कृष्ण भगवान का बजा दीजिए।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: कोई सा अच्छा जो हो बजा दीजिएगा।
0: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: पहले नंबर आप सुनिएगा, जो सुनने वाले हैं सब।
0: अच्छा, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए। 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994911 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बम्बई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी।
5: भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से अभी कुछ ही क्षणों में रवाना होने वाली।
6: अरे भाई साहब, अरे मैं 1 घंटे से इस प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा हूँ पर।
7: हाँ, तो भाई साहब तो चक्कर लगा रहे हो तो अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी सुबह 2 चक्कर नुक्कड़ के बरगद के पेड़ के लगाता हूँ।
6: अजी आप मेरी बात तो सुनिए।
7: तो फिर मैं और कर क्या रही हूँ?
6: नहीं नहीं, वैसे तो आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन।
7: अरे लेकिन क्या, जब बात सुन रहा हूँ तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि बात तो सुनिए।
6: अजी आप समझे नहीं।
7: अच्छा, बहुत अच्छे है, मतलब आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। आप सोचते हैं कि आप जैसा बुद्धिमान कोई आया ही नहीं।
6: अरे यार आप जाइए प्लीज यार।
7: जाइए प्लीज का क्या मतलब? मैं कोई अपनी मर्जी से आपके पास आया था, आपने खुद मुझे आवाज देकर बुलाया था।
6: अरे गलती हो गई तो माफ करो।
7: ये स्टाइल ठीक है, ये स्टाइल ठीक है। और सुनो, आइंदा कभी ऐसे मत बुलाना।
6: नहीं बुलाऊंगा, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा।
7: आपने मुझे बुलाया क्यों था ये तो बताइए।
6: हे भगवान, देखिए भाई साहब, बाबा जी मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ पर है?
7: क्यों
6: जी, क्यों क्या मतलब है?
7: भाई तुम क्यों पूछना चाहते हो कि इंक्वायरी ऑफिस का मतलब पता क्या है?
6: अरे मुझे काम है।
7: वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम है?
6: अरे भाई मैंने कहा ना मुझे काम है।
7: अरे फिर भी।
6: अजी क्या फिर भी, मुझे कोई भी काम हो आपको क्या मतलब?
7: अरे वाह, आप उससे पता पूछ रहे हैं कि नहीं?
6: पूछ रहा हूँ।
7: तो फिर मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आप पता क्यों पूछ रहे हैं।
6: अरे भाई मैंने कहा ना मुझे काम है।
7: हाँ तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि वो काम क्या है।
6: अरे यार तुमको पता बताना तो बताओ यार, नहीं तो मुझे माफ करो।
7: अरे आप नाराज हो गए। पता बताने में क्या ऐतराज हो सकता है, अभी बता देता हूँ।
6: धन्यवाद।
7: धन्यवाद?
6: अजी आपके पता बताने का धन्यवाद।
7: लेकिन भैया मेरे, अभी मैंने बताया कहा तुम्हें।
6: नहीं मेरा मतलब ये था कि आप पता बताने को राजी हो गए ना इसलिए।
7: अरे मेरे भैया अभी राजी तो हुआ हूँ। पता बताया थोड़े ही है, और अगर अभी नहीं बताऊँ तो आपका धन्यवाद बेकार चला जाएगा। देखो भाई, धन्यवाद बताने के बाद देना मान देना।
6: ठीक है,
7: देखो यहाँ से सीधे
6: हाँ सीधे
7: सीधे जाओ।
6: जाऊँ फिर
7: दाएं मुड़ू।
6: ठीक है,
7: फिर 10-12 कदम चलने पर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा।
6: अच्छा, फिर
7: उसमें दाई तरफ मुड़ जाओ।
6: दाई तरफ मुड़ जाऊँ? मुड़ गया।
7: फिर 10 कदम आगे चलो।
6: ठीक है,
7: फिर 10 कदम पीछे चलो।
6: है? अरे 10 कदम आगे चलूं, फिर 10 कदम पीछे चलूं। मैं चलूं ही क्यों?
7: बच चलो, खड़े रहो।
6: अरे भाई साहब आपका जल्दी है।
7: भाई आप कह रहे हैं कि मैं चलूं ही क्यों,

0: तो फिर मैं पता बताऊं नहीं क्यों?
1: अरे मेरा कहने का मतलब ये है बाबा जी, जब 10 कदम आगे चलना हो फिर 10 कदम पीछे चलना हो तो चलने से क्या फायदा?
0: आपको पता मालूम कर रहे हैं या नहीं?
1: अरे करना है
0: तो फिर चलना ही पड़ेगा।
1: ठीक है बाबा जी, बताओ आप।
0: हाँ, तो उसके बाद सर ने एक वजन तोलने की मशीन आएगी।
1: अच्छा, फिर
0: बस उसके बराबर ही किताब की दुकान है।
1: किताब की दुकान? पर किताब की दुकान से क्या मतलब?
0: अरे मतलब क्या, किताबों की दुकान मतलब जहाँ किताबें मिलती है।
1: तो मुझे किताबों की दुकान से क्या लेना देना, मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए।
0: अरे वही तो बता रहा हूँ, उन किताबों की दुकान के सामने ही इंक्वायरी ऑफिस है।
1: अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।
0: सुनिए,
1: अब क्या हो गया?
0: वाह भैया वाह, ऐसे ही चल दिए? एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त लगाकर तुम्हें पता बताया और तुम उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते?
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है
0: अब ठीक है, अच्छा तो मैं चलू।
1: अच्छा जी भाई साहब,
0: 10 कदम आगे,
1: 10 कदम पीछे,
0: 10 कदम पीछे।
1: धन्यवाद। हे भगवान, कैसे कैसे लोग बनाता है आदमी साहब। चीनी गति का समाचार। ये रहा दरवाजा, वो रही वजन तुलने की मशीन, वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। बहुत सुंदर बैठे हैं, भगवान मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। गुड मॉर्निंग सर।
2: क्या क्या कहा तुमने?
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: यस सर।
2: घड़ी है तुम्हारे पास?
1: घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्यों?
2: अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी।
1: हाँ घड़ी है ना।
2: क्या टाइम हुआ?
1: 12:30।
2: 12:30।
1: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग क्यों?
1: हाँ?
2: गुड आफ्टरनून क्यों नहीं?
1: यस सर। गुड आफ्टरनून सर।
2: थैंक यू, जाओ।
1: सर सर
2: अब क्या है?
1: सर मैं आया हूँ।
2: आप आए हैं ये तो मैं देख रहा हूँ, आपकी फोटो उतरवाऊँ?
1: नहीं सर, वो बात ये सर। हाँ ये सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए।
2: ये क्या है?
1: ये सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट।
2: तुम्हारी ज्वाइनिंग रिपोर्ट? ये जन्मपत्री?
1: अरे जन्मपत्री नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सर मेरी ड्यूटी लगी है सर।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, नए नए आए हो?
1: यस सर।
2: आज पहली दफा?
1: हाँ सर।
2: और पहली दफा ही लेट?
1: हाँ?
2: 2 घंटा से भी ज्यादा।
1: वो सर वो रास्ते में सर, रास्ते में।
2: रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो।
1: हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ, लेकिन सर वो बात ये कि
2: जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन लेकिन क्यों लगा रहे हो?
1: वो सर बात ये सर, वो मैं ये कह रहा था।
2: अच्छा अच्छा छोड़ो, वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें।
1: इस पे?
2: देखिए
1: सर। हाँ हाँ बैठ गया सर।
2: हाँ अब ये पूछताछ का दफ्तर है।
1: यस सर, पूछताछ का दफ्तर।
2: हाँ। किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
1: यस सर।
2: समझ गए?
1: समझ गया सर।
2: और हर यात्री से बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा कर बोलना है।
1: जी सर।
2: तो फिर शुरू हो जाओ।
1: हाँ सर।
2: क्या बोलो?
1: हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना।
2: अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना।
1: हाँ पूछो।
2: आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है?
1: अरे मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आज आया हूँ।
2: खा गए ना कच्चा?
1: जी
2: हाँ, टेम्पर लूज कर दिया
1: तो?
2: अभी समझाया था, बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे।
1: अच्छा सर मुस्कुरा कर? हमको मुझे पता नहीं था आप कब खुलती है, मैं तो आज आया हूँ।
2: ये दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूर यही क्या दांत दिखाओ?
1: अच्छा सर
2: मुंह बंद करो।
1: हाँ, मुझे पता नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ।
2: अब क्या हुआ, पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया?
1: अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है, मैं देख लूंगा।
2: कोई बात, पसीना पहुँचो।
1: जी।
2: अबे मेरा नहीं, अपना पसीना पहुँचो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ।
1: ठीक है साहब।
2: खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो।
1: हाँ,
2: कोई दिक्कत हो तो मेरे पास मेरे कैबिन में आ जाना।
1: आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही।
2: मैंने कोई लतीफा कहा है?
1: नहीं तो
2: फिर हंसे क्यों?
1: वो तो मैं यूं ही हंस रहा था सर, वो अभी कहा था ना हंस के।
2: अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, खिड़की खोलिए और अपना काम शुरू कीजिए।
1: ठीक है
2: तो मेरे पास आ जाना।
1: हाँ सर आ जाऊंगा। क्या आदमी है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। अरे वो पकौड़े वाले।
3: क्या बाबू जी?
1: कैसे देते हो भैया पकौड़ी?
3: इतना भी नहीं मालूम कैसे देते हैं पकौड़ी, काले से माल के ऐसे देते हैं बाबू जी।
1: अरे मेरा मतलब है क्या भाव देता है?
3: 250 रुपए की 10 किलो। कितनी दूँ?
1: 250 रुपए की 10 किलो, 500 ग्राम। कितने की देता है?
3: अब खुद हिसाब लगा लो बाबू जी, गणित नहीं आती है क्या?
1: अबे तो मैं कोई गणित का हिसाब लगाने बैठाऊंगा यहाँ? है जोड़ 100 ग्राम पकौड़ी दे।
3: नहीं दे सकता।
1: नहीं दे सकता।
3: नहीं दे सकता।
1: क्यों भाई, क्यों
3: नहीं दे सकते? अरे खत्म हो गई, इसलिए नहीं दे सकता भाई।
1: खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो फिर चिल्ला क्यों रहा था अभी? पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम।
3: बाबू जी दिन भर ऐसी चिल्ला देने से आदत पड़ गई। मैं तो ऐसे कर रहा था, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम, पकौड़ी गरम।
1: अरे भगवान, अरे कोई ढंग का आदमी मिला दे, पता नहीं कौन से ग्रह के आदमी मिला। हे भगवान,
4: अल्लाह के नाम देते अजय बेटा।
1: हे प्रभु, कहाँ ड्यूटी लग गई?
4: अजय बेटा, वो बारात आने वाली थी, आ गई क्या?
1: अरे कौन सी बारात चलाने?
4: वो दूल्हा कहाँ है?
1: ये दूल्हा।
4: ए बेटा, नाराज क्यों होता है? दूल्हे का बाप तो है बाप।
1: अरे दूल्हे की माँ, चले आज बाहर जा, चल।
4: अल्लाह तुझे सलामत रखे।
1: हे भगवान,
4: चार है,
1: कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में।
4: शहर पर पाए तेरा
5: राम राम
1: राम राम राम राम
5: राम
1: राम राम
5: राधे राधे
1: राधे राधे
5: कृष्णा कृष्णा। मैं पूछ रहा था क्या इंक्वायरी ऑफिस यही है?
1: हाँ हाँ यही है। क्यों?
5: मतलब पूछताछ नहीं होती है?
1: अरे यही होती है।
5: भाई साहब, इस शहर में अच्छे से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं?
1: कपड़े?
5: हाँ हाँ कपड़े, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती वगैरह कहाँ मिलते हैं?
1: मुझे क्या पता भैया कहाँ मिलते हैं?
5: पता नहीं, कमाल है।
1: क्या कमाल है?
5: ए भाई साहब, आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं?
1: जूते?
5: हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले, पैर में पहनते हैं जूते।
1: अरे मुझे मालूम है पैरों में पहनते हैं, लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब?
5: कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए आप, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूं?
1: अबे तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार, चोरी कर डाका डाल, मेरे से क्या पूछ रहा है?
5: अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा?
1: अबे तो इस पूछताछ का मतलब है रेल में पूछताछ, रेलों के बारे में पूछा जाता है।
5: ओ, रेलों के बारे में पूछा जाता है?
1: हाँ।
5: भाई साहब, ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं?
1: मेरे घर पे बनते हैं।
5: घर पे बनते हैं डिब्बे?
1: हाँ।
5: तो भाई साहब ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेल लेगा।
1: खेल लेगा? अबे डब्बे कहाँ बनते हैं, रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना?
5: तो भाई साहब गुस्सा काहे को होते हो, रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना।
1: अबे तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
5: ओ, रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
1: हाँ।
5: भाई साहब, ये रेल आती क्यों है?
1: अबे यात्रियों को लेने आती है बाबा जी।
5: तो गुस्सा क्यों होते हो? फिर जाती क्यों है?
1: उन्हें लेकर जाती है, पर तुझे कहाँ जाना है?
5: मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आया था।
1: टाइम पास करने आया था?
5: भाई साहब इंजन भेज देना।
1: टाइम पास करने आया था? भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी,
6: अजी भाई साहब जी, क्या बात है भाई साहब, क्यों हाँफ रहे हो आप?
1: अजी 5 नंबर के पेड़ों से पक्कर आ रहा हूँ भाई साहब जी।
6: अरे ऐसी क्या आफत आ गई यार?
1: मैं जाना चाह रहा था भाई साहब जी, ये भोपाल है जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब जी, कितने बजे जाती है?
6: उदयपुर जाने वाली
1: भाई साहब जी, उदयपुर जाना जी भाई साहब जी।
6: अरे देख के बता रहा हूँ भाई, ये ठहरा तो खा
1: भाई साहब, जल्दी बताओ जी।
7: उदयपुर जाने वाली ट्रेन
1: आई जाएगी भाई साहब,
7: बता रहा हूँ भैया।
6: अरे भैया वो तो 11 बजे जाती है, वो तो गई
1: गई।
6: हाँ गई।
1: अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन?
6: अरे हाँ भाई उदयपुर जाने वाली ट्रेन।
1: ओ, जो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है भाई साहब जी वो?
6: अरे हाँ भाई 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, गई वो ट्रेन।
1: आप समझ नहीं रहे, 7 डाउन है वो, पूछ रहा
6: हूँ। मुझे मालूम है 7 डाउन है, 7 डाउन है, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, उदयपुर जाती है, 11 बजे जाती है ट्रेन। गई
1: गई क्या?
6: हाँ गई।
1: अच्छा भाई साहब,
6: क्या अच्छा भाई साहब? अजी भाई साहब जी, क्या है
1: अजी, कहीं शंटिंग करने तो नहीं गई है?
6: अब शंटिंग करने वो 9 बजे जाती है भाई, और अभी 12:30 बज चुके हैं, ट्रेन गई।
1: अरे तो नियम थोड़ी, कभी लेट भी तो जाती होगी ना।
6: अरे आज नहीं हुई लेट,
1: मतलब चली गई।
6: चली गई,
1: ठीक है भाई साहब।
6: क्या ठीक है?
1: ओ भाई साहब जी,
6: अरे अब क्या है भाई?
1: अजी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो?
6: हम तो पागल है, हम तो यूं ही ड्यूटी पे आ गए। अबे यार ये रजिस्टर क्यों रखा है यार, काहे के लिए रखा होता है? इसमें देख के बताया था मैंने, गई ट्रेन।
1: गई क्या?
6: हाँ गई।
1: ठीक है भाई साहब,
6: पता नहीं कैसा आदमी
1: भाई साहब जी।
6: अरे अब क्या है यार,
8: आप मजाक तो नहीं कर रहे ना?
1: तू जीजा जी लगता है मेरा, तू भाई है मेरा, दोस्त है, मैं क्यों मजाक करूंगा तेरे से? कह दे तेरे से उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई तो गई,
8: खाओ मेरी कसम।
1: तेरी कसम भाई, तेरे पिताजी की कसम, अरे तेरे पूरे खानदान की कसम दादा, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई।
8: वास्तव में गई क्या भाई साहब?
1: वास्तव में गई यार, सच्ची में गई।
8: सच्ची?
1: मैं सच्ची गई, रियली में गई, अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई बाबा।
8: ठीक है भाई साहब।
1: भगवान क्या करूं।
8: अजी भाई साहब जी,
1: अरे मेरे बाप, हमें उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई।
8: नहीं वो तो आपने बता दिया गई,
1: तो
8: मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या?
1: आधी खड़ी है बाहर।
8: आधी खड़ी है ना?
1: खुली। अबे आधी ट्रेन कैसे जाएगी, ट्रेन तो पूरी जाती है।
8: पूरी जाती है?
1: हाँ।
8: फिर तो इंजन भी गया होगा।
1: क्या आदमी, अबे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार, इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को।
8: गार्ड का डिब्बा भी गया क्या भाई साहब?
1: अबे गार्ड के डिब्बे, डाक के डिब्बे, सारे डिब्बे गए भैया, तो चलते रहेगा।
8: पहिए भी गए क्या भाई?
1: अबे कौन से चरम का बदला ले रहा है यार, अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे?
8: भाई साहब मेरा उदयपुर जाना जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा।
1: जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई?
8: क्यों, छत भी जाती है ट्रेन के साथ?
1: नहीं भाई साहब, वो छत तो क्या ट्रेन के पीछे पीछे चलती है।
8: मैं भी ये
1: सोच, ट्रेन में ही तो लगी होती है छत।
8: अच्छा भाई साहब आप कह रहे तो मान लेता हूँ।
1: अरे कान होगी लगा दी, पड़े पड़े लोग।
8: ओ भाई साहब जी,
1: अरे अब क्या है यार,
8: कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या?
1: एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब।
8: क्या भाई साहब?
1: ऐसा करो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ उदयपुर।
8: ऐसे तो देर हो जाएगी।
1: तेरा कह रहे क्या, कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे? चलो ऐसे।
8: अजी भाई साहब मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई?
1: अरे ट्रेन का टाइम हो गया भैया और तुम लेट हो गए इसलिए चली गई।
8: नहीं मैंने टिकट लिया था भाई साहब।
1: बिना टिकट लिया था तू भगवान हो गया क्या? कोई बैठ कहा उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई, चलो ऐसे।
8: अजय भाई साहब आप ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा।
1: ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे?
8: अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो आप रेलवे वालों की धांधली है।
1: रेलवे,
8: हाय हाय रेलवे,
1: ये क्या कर रहे हो यार?
8: देखो आप मेरे को उदयपुर भेजो, नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा।
1: तो मैं उदयपुर कैसे भेजू?
8: अरे कैसे भेजो, आपको क्या है कि एक आध डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वाले पैसेंजर को असुविधा ना हो।
1: हाँ भाई साहब मैं आपकी सलाह है ना रेल मंत्री तक पहुँचा दूंगा।
8: अरे लेकिन मैं अभी उदयपुर कैसे जाऊँ?
1: और तू कैसे जा यार, मैं क्या करूँ इसमें? हाँ वहां सब एक काम हो सकता है, अरे आप बस से चले जाओ।
8: बस से नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
1: ट्रेन तो चली गई,
8: मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो
1: गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
8: अब आप मुझे बताए उदयपुर कैसे जाऊँ?
1: अरे मैंने कहा ना दादा बस से चला जा। अरे आज ही बस से चला जा यार, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, कोई पैर पड़ू बस से चला। आरती सुनते नहीं, जय जगदीश भाई साहब, बस से चला जाओ यार।
8: ठीक है भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस से चला जाता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद
8: भाई साहब जी।
1: अब बोलो
8: आप मेरा एक काम करोगे क्या?
1: कहिए।
8: वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से,
1: छोड़िए हम आपको।
8: नहीं नहीं आप फोन करके टिकट बुक करा दो मेरा।
1: फोन करूं?
8: हाँ भाई साहब।
1: हाँ एक मिनट रुको भाई साहब, तो नंबर क्या है वहाँ का?
8: 2 26 21 22। मैं ये बता रहा था।
1: 26 21 22।
8: हाँ भाई साहब जरा सा।
1: अरे उठा ले रे। हेलो, हाँ बस स्टैंड से। हाँ साहब ये मैं पूछ रहा था साहब, ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या? हाँ। है? नहीं भाई साहब मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा ही हूँ। नहीं वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज। हाँ मैं पूछ रहा था भाई साहब उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है, कि वो टिकट विकट मिल सकती है क्या? उदयपुर जाने वाली बस गई हट। ठीक है भाई साहब, वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई।
8: ऐसे पूछो वास्तव में गई क्या
1: भाई साहब? वास्तव में गई क्या जी? वास्तव में गई।
8: ऐसे पूछो पूरी गई क्या?
1: मतलब पूरी भाई तेरी तो इधर आ तू। जाना नहीं जी तेरी पकौड़ी। बाबू मैं तो पकौड़ी मैसेज थोड़ी आया हूँ।
8: तो क्या कहना है फिर?
1: मैं तो मैसेज देने आया हूँ।
8: मैसेज देने?
1: हाँ।
8: क्या मैसेज देना भाई?
1: वो जो सामने खंबे के सारे खड़ा है सारा लेके।
8: कहाँ पे?
1: वो सामने खंबे के देखो ना यार।
8: वो हाँ। क्या कह रहा है वो?
1: उससे पूछवाया कि उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या? ये कोई नौकरी है? मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। सर सर सर सर सर
2: क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है?
1: ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए।
2: क्या है?
1: ये सर मेरा इस्तीफा।
2: अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं।
1: जी कायदे कानून क्या होते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। कायदे वायदे कानून कानून
2: तुम्हें
1: मैं
2: चार्ज
1: तो ये मेरा इस्तीफा है।
2: अरे भैया इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है।
1: चार्ज देना पड़ता है यहाँ भी? कितना चाहिए बोलो, कैसे बोलो।
2: अरे अरे अरे ये वाला चार्ज नहीं, हैंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उदयपुर वाली ट्रेन गई क्या।
1: हाँ गई।
9: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
13: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
12: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
14: ठक ठक।
15: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: और बेगूसराय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। यह दिन महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में बिहार की दो शिक्षिकाओं समेत देशभर के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील होता है।
4: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
3: राष्ट्रपति ने गोपालगंज जिले के कुचायकोट स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पित शिक्षण कार्यों के लिए सम्मानित किया।
5: बिहार के कुचायकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचायकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने बांका जिले के पिदायडी स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका खुशबू कुमारी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
6: के विदायदेह स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार की दो शिक्षिकाओं के सम्मानित होने पर शिक्षा जगत में उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में शिक्षिका पुष्पा प्रसाद ने बताया कि उन्होंने घर घर जाकर अभिभावकों से संवाद किया और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया।
7: बच्चे जो है खेल में ज्यादा प्रभावित होते हैं, खेल में अभिरुचि रखते हैं। बच्चों को कुछ दे दो, कॉपी भी दे दो, तो वो ना खेलना शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे खेल रहे हैं तो क्यों ना मैं खेल खेल कर ही सिखा दूं। तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट रखा कि मैं खेल खेल में शब्दों के माध्यम से या अभिव्यक्ति के माध्यम से या चित्रांकन के माध्यम से खेल खेल तक मैं बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ। मेरा मकसद उद्देश्य होता है कि बच्चा वो चीज समझ जाए।
3: शिक्षिका खुशबू कुमारी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि अभिभावकों के सहयोग से उन्होंने विद्यालय के परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया।
8: हमारे विद्यालय में बहुत ही कम समय में परिवर्तन दिखने शुरू हो गए। अभिभावक इतने जागरूक हो गए कि 4 से 5 महीने में हमारे बच्चों की उपस्थिति 40-50% से बढ़कर 90% से अभव हो गई। इनमें अभिभावकों का पूरा सहयोग रहा।
3: शिक्षक दिवस पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शैक्षणिक योगदान और बेहतर कार्य के लिए 37 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों को बेहतर शिक्षा और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सर्वम AI जैसी कंपनियों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा।
0: अभी हम लोग गूगल के साथ भी MOU कर रहे हैं, जो हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर आपको कैसे अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और लगातार विद्या साथी के माध्यम से कई चीजों की स्थापना आपके साथ की जा रही है। हम लोगों ने 7 संस्थाओं के साथ MOU किया है, जिससे कि गुणवत्ता हमारे कैसे बढ़ सके इसकी चिंता करना।
3: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वित्त रहित शिक्षकों के लिए अलग से वेतनमान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र खोलने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA में आज शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स के 4th बैच का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। परेड के बाद 253 अधिकारी कैडेट भारतीय सेना में कमीशन हुए, इनमें 35 महिला अधिकारी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने आज बेंगलुरु में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास और स्वदेशी उत्पादों के प्रोत्साहन तथा हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिहार शरीफ के दीपनगर में जदयू की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रवण कुमार ने जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू ने पूरा जीवन शोषित वंचित और दलित पिछड़ों के हक के लिए न्योछावर कर दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर आज अपने उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर दर्ज किया गया। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पटना के गांधी घाट पर नदी का जलस्तर 50.53 मीटर दर्ज किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: गंगा का जल स्तर तो ये आज पटना में गांधी घाट पर नया HFL मतलब ये ऑल टाइम रिकॉर्ड बना। अभी तक गांधी घाट में 50.52 मीटर का रिकॉर्ड था, जो अभी तक का रिकॉर्ड उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। और अभी तक के सूचना के मुताबिक अभी राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन हमारे अधिकारी सभी तरफ सभी जगह सभी खतरनाक बिंदु पर अधिकारी मुस्तैद हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर जिले के राघोपुर प्रखंड के खरीक पंचायत में बाढ़ और कटाव की स्थिति की समीक्षा की। बाद में उन्होंने बेगूसराय जिले के उलौक के कैलाशपुर में भी बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार बाढ़ की स्थिति को लेकर संवेदनशील है।
2: सभी जगह प्रशासन अलर्ट होकर आम लोगों को सुविधा दे रहा है और इसका परमानेंट इलाज की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू किया है। अभी कोसी पर काम कर रहे थे, गंडक पर काम कर रहे थे, अभी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हर हालत में पूरी तरह गंगा जी के इम्बैकमेंट को सही कर रहा है। जहाँ जहाँ रिंग बांध बनाने की जरूरत है वहाँ रिंग बांध बनाएंगे और नया स्ट्रेच बनाएंगे।
0: इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आज पटना में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रदेश के 11 जिलों की 10,26,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। एक रिपोर्ट।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार और अरवल जिले के 50 प्रखंडों में 201 ग्राम पंचायतों की 10,26,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित इलाकों में NDRF की 7 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। साथ ही आम लोगों की सुविधा के लिए 858 नावों का परिचालन किया जा रहा है। विभाग के अनुसार बाढ़ प्रभावित जिलों में 38 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक राहत शिविर का भी संचालन किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच अब तक 12,300 पॉलीथीन शीट और 2,300 सूखे राशन के पैकेट का वितरण किया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 50 चिकित्सा शिविर, 19 वोट एम्बुलेंस और 36 पशु चिकित्सा शिविर संचालित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना गया रेलखंड पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से रेल आवागमन प्रभावित हुआ है। जट डुमरी के पास पुनपुन नदी का पानी पुल संख्या 21 तक पहुंच गया है। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया है। हमारे छपरा संवाददाता ने बताया कि माही नदी का दायां तटबंध क्षतिग्रस्त हो जाने से कई नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड से होकर गुजरने वाली गंगा की सहायक हरोहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल जलमग्न हो गई है। जहानाबाद जिले में तरधा और मोरहर नदी के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने आज बक्सर से फरक्का जलसंधि के संबंध में जन जागरूकता के लिए नीतीश संवाद की शुरुआत की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य फरक्का बराज और फरक्का जलसंधि से राज्य को होने वाले नुकसान के प्रति आम लोगों को जागरूक करना है। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। आज पटना, गोपालगंज, सीवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के नौतन में सबसे अधिक 80.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है।
4: दिनांक 6 सितंबर को राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन एवं वज्रपात होने के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बगहा की एक अदालत ने रामनगर के चर्चित विजय सहनी हत्याकांड में मृतक की सगी बहन समेत 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में एक अन्य दोषी अशोक यादव को 11 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की 2 महिला शिक्षकों समेत देश भर के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, शिक्षा को तकनीक से जोड़ने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ हुआ समझौता, 37 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। गंगा नदी का जलस्तर पटना के कांदी घाट पर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने भागलपुर और बेगूसराय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लाकी ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमा।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।

0: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
0: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध।

0: में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: रेडियो रूम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। व्यावसायिक चिकित्सक, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक श्रवण दिव्यांगता तथा नर्स। आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट pdunippd.nic.in। केंद्र, राज्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, अर्ध सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से रिक्त पदों के लिए स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत निर्देश, आवश्यक योग्यताएं, वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mhu.ac.in। दूरसंचार विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ पदों को भरा जाना है, जिनका विवरण इस प्रकार है। आशुलिपिक ग्रेड 1, वरिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक ग्रेड 2 तथा अवर श्रेणी लिपिक। नियम और शर्तें, आवेदन का प्रपत्र तथा अन्य पात्रता मानदंडों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cgca.gov.in। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कंसल्टेंट प्रशासन एवं स्थापना, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, कंसल्टेंट वित्त एवं आर्थिक सेवाएं, कंसल्टेंट मार्केट प्रमोशन और योजना कार्यान्वयन, यंग प्रोफेशनल वित्त एवं आर्थिक सेवाएं, यंग प्रोफेशनल मार्केट प्रमोशन और योजना कार्यान्वयन तथा यंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी और तकनीक। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए देखें राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की वेबसाइट jute.com। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के पद को भरने के लिए। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर इन पदों को भरने के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। महाप्रबंधक विधि पदों की संख्या 2, महाप्रबंधक परिवहन योजनाकार 1 पद, महाप्रबंधक परिवहन अर्थशास्त्री 1 पद, महाप्रबंधक पर्यावरण 1 पद, महाप्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पद तथा महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी 2 पद और उप महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी 4 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 3 1 पद, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 2 1 पद और परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 2 पद। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु में छूट, मासिक पारिश्रमिक, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया, सामान्य निर्देश और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.nccr.gov.in।
2: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
5: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज।

0: साथ क्यों नहीं आया?
1: लगता है जीवन रावण से डर गया प्रतीक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों बिहार पूर्वी राजस्थान दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
3: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
4: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
4: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
2: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
4: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
4: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
2: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रूबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
7: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
8: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
7: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
8: टेलिंग दी स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, स्ट्रीट लाइट 48

0: घंटे में ठीक नहीं हुआ तो लगेगा जुर्माना। गंडक नदी में आज फिर दिखा एक शव। शिक्षक दिवस पर 15 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। ईवीएम वेयर हाउस का हुआ निरीक्षण और अलग अलग मामलों में लगभग दर्जन भर लोगों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट ग्रामीण योजना के तहत जिले में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता और प्रगति को लेकर आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने समीक्षा की। इस दौरान संबंधित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सोलर लाइटों की गुणवत्ता, कार्यशीलता और तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिले के सभी 14 प्रखंडों में 4 चरणों के तहत कुल 33,170 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 33,070 सोलर लाइटों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इनमें से 31,635 लाइटें सीएमएस पर प्रदर्शित भी हो रही हैं। जिलाधिकारी ने शेष 1,435 लाइटों का JICR शीघ्र पूर्ण कराते हुए पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सीएमएस पर अधिष्ठापित 33,070 सोलर लाइटों में से 8 लाइटें फॉल्टी तथा 145 लाइटों में सिग्नल लॉस की समस्या प्रदर्शित हो रही है। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्य एजेंसियों के उपस्थित प्रतिनिधियों को इन तकनीकी त्रुटियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएमएस ऐप के माध्यम से प्राप्त 12 शिकायतों का 48 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करें। इस संबंध में सैंडिगो एजेंसी को छोड़कर अन्य सभी संबंधित एजेंसियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि सोलर लाइट 72 घंटे से अधिक समय तक फॉल्टी प्रदर्शित होती है तो नियमानुसार संबंधित कार्य एजेंसी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निर्धारित मानकों के अनुपालन पर काम नहीं किया गया तो ऐसे एजेंसी का भुगतान रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलर लाइट का अधिष्ठापन निर्धारित से अगर कम ऊंचाई पर पाया जाता है तो कार्य एजेंसी का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेपाल से आई तबाही के बाद गोपालगंज में भी गंडक नदी में आए दिन शव देखने की सूचना आती है। हालांकि जिला प्रशासन कई बार नदी में अभियान चलाकर शवों को लेकर जांच पड़ताल भी किया, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा अब तक कोई शव बरामद नहीं किया गया। इसके बाद आज शनिवार को भी गंडक नदी में एक शव उपलाता हुआ लोगों ने देखा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया। एमआईएम के नेता अनस सलाम ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज फिर से शव देखा गया है। प्रशासन को भी जानकारी दी गई है, परंतु काफी सड़ी गली अवस्था में शव वीडियो में दिखाई दे रहा था। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। शव को बरामद किया गया या नहीं किया गया, अब तक इस पर कोई प्रशासनिक बयान सामने नहीं आया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार राज्य शिक्षक सम्मान समारोह 2026 का पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई शिक्षकों को सम्मानित किया। इसका सीधा प्रसारण गोपालगंज में भी किया गया और यहां भी लगभग 15 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती और शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में जिलाधिकारी समीर सौरभ और जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 15 बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके उत्कृष्ट कार्य जिले के अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे अपने अपने विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचारी एवं बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाएं तथा शिक्षा विभाग के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बताया जा रहा है कि चयनित शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण तक सीमित न रहते हुए बच्चों की रुचि, समझ, रचनात्मक सहभागिता और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नवाचारी शैक्षणिक गतिविधियों को अपनाया जा रहा है। इन शिक्षकों का प्रयास है कि बच्चे शिक्षा को केवल परीक्षा की तैयारी के रूप में ना देखें, बल्कि गतिविधि आधारित, प्रयोगात्मक और आनंददायी तरीके से सीखने के अवसर प्राप्त करें। शिक्षकों द्वारा स्थानीय संसाधनों, सरल शिक्षण सामग्री, समूह गतिविधियों, रचनात्मक अभ्यास, डिजिटल माध्यमों तथा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है, जिसकी तारीफ हो रही है और ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों और एसओपी के अनुरूप आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी समीर सौरभ, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों वेयर हाउस में भंडारित बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपीएटी मशीनों का भौतिक सत्यापन किया गया। मशीनों के सुरक्षित भंडारण, रखरखाव और सुरक्षा मानकों का बारीकी से अवलोकन किया गया। साथ ही वेयर हाउस भवन की सुरक्षा व्यवस्था का भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण किया गया। आज अलग अलग मामलों में पुलिस ने लगभग दर्जन भर आरोपियों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें उत्पाद पुलिस और स्थानीय थाना की पुलिस ने भी कार्रवाई की। सर्वप्रथम उत्पाद पुलिस ने माझा थाना क्षेत्र में पथरा नेशनल हाईवे पर छापेमारी करते हुए एक कार से 77 लीटर से अधिक शराब को जब्त किया। इस मामले में बेतिया के रहने वाले इंदल पासवान को गिरफ्तार किया गया है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भागी पट्टी चेक पोस्ट पर भी कार्रवाई करते हुए दो शराब तस्करों को 19 लीटर से अधिक शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी मिथिलेश यादव बरौली थाना क्षेत्र के बेलसड़ गांव का रहने वाला है और दूसरा आरोपी राकेश चौधरी या मीरगंज के अमठा खेम का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके शराब को जब्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर माधोपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त राजा भगत को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी माधोपुर थाना क्षेत्र के सरया नरेंद्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर थावे थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को उसके घर से ही गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी आदित्य यादव, पिता राम नरेश यादव, साकिन थावे विदेशी टोला का निवासी है। पुलिस ने इसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने भी 106 लीटर देशी शराब के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक बाइक और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम मटिहिनिया पटेल नगर बांध पर इन शराब तस्करों को पकड़ा। इनके पास से 106 लीटर से अधिक शराब मिली है। पकड़े गए आरोपियों में राजकुमार कुशवाहा पिता परमानंद कुशवाहा, लवकुश कुमार पिता चंद्रिका महतो, ये दोनों डुमरिया थाना नौतन जिला बेतिया के निवासी हैं और एक आरोपी आफिल अंसारी पिता रजाक मिया, यह खेम मटिनिया थाना बिशंभरपुर का निवासी है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इनकी गाड़ी और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर हत्या के प्रयास में ही फुलवरिया थाना की पुलिस ने गोसाई माझा गांव में छापेमारी करते हुए अभियुक्त चंदेश्वर गिरी को गिरफ्तार कर लिया। ये स्वामीनाथ गिरी के पुत्र हैं और इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक और प्राथमिकी अभियुक्त गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी मुन्ना राम पिता अर्जुन राम साकिन सवनही ब्रिज थाना गोपालपुर का निवासी है। इस पर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। आज इसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। NH-27 पर बालू लदे हुए ट्रकों की अवैध पार्किंग से आम जनता को हो रही समस्याओं के लिए अभियान चलाया गया। नियमित जाम की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। परिवहन विभाग की टीम ने बंजारी मोड़ ओवर ब्रिज से लेकर थावे बाईपास तक सड़क के किनारे अवैध रूप से खड़े बालू लदे हुए ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 15 से अधिक ट्रकों पर जुर्माना किया। टीम ने अरार मोड़, हजियापुर मोड़ और अरार मोड़ ओवर ब्रिज के नीचे भी कार्रवाई की। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि पार्किंग से यातायात प्रभावित होने के साथ हादसे की आशंका बनी रहती है। तेज रफ्तार वाहनों के खड़े ट्रकों से टकराने का भी खतरा रहता है। इसको देखते हुए सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नियमित अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर ट्रक एसोसिएशन के साथ भी पदाधिकारियों ने बैठक की है और इन समस्याओं में ट्रक एसोसिएशन के सहयोग करने की भी अपील की गयी। मानसून के 3 माह बीत जाने पर भी राज्य में वर्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जून से लेकर अगस्त तक राज्य में केवल 667.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से लगभग 40% कम है। औरंगाबाद, सिवान, लखीसराय और खगड़िया को छोड़कर राज्य के सभी 34 जिलों में वर्षा की भारी कमी देखी गई, विशेषकर जहानाबाद में 61% और शिवहर में 60%। भारत मौसम विज्ञान विभाग पटना के अनुसार सितम्बर माह में राज्य के उत्तरी भागों में सामान्य से कम जबकि राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य तथा सामान्य से अधिक वर्षा होने का पूर्वानुमान है। सितंबर माह में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के सामान्य से अधिक रहने की भी संभावना बताई गई है। आज जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की अध्यक्षता में पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक की गई, जिसमें नगर अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिला अध्यक्ष ने सभी अध्यक्षों को सर्वप्रथम अंग वस्त्र और पुष्प माला से सम्मानित किया। प्रदेश कार्यालय द्वारा अनुमोदित प्रखंड कमेटी, नगर कमेटी और नगर पंचायत कमेटी के साथ साथ मनोनीत पंचायत अध्यक्षों, वार्ड अध्यक्षों की अनुमोदित सूची भी सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी अध्यक्षगण एक सप्ताह के अंदर 15 सदस्यीय पंचायत कमेटी एवं 10 सदस्यीय वार्ड कमेटी बनाकर जिला कार्यालय में जमा करें। आगामी सितंबर माह में ही गोपालगंज में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद नीतीश कुमार तथा बिहार के वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का आगमन होना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गयी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गोपालगंज पुलिस ने 97 लोगों को उनका चोरी हुआ या गुम हुआ मोबाइल फोन बरामद कर आज उन्हें वापस किया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कार्यालय में बुलाकर सभी लोगों को उनके मोबाइल फोन वापस दिए। सभी लोगों ने गोपालगंज पुलिस का आभार व्यक्त किया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्ट्रीट लाइट 48 घंटे में ठीक नहीं हुआ तो लगेगा जुर्माना। गंडक नदी में आज फिर दिखा एक शव। शिक्षक दिवस पर 15 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। ईवीएम वेयर हाउस का हुआ निरीक्षण और अलग अलग मामलों में लगभग दर्जन भर लोगों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द। अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: रियाज रेट्रो।
11: पता है इस हफ्ते मैं खुद हैरान हूँ कि अचानक ये ख्याल आया कैसे और कहाँ से। इट हैपेंस ना कि सोचते सोचते आप कुछ ऐसा सोच बैठे जिसके बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाए। मैं आपके साथ रिया, और अगर आप मुझे पहली बार नहीं सुन रहे तो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा एपिसोड को इस विश के साथ खत्म करती हूँ, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। और मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि चार सीजन्स में मैंने लव पे ज्यादा और ड्रीम पे थोड़ी कम बातें की हैं। पर उस दिन यूं ही बैठे बैठे मैं ख्वाबों के बारे में सोचने लगी कि कहां से आते हैं, क्यों हम सपने बुनते हैं, क्यों जागी आंखों से आने वाले दिनों के कैनवस को रंगते हैं, क्यों वो ख्वाब फिर हमारे पंख भी बन जाते हैं और पैरों से बंधे पत्थर भी, हमें हिम्मत भी देते हैं और हमें तोड़ भी सकते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण भी बन सकते हैं और दिल को चूर चूर तोड़ने का सामान भी। What is it that decides कि हमारा सपना हमारी ताकत बनेगा या कमजोरी?

0: सच है क्या, सब सच है।
1: मुकेश जी की आवाज फिल्म जागते रहो से, सलिल चौधरी का संगीत बोल शैलेंद्र। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। तो फिर ख्वाब अपने आप में एक मन लुभाने वाला झूठ है या सब सच है? आर आवर ड्रीम्स बिगर देन आर रियलिटी? या हमें सपनों को भूलकर हकीकत का सामना करना चाहिए? होशियारी इसी में है। रियाज रेट्रो। इस सवाल का तो किसी के पास जवाब नहीं, बट कमिंग बैक टू मेरी टेढ़ी मेढ़ी सोच, जिस सोच से मैं खुद ही सोच में पड़ गई, तो वो ये थी कि शायद हमारे सपने हमें उठाते हैं या गिराते हैं, ये इस एक बात पर कायम है कि हमारा सपना बड़ा है या हम खुद ज्यादा बड़े हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कुछ सपने सिर्फ हमारे ईगो को फीड करने के लिए बने हैं। मेरा नाम होगा, मेरी शान होगी, पैसा, रुतबा, शोहरत सब मेरे होंगे। अगर मेरा ये स्टार्टअप कामयाब हुआ, या मेरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ कमाए, या मेरा बिजनेस चल पड़ा, या मेरा गाना हिट हुआ, ये ख्वाब शायद हमें थका देते हैं जिंदगी को कोई मायने देने की बजाय, क्योंकि ये ख्वाब एक्चुअली उस स्टार्टअप या उस बिजनेस या मूवी या गीत के बारे में तो है ही नहीं। ये ख्वाब सिर्फ अपने बारे में है। धंधा या काम तो सिर्फ जरिया है खुद की तरक्की तक पहुंचने की सीढ़ी। एंड दोज ड्रीम्स कैन बी एग्जॉस्टिंग, क्योंकि उनके पंख नहीं है, उनमें सिर्फ भार है एंग्जाइटी की। आई गेस एम्बिशन और ड्रीम में यही सबसे बड़ा फर्क होगा, है ना? एम्बिशन अपने लिए होती है, अपनी तरक्की, अपना नाम। उसके लिए रास्ता कोई भी हो लाजमी है, कितने भी पापड़ बेलने पड़े, कोई भी चक्कर चलाना पड़े, सब जायज है। आई एम नो एक्सपर्ट, बट ख्वाब तो मैंने भी बहुत देखे हैं, और इतना तो मैं पर्सनल तजुर्बे से कह सकती हूं कि उस सपने का जब कोई अपना वजूद होता है तभी उस पर पंख लगते हैं। पर जब वो ख्वाब पूरी तरह से अपने बारे में ही हो, चाहे उस नाम और शोहरत तक पहुंचने का जरिया सोशल वर्क ही क्यों ना हो, तब वो ख्वाब बोझ बन जाता है, भारी पड़ने लगता है। क्या लगता है आपको, बड़ा कौन, हम खुद या हमारा सपना?

0: आज के एपिसोड में तो पक्का अपना एक छोटा सा सपना, इनफैक्ट सपनी इस गुलजार जी वुड से पूरा करने वाली हूँ मैं। ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड मदर दोनों को एक साथ पेश कर ही दूंगी आज मैं तो। क्या बकवास कर रही हूँ मैं, समझाती हूँ। शाहरुख खान का एम्बिशन के बारे में गाना फ्रॉम द एम्बिशन ड्रिवन फिल्म यस बॉस, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है, ये आपने सुना अभिजीत की आवाज में, संगीत जतिन ललित, बोल जावेद अख्तर। एंड उसके बाद एक और SRK का ही गाना फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से, विच वॉज द रीमेक ऑफ राज कपूर आइकॉनिक श्री 420। अब श्री 420 में जो गाना आशा जी की आवाज में था, नादिरा पर पिक्चराइज्ड, उसी गाने के सिचुएशन में बना ये गाना जो आपने अभी सुना, तू मेरे साथ साथ आसमां के आगे चल, पिक्चराइज्ड ऑन अमृता सिंह, आवाजें अलका याग्निक, साथ कुमार शानू, संगीत जतिन ललित, बोल महेंद्र देहलवी। इस गाने को मैं मानती हूँ 90s का ग्रैंड चाइल्ड, और जो ग्रैंड मदर है यानी 50s से श्री 420 का ओरिजिनल गाना, वो भी थोड़ी देर में ही सुनेंगे। मेरी एक छोटी सी टेढ़ी सी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी एक ही एपिसोड में दोनों गीतों को चलाने की इच्छा।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
0: रियाज रेट्रो। अब सपने ऐसे छोटे से टेढ़े मेढ़े से भी तो होते हैं ना। हर ख्वाब लाइफ डिफाइनिंग या करियर डिफाइनिंग हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका लाइफ लॉन्ग सपना था कि वो रेड लिपस्टिक पहनने की हिम्मत कर पाए। मैं जो अमूमन रेड लिपस्टिक लगाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था व्हाट्स द बिग डील, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसको लगता था ये करने के लिए बहुत हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और फाइनली उसको अपने लेट 30s में ये कॉन्फिडेंस आया। और जिस लड़की ने आज तक कभी एक सेल्फी नहीं ली थी, उसने फेसबुक और इंस्टा को सेल्फी से भर दिया। इट वॉज दैट सिग्निफिकेंट अ मोमेंट फॉर हर। सो क्यूट ना। तो क्या ये सपना सिली था? पता नहीं, हम कौन होते हैं जज करने वाले। एक जर्नी तो थी ना अपने आप में, अगर सोचकर देखो तो। व्हाट शेप्स अ शाय, सेल्फ इफेसिंग वुमन्स एक्सपीरियंसेस for her to finally be able to wear red lipstick. Will we ever truly know? रही बात मेरे इस ख्याल की जो मुझे आया उस दिन, कि ख्वाब बड़ा होता है या हम बड़े होते हैं। मैं सोच रही हूँ क्या मैं उसको ढंग से कम्युनिकेट कर भी पा रही हूँ यहाँ पर आज। मतलब क्या है मेरा एग्जैक्टली जब मैं पूछती हूँ ख्वाब बड़ा कि हम। चलिए ये दो गाने सुन लीजिए, एक जिसका जिक्र मैंने अभी किया, दी ओरिजिनल ग्रैंड मदर श्री 420 से यानी मुड़ मुड़ के ना देख, शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, आशा जी के साथ मन ना दे, और उसके बाद एक और बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा सपना, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, जस्ट

0: रफी साहब और लता जी की आवाजें, एसडी बर्मन, हसरत जयपुरी। सारे ख्वाब इतने साफ, इतने पाक, इतने नेक दिल हों तो जिंदगी कितनी आसान हो, है ना। हालांकि इस फिल्म में देवानंद को काफी पापड़ बेलने पड़े थे, बट इवेंचुअली ये फिल्म थी उसी जर्नी के बारे में। शुरू में राकेश यानी देवानंद का कैरेक्टर बहुत सेल्फिश रीजन से घर बनाना चाहता है तेरे घर के सामने, पर उसका मकसद बाद में तब्दील हो जाता है, प्यार की तरफ मुड़ जाता है। सो यू सी, ड्रीम्स कैन चेंज देयर पर्पस टू।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: रियाज रेट्रो।
0: मैं आपके साथ रिया, और मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आई गेस एक सपना वो होता है जिसमें अपने से परे कोई बात हो, चाहे वो सोशल वर्क की फील्ड में हो, गरीब बच्चों को स्कूलिंग मिले, देश में अमन शांति बनी रहे, शोषित औरतों को न्याय मिले, या किसी और फील्ड में ही सही, मेडिकल साइंस को हाईटेक इक्विपमेंट की सप्लाई मिलती रहे, या मैं कोई ऐसा स्टार्टअप बनाऊं जिससे हर हाउसवाइफ को घर बैठे फ्रेश ग्रोसरीज मिले, या मैं वेस्टर्न फैशन वर्ल्ड में इंडियन टेक्सटाइल्स को प्रोमिनेंस दिलवाऊं। आप समझ रहे हैं ना, वो ख्वाब किसी भी इंडस्ट्री या फील्ड ऑफ वर्क में हो सकता है, पर वो खुद से बढ़कर है। खुद की तरक्की हो सकती है, पर वो तरक्की मेन फोकस नहीं है, बाई प्रोडक्ट है वो सक्सेस। और एक और टाइप का ख्वाब जो सिर्फ और सिर्फ उस तरक्की के पीछे भागता है, उसी के लिए रात जागता है, तब ख्वाब नहीं, हम बड़े होते हैं और वो ख्वाब सिर्फ हमारा गुलाम। इस टाइप के सपने के सर पर एक ही मुकुट होता है, एंड दैट्स नॉर्मली मनी और एट द मोस्ट पर्सनल फेम। वैसे भी ये दोनों गो हैंड इन हैंड। ओहो, हाउ एम आई साउंडिंग प्रीची? मैं कोई सोशलिस्ट मैसेज नहीं दे रही यहाँ पर सच में कि पैसा बुरी बला है, बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत पसंद है पैसा, सीरियसली। पर कहीं तो देखा मैंने कि ऐसे सपनों में सुकून कम और एंग्जाइटी ज्यादा होती है, वो दिल को उड़ान कम और गुर्दे को पत्थर ज्यादा देते हैं।

0: You know, I seriously wish I didn't sound like such a ज्ञानी माता. I do love money. I really do. मुझे कोई दिक्कत नहीं है अमीरी से, सच कह रही हूँ. खुदा एक बार अमीर बनाकर तो देखो. I will take to it like a duck to water. I promise. दिक्कत है उन जरियों से, उन रास्तों से जो पैसे तक ले जाते हैं हमें. सच यार, अगर मेहनत करके, अच्छा काम करके, किताबें लिख के, रियाज रेट्रो होस्ट करके अमीर बनना मुनासिब होता तो मैं पैसों को सच गले लगा लेती. बस वर्क हार्ड, चेज योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन, लिसन टू योर हार्ट एंड अर्न मिलियंस. हाय, काश कि ये मुमकिन होता, पर नहीं होता है धत्तरी की.
1: रियाज रेट्रो, रियाज रेट्रो, ओनली ऑन गाना.
0: मैं आपके साथ रिया, और सच कह रही हूँ मैं. हम चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, अपने दिल से काम करें, जी जान लगा दें उस ख्वाब के पीछे जो हमारी नींदों को भी रंगीन करता है, और पैसा उसका बाय प्रोडक्ट हो, नेम या फेम अपने आप ही आ जाए व्हाइल वी आर फोकसिंग ऑन डूइंग गुड वर्क. पर ऐसा नहीं होता है. पैसा अपने आप में एक सपना होना होता है, तभी आता है, वरना नहीं आता है. मुझे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बोली थी एक बार. एंटरप्रेन्योर तभी बनो अगर पैसे से प्यार हो. किसी और मोटिवेशन से कभी एंटरप्रेन्योर मत बनना, क्योंकि वेल्थ जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन अपने आप में एक कला है. तुम्हारा पर्पस अगर कुछ भी और हो, कि इस इंडस्ट्री में अच्छा काम करना है, या क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, या वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या सिस्टम को बदलना है, तो फिर बॉस किसी और के मुलाजिम रहकर ही करो ये सब जहां तक हो सके. एंटरप्रेन्योरशिप तभी सक्सेसफुल होगी अगर पैसा और पैसे बनाने की कला से लगाव हो. तो किसी भी और मकसद से बिजनेस खोलोगे तो डूबोगे. वाओ, व्हाट डू यू थिंक? क्या ये सच है? आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? मेरा ट्विटर हैंडल @MissRiaMukherjee, MSRIYAMUKHERJEE. स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप भी रहे होंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? इज इट फाइनली ऑल अबाउट मनी हनी? और उन सपनों का क्या फिर जिनको हम जागी आंखों से देखते हैं और लगता है कि रेनबो के एंड में वो पॉट ऑफ गोल्ड सोना नहीं, सोने से भी बेशकीमती है. एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, अक्वायर्ड प्राइड, एक खामोश गर्व अंदर से कि हाँ, कुछ किया जो करने निकले थे. वो कुछ भी हो सकता है, अपना छोटा सा कैफे या बेकरी खोलना, अपनी फिल्म बनाना, किताब लिखना, मरीजों का इलाज करना, एक मजबूत ब्रिज बनाना, घर में हमेशा सबको मुस्कुराता देखना. द ड्रीम, वो सपना जो हमसे, हमारे अहम से बड़ा है, वो सपना बहुत छोटा भी हो सकता है, पर वो फिर भी छोटा तो नहीं होता.

0: हम कहां, ताल कहां, सम कहां, तुम कहां, हम कहां, तेरे कर तुम, नान कर तुम, तेरे कर तुम, नान कर तुम, हम तुम, नतासात, ठिपाता, लताफात, पताफात, मरकत, करामत,
1: ताते चिता, ताते चिता, ताते चिता, ताते चिता, थैया, थैया, थै, तकतदुम, तकतदुम, तकतन्या

0: गुलजार ने लिखा है ना ये गाना, यस इट्स पॉसिबल, क्या आप भी ना, उनको बस एक डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। इतने मस्त मजेदार गीत भी लिखे हुए हैं उन्होंने। जैसा कि वो खुद कह चुके हैं हमारे ही एक पुराने इंटरव्यू में, जरा मेरे चेहरे से चश्मा उतार के तो देखो। फिल्म गोलमाल, आवाजें बाप और बेटा यानी किशोरदा और अमित कुमार, म्यूजिक आरडी बर्मन, सपने में देखा एक सपना। उससे पहले फिल्म नौकरी से किशोर कुमार और साथ में उषा मंगेशकर, छोटा सा घर होगा बादलों की छाओं में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, ब्यूटीफुल जेंटल बोल शैलेंद्र के, और संगीत अनमिस्टेकेबली सिग्नेचर स्टाइल सलिलदा।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।
3: रियाज रेट्रो।
0: एक बात बताऊं, मैंने कुछ क्रिएटिव लोगों को सुना है ये कई बार कहते कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लेगेसी विद माई वर्क। बहुत फालतू लगती है मुझे ये बात और अभिमान से भरी। लेगेसी शायद वही बनाते हैं जो लेगेसी के बारे में सोचते नहीं। आई डोंट थिंक सत्यजीत रे या मदाम क्यूरी या अल्बर्ट आइंस्टाइन या रविंद्रनाथ टैगोर ये सोचकर अपना काम करते रहे कि इससे देखो लेगेसी बन रही है। वो तो दिल जान तन मन प्राण से बस अपनी सच्चाई को रोज जीते रहे और लेगेसी बनती गई। ठीक उसी तरह जैसे मुझे लगता है एन अवार्ड शुड बी समथिंग दैट इज गिवन टू यू व्हेन यू आर लुकिंग द अदर वे। आप अपने काम में मग्न हो और उस काम को देखकर कोई आपको सराहे, वो होता है अवार्ड। जिसके लिए जद्दोजहद करनी पड़े, असल काम से भी ज्यादा मेहनत जब उस काम को मान्यता दिलाने में लग जाए, फॉर्म भरना, लॉबिंग करना, प्रेशर डालना, नेटवर्किंग करना, सेल्फ प्रमोशन, पीआर और मार्केटिंग करनी पड़ जाए, अगर उसको जीतने के लिए, तो वो अवार्ड नहीं महज प्राइज है, कॉम्पिटिशन में जीता हुआ प्राइज, उसको बस इनाम कहें, पुरस्कार नहीं। मैं थी आपके साथ रिया। अपने सपनों को संभाल के रखिए, सर्दियों में कोट पहना के रखिए, गर्मियों में पंखा झेलते रहिए, उनको स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाकर रखिए। पर हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए शायद कि सपने का अपना एक वजूद रहे, वो हमारे अहंकार की गुलामी ना करने लग जाए, हमारे घमंड का शिकार ना बन जाए। ख्वाब बड़ा हो और हम उसकी छत्र छाया में पलते बढ़ते रहें, शायद असली खुशी उसी में है। और शायद मैं उसी बेगरज ख्वाब की ही बात करती हूँ जब जब मैं कहती हूँ डेयर टू ड्रीम डेयर टू लव।

0: You were listening to Riya's Retro.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। एक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7

0: जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो घड़े हुए निकले।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रूबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चर्नी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated, with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
3: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defence production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said Sri Ram College of Commerce, SRCC,

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today, being Saturday, we'll be taking calls from you on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries.
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रवजी 90.4 FM पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से. आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं. सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर.

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: ए शंभु बाबा, अरे आजकल के सिचुएशन देखो तनी हई, आंगनबाड़ी में बड़ा कुछ पोषाहार बांटा था लेकिन मौ खा जातारी सब।
1: ओए बबुआ, गवा गाई आंगनबाड़ी स्कूल खुल गई बा, में खिचड़ी बनता।
0: हाँ।
1: लेमन चूस मिलता।
0: लेमन चूस?
1: हाँ।
0: अरे बाप रे, कोई चूसा नहीं आगे ना
1: आए बबुआ, हम जाइले तो कहला से ए बाबा ई लड़का सब के बताई।
0: अच्छा रहुआ के ना
1: तहरा ना भेटा,
0: बुढ़ारी में खाए तो नस बैठ जाई। हाय हाय हाय आहा, अरे बड़ा गजन होता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बुझला
1: नौ सुनता फ्रीक्वेंसी पर
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: हमारे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजोले बड़े है भगवान।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी बहुत बहुत स्वागत
2: नमस्ते।
1: जी नमस्ते,
2: अनिल बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी, कैसे हैं?
2: कैसी हैं?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जन्माष्टमी हार्दिक है, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
2: गाना हमको सुना दीजिएगा, वीर गति मूवी का एक गाना है, आप हम आपकी निगाह में कुछ है गाना है।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सबसे पहले आपको और आशीष सोनी जी को, मनोरमा जी को, सोनू जी को, आमे से बोला भैया को, पछेड़ा से आमे से रामा जी भैया को, पछेड़ा से बोला भैया को, दुबई से इरफान भैया को, और लुधियाना पंजाब के प्रमुख भैया को, अहमद अली भैया को, बाकी जितने भी सुन रहे हैं सबको।
1: तो फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, कर याद उसको।

कभी लगे प्यारा जैसे साजन।

पागल हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, हर याद उसको हर पल। ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा।

0: मुश्किल में किसी को याद करो, लम्हा अपने आप मिल जाएंगे। मुश्किल में किसी को याद करो, लम्हा अपने आप मिल जाएंगे। वक्त निकालो मिलने की, बहाना अपने आप मिल जाएंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: कमरा नसीब, डिस्ट्रिक्ट सिवान, जिले बकरी सुल्तान से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: हम तो बढ़िया हैं, अपना सुनाइए, आप कैसी हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ।
0: नहीं,
1: आज नाश्ता नहीं किए हैं, आज जन्म।
0: अच्छा, आज है तो घर परिवार।
1: जी, घर परिवार में सब कोई ठीक है।
0: हमने टाइम असल में देखा, नहीं था टाइम देखा कि बारह बारह हो गया। कॉले नहीं लगाया, जल्दी लगाऊँ मैं। देखिए लग भी दिया, धूप हो रहा है, बारिश हो रहा है नहीं?
1: हाँ, बारिश तो दिन में या रात में एक बार हो ही जा रहा है।
0: अच्छा, इधर तो हो ही नहीं रहा, दिल्ली में बारिश नहीं हो रहा।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, उत्तराखंड में सौ बारिश हो रहा है और नेपाल का तो हालात बहुत डाउन है, वहाँ
1: तो पूरा डाउन है।
0: हाँ, इधर बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी है, समझिए कि 4 नंबर हो गया, ठंड आने वाला है, जल्दी आएगा।
1: जी जी।
0: और बाकी सब ठीक ठाक है आपका?
1: हाँ हाँ जी, सब कुछ ठीक है। आप सब
0: ठीक? ठीक जी, सब बढ़िया है। आपका नाम क्या हुआ?
1: मेरा नाम भारती है।
0: देखिए, अपना नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार।
1: नहीं,
0: आपको तो पहचान लिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो जो नई आरबीआई है वो भी शो चलाती है क्या?
1: मनोरमा जी?
0: हाँ
1: हाँ, वो भी चलाती हैं कभी कभी।
0: वो कौन शो चलाती?
1: ये यही वाला।
0: अच्छा, वही वाला। अच्छा, यही वाला।
1: वो भी आती हैं, जुड़ती हैं मेरे साथ, कभी कभी बैठती हैं।
0: अच्छा अच्छा, मतलब ट्रेनिंग में। तो आप लोग बस दो ही लोग है ना अभी फिलहाल?
1: हाँ हाँ,
0: सोनू भाई है, वो दो रात को करते हैं
1: जी,
0: उनका दिखती है रात में, में नहीं है। एक है रिंगीन में, जो भी आगे आए, ये तो सबसे बड़ी बात है, हमसे जो भी हमसे।

0: लक्ष्मण जी
1: हमको बहुत अच्छा लगा।
0: आप बात ही इतना अच्छा कहते हैं
1: और मैं बहुत पुराना लिस्नर भी हूँ
0: जी जी।
1: और रेडियो रेडियो बहुत पुराना लिस्नर हूँ मैं। मुझे 2009 में इसकी स्थापना हुई, 2010 में मैं जुड़ना शुरू किया। हेलो को इसके लेकर मैंने हर कार्यक्रम में जुड़ता ही था। अंताक्षरी, भोजपुरी, प्योर वॉइस ऑफ चॉइस, और कितने लिस्नर हमारे दूर हो गए, चले गए। पहले कहा अब काम काज में लग गए, फिर शादी ब्याह हो गया। रेडियो में एक फायदा है कि दोस्ती पहचान हर चीज का लगाव होता रहता है।
0: जी जी, नए लोग आते रहते हैं।
1: हाँ, नए लोग आते हैं, पुराने हो जाते हैं, फिर नए आते हैं। ये तो सिलसिला चलता रहता है। और जानती है भारती जी, बात है कि सिलसिला अच्छा भी है, व्यवहार हर इंसान से बनाए रखना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: लगाव अपना रखना चाहिए। मैं बहुत अलग टाइप का हूँ मैं बातचीत। हमको देखिए, मेरा एक अंदर स्थिति है, हम आप हमसे अच्छा से बात करिएगा, मैं भी करूँगा।
0: जी जी।
1: और हमको तीन लोग एकदम पसंद नहीं है, एक तो घमंड करने वाले, एक मतलब से रखने वाले, और तीसरा गलत करना। ये तीन लोग हमको एकदम पसंद, हम इन लोगों को पसंद नहीं, और इन लोगों से हमसे जमता ही नहीं हमसे जमते जमता। और तभी बाकी सब ठीक
0: है। जी जी, बाकी तो ठीक है
1: जी। तो आज हमको गाना, आज कव्वाली सुना,
0: तो बता दीजिए कव्वाली कोई।
1: अपने अपने माँ बाप का दिल ना दुखा, ये ला कव्वाली सुना दीजिएगा। हाँ, और डेडिकेट है सबसे पहले तो आपको और आयशा, सबनम सिद्दीकी, अब्बास, सबीना, रोशनी कुमारी, इन्नी सतुआ, समीर आलम, गुलाम हुसैन, अहमद अली अख्तरी, और शाहजहां, रुखसार, हेना, हबीरा, भास्कर, वर्जू, मुकेश, उमा शंकर, दिवेंद्र, दिलीप राम, और जितने लिस्नर सुन रहे हैं, छूट गए, सबको सुना लीजिएगा। और योर बस से मेरे साथ खत्म नहीं हुआ है, किस दिन कॉल किया हमको याद भी नहीं है। हमको उतना याद नहीं रहता है, क्या करेगा भारती जी, हजार टेंशन है।
0: ये तो है, टेंशन तो के पास।
1: देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान उस लाइफ का है उसका भी टेंशन है, जो उस लाइफ का नहीं है। टेंशन किसी को छोड़ता नहीं,
0: ये तो बात है।
1: किसी का कुछ का है तो किसी का कुछ का है, वो रहता है, वो छोड़ता है। रानी और अकवा को भी डेडिकेट है, वो तो जुड़ती है। रानी जी तो जुड़ती है। मेरा कहना आपका, मैं जिन ऐप डाउनलोडिंग किया था डिलीट हो गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया था ना, उसको फिर मैं करा दूंगा। आज सुनूंगा
0: मेरा शनिवार को चलेगा।
1: आपका शनिवार को चलेगा? आज कौन चलेगा, बुध वाला?
0: नहीं मनोरमा जी, आज रिकॉर्ड करेंगे इस हाउस के।
1: ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। फिर मंडे को मिलेगा भारती जी।
0: हाँ
1: ओके, नमस्कार
0: नमस्कार रेडियो रंजन।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी थैंक यू मैडम जी, हमको गाना सुनना है।
5: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
6: ये है अपना सर झुक ना जाने कौन सी पल, ये मौत की अमानत है, हर पल के गमों से लगा के जी और ना सर झुका के जी।
5: जी जी, और ये गाना किसी को सुनवाना है।
6: जी अपना रेडियो FM का जितने भी प्रेमी आदमी है, रेडियो रिमझिम सुनने वाले उन सबको
5: जी,
6: और अपना आपका जो स्टाफ है उन सबको भी, आप भी सबको डिले करना, ठीक है।
5: जी जी,
6: ये गाना मिलेगा सुनने के लिए कि कल?
5: ये आपको शनिवार इनको मिलेगा सुनने को,
6: शनिवार शाम को है।
5: जी जी,
6: चलिए ठीक है।
5: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हथुआ से। हथुआ, हाल चाल है मैम?
1: मेरा, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: ठीक हैं।
1: अभी क्या हो रहा है?
0: बैठे हैं दुकान पे।
1: क्या कर?
0: दवा का दुकान है।
1: अच्छा,
0: गोपन मंदिर गेट के सामने। जी,
1: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: कोई भी भोजपुरी गाना सुना दीजिए मैम।
1: गाने की बोल बता दीजिए। मतलब कौन सा गाना सुनना चाहते हैं उसकी लाइन बता दीजिए।
0: भोजपुरी कोई गाना बजा दीजिए, खेसरिया का।
1: अच्छा, खेसारी लाल जी का।
0: जी, जो ये वाला कि जो मेहरारू से जीतल बा, तो जो गाना है तो वाला बजा दीजिए।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सुनवाना एक है हमारे दोस्त अर्जुन।
1: जी
0: जी, और अर्जुन इरफान, उसी को सुनवाना है।
1: ओके, प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमिशन 90.4 एफएम।
0: जी जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: ए जी, कहां

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते।
5: नमस्ते,
6: कैसे हैं?
5: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता हो गया?
5: नहीं, आज व्रत है।
6: हाँ, जन्माष्टमी और सब बढ़िया है ना?
5: जी,
6: रेडियो रिमझिम टीम सभी सही है ना?
5: जी जी, सब कोई सही है। आप सबकी दुआ है।
6: यह है गॉड का दुआ है।
5: आप सब ठीक है ना?
6: हाँ हाँ, बढ़िया है। अभी रेडियो तो ही सुन रही हूँ।
5: अच्छा, तो कौन सा गाना सुन रहे हैं आपको?
6: रेडियो रिमझिम में कॉल
5: लगाना। अच्छा,
6: बहुत मुश्किल से लगा है।
5: अच्छा जी, आज कौन सा गाना सुनना है?
6: गाना जन्माष्टमी का ही सुनवा दीजिए।
5: अच्छा, कुछ गाने की बोल पता है आपको?
6: हाँ हाँ, है ना, कान्हा का जन्म आया है, घर घर में खुशियाँ लाया है।
5: और गाना किसी को सुनवाना है?
6: गाना सभी सुनेंगे, जितने सुनने वाले हैं, आप सुनेंगे, मैं सुनूंगी।
5: ओके, तो फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक्स।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम
0: जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैं सुधीर कर रहा हूँ, कोई गंगा जिला देवघर झारखंड से। मैं
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी ठीक हैं।
1: और आप रेडियो रंजन से पूरे टीम सब कैसे हैं?
0: जी जी सब कोई ठीक है।
1: जी जी
0: आप सब ठीक हैं?
1: जी बिल्कुल ठीक हूँ मैम, पूरे परिवार के साथ परिवार से कुशल मंगल है।
0: ओके तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की को बधाई मैम, आपको पूरे रेडियो के परिवार को बधाई और देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई मैम।
0: जी जी आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी आज पुरानी फिल्म है, खानदान फिल्म है मैम, उसका गाना सुना दीजिए मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: गाने की बोल बता दीजिए।
1: जी के बोल है, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तकी तेरी ज्वाला।
0: ओके और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी सबसे पहले मैं आपको और जितने भी आरजे हैं के सबों को और हमारे कुछ दोस्त भी हैं, मदन कुल हैं, विष्णु कुल हैं, भोलानाथ कुल हैं, राजकुमारी हैं, श्रीधर प्रसाद यादव, रोहित कुमार सिंह, विष्णु प्रसाद यादव, राजीव रोशन, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके तो फिर गाना प्ले करते हैं। जी मैम
1: थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: जी मैं मनन बोल रहा हूँ कपरपुरा से।
5: जी
6: कितना कॉल अटेंड कर लिए अभी तक?
5: अभी तो लगभग 4-5।
6: तो और सब सुनाइए, और सब खैरियत है?
5: हाँ हाँ, और सब खैरियत है।
6: चलिए खैरियत है। तो आज तो अष्टमी है ना आप लोग का, तो आप कॉल पे बैठी है, आप लोग का पर्व होना चाहिए।
5: नहीं तो वो तो व्रत रहते हैं ना, और शाम को जाके मनाते हैं, जो करना होता है शाम को होता है।
6: अच्छा, ये व्रत शाम को होता है ना?
5: शाम को। इसमें
6: आज हमको उम्मीद नहीं था, अष्टमी को लेकर को उम्मीद नहीं था कि आप कॉल अटेंड कर पाएंगी या नहीं।
5: नहीं कोई बात नहीं, इसी में सब चीज है।
6: नहीं तो कोई गाना सुनवाइए, मैं तो खाली लिए सुन लोग को तो गाना ही सुनने के लिए फोन करता है जी, और कुछ तो लिए नहीं करता है। क्योंकि हम रेडियो यू ने रिमझिम है ना, हमको मजबूर कर दिया है ये आपका रेडियो रिमझिम जो है, हमको मजबूर कर दिया है हर वक्त जो है रेडियो रेडियो रेडियो है ना। हाँ, हम तो ज्यादातर मोबाइल से नहीं सुनते हैं, हमारे पास रेडियो है। रेडियो को लेकर कुर्सी पर बैठ जाता हूँ या कोई काम करता हूँ तो उसी के हालत में मैं सुनते रहता हूँ। और आप लोग से जो है इतना प्यार मिला है, जो कि आपसे बातें आदमी इतना कॉल लगने के बाद 10-15 मिनट आदमी इतना मेहनत करता है कॉल लगाने के लिए, क्यों? आप लोग से थोड़ा सा मोहब्बत है तो आदमी दो बातें कर लेता है, दूसरा और कुछ नहीं है मैडम इसमें, बस प्यार जिंदाबाद और रेडियो हमारा जिंदाबाद। तब मैडम आज कौन सा गाना सुनवाइएगा,
5: बता दीजिए कौन सा सुनेंगे?
6: तो गाना तो सब बजता है, ये सब सुना हुआ गाना बजता है ना। आप कोई गाना सुनवा दीजिएगा मैडम
5: आपके नाम का।
6: मेरा नाम तो बेनाम तो है ये है, मैं मनान इसमें रखता हूँ रेडियो स्टेशन में, मेरा नाम है, लिखा पढ़ी के नाते पे जो है वो मनान बोला जाता है, और ओरिजिनल लोग गांव वाले लोग बोलते हैं बेनाम बेनाम। बेनाम के नाम तो कोई गाना है?
5: देखना पड़ेगा।
6: हाय हाय हाय हाय, यार आओ मैं बेनाम हो गया।
5: अच्छा,
6: ऐसा एक गाना है अमिताभ बच्चन का शायद है, तो वही गाना सुनवा दीजिएगा।
5: ओके,
6: यार आओ मैं बेनाम हो गया।
5: हाँ
6: गाना है ऐसा।
5: हाँ, यार आओ यार इसको मैं मारा, मैं बेनाम हो गया।
6: हाँ बेनाम हो गया। हाँ आपको भी सब गाना सुन सुन के सब मालूम हो जाता है। चलिए ठीक है मैडम, सुनवाइए यही गाना।
5: ठीक है फिर, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
6: ओके थैंक यू।

0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: 94.4
0: एफएम में।
1: जी साथ में हर ग्राम बना थे।
0: हाँ जी, कैसे हैं जी? कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं, आप अपना बताएं।
0: ठीक है,
1: आज तो जन्माष्टमी का त्योहार है ना?
0: जी।
1: आज सुबह में इसीलिए हेलो फरमाइश नहीं चल रहा था 9 बजे से।
0: जी, जन्माष्टमी का शायद सॉन्ग ही बज रहा है।
1: जी जी, और सब खैरियत ठीक है आप लोग के तरफ का? बारिश बस का?
0: हाँ हाँ, अभी तो मौसम काफी अच्छा बना हुआ है।
1: हम लोग के तरफ कल बारिश हुआ था, आज तो अभी तक बारिश नहीं हुआ है, रात में भी नहीं हुआ है।
0: जब तो चल रहा था ना उस टाइम, उस समय बारिश हुआ था हम लोग के भी तरफ कल।
1: चलिए तो गाना सुनवा दीजिएगा।
0: बता दीजिए,
1: गाना थोड़ा सा गा देते हैं।
0: बिल्कुल गाइए।
1: खत लिखना है पर सोचती हूँ, खत लिखना है पर सोचती हूँ, ये कैसे लिखूँ मुझे तुमसे मोहब्बत।

0: गई है। और सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ मनोरमा जी को भी और जितने रेडियो रिमझिम के सदस्य हैं सभी को और जितने रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को निषाद मास्टर की तरफ से सुनवाना चाहता हूँ।
1: तो आप तो खाना भी करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 94.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM।
5: सलामकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: मैम आज तो भीड़ नहीं है, दम लगाए फोन लग गया।
6: भीड़ तो है पर अभी जैसे कॉल कटा है वैसे आपका आया।
5: जी जी, बीच में रिचार्ज खत्म हो गया था उसीलिए कॉल नहीं जा रहा था।
6: अच्छा जी
5: जी, वो दुकान है ना मेरा, वहाँ पर दुकान पर चल जाता है उसीलिए, घर पर रहते हैं तो करते हैं रिचार्ज वाला।
6: अच्छा, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले रिकॉर्डिंग होता है कर लीजिएगा, कोई बात नहीं।
5: ठीक है, तो गाना सुना दीजिए मैम।
6: बता दीजिए
5: अपना मन से सुनाइए आज।
6: हम अपने मन से, हम तो अपने मन से डेली सब कुछ सुनाते हैं, आप बताते तो बहुत अच्छा लगता।
5: नहीं मैम, अपना मन से, मेरा याद नहीं है।
6: अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
5: सब कोई को जो जो जुड़ा होगा।
6: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 94 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
1: जी नमस्कार, और आप जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: चलिए, खाना ना लगता है कि आज स्टार्टिंग है क्या? खुशी ही तो जीवन है। और बताइए भारती जी, मौसम कैसा है पहले ये बताइए अपनी तरफ?
1: अपने तरफ तो मौसम डेली काफी अच्छा बन रहा है।
0: बारिश हो रही सुबह है?
1: बारिश भी हो रहा है बीच बीच में।
0: तो मैंने देखा कि सिवान रेलवे स्टेशन के पास जो है ना पूरा पानी भरा हुआ है, और बाढ़ का कहर जो है जगह जगह पे निचली इलाका है वहाँ पे अपना कहर मन ढा रहा है।
1: हाँ हाँ, अब धीरे धीरे असर दिख रहा है हर जगह पे।
0: जी, मैंने परिस्थिति जो जितना खराब है बाढ़ को लेके, आदमी के जीवन जो अस्त हुआ पड़ा है, तो क्या कहा जाए, देख ही इंसान अलग ही अपना अपना दिमाग भाव को जा रहा है। वो लोग कैसे अपनी परवरिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे पानी के लिए लोग तरस रहा है कि खेतों में पानी हो जाए तो धान की फसल अच्छा हो गई।
1: ये तो बात है,
0: नाश्ता पानी तो अब एक बड़ा रात नहीं होगा। और सब ठीक है ना?
1: हाँ,
0: हाँ। मनोरमा जी कहाँ हैं?
1: वो भी हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो हम तो 11:30 से मैं ट्राई कर रहा हूँ और जाके लगा है। मैंने कहा कि 11:30 के बाद ही लगेगा, लगता है।
1: हाँ, वैसे भी होने ही वाला है।
0: वहाँ से मैंने गाड़ी निकाला, वहाँ से कॉल करते करते कनॉट प्लेस आ गया। कनॉट प्लेस में आके सवारी उतारे हैं, तो अब जाके लगा है। अच्छा। बताइए, इतना टाइम हो गया। आज एक नायक भोजपुरी गाना लेके आए हैं।
1: बताइए
0: कि मर्दा पर के ताकि गर्दा उड़ा दे शिल्पी राज।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सबसे पहले आप हैं, मनोरमा जी हैं, गुड़िया जी हैं, सविता जी हैं, बबीता जी हैं, निशा जी हैं, रोशनी जी हैं, कमरान भाई हैं, ओकरा बाद स्पेशल सोनू भाई हैं, और वीरेंद्र भैया जी हैं, और तमाम जितने रेडियो रिमझिम सुनेंगे उन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट है। तो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इसलिए कि और भी लोग कतार में खड़े होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। तो आपको भी नमस्कार, मनोरमा जी को और तमाम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दिलीप राम, नाम तो पूछे ही नहीं थी।
1: नाम तो पता है आपका, दिलीप राम दिल्ली से।
0: जी, इसलिए कि नाम आप पूछे ही नहीं थे तो हम ही बता दिए हैं कि दिलीप राम दिल्ली से।
1: जी जी, आपकी वॉइस ही सब कोई पहचान जाएगा कि हाँ आप ही हैं।
0: तो नमस्कार,
1: रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी दिन शुभ।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: राधे राधे।
2: जन्माष्टमी
3: की परिवार के पूरे टीम को।
2: जी जी, आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: तो और आप लोग कैसे हैं?
2: जी हम सब भी ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं?
3: बस चाय पी रहे हैं।
2: अच्छा, आज व्रत है कि नहीं?
3: नहीं, हम लोग क्या व्रत रखेंगे। हम लोग व्रत रखेंगे तो गाँव में थे तो व्रत रहते थे, और परदेश में आने के बाद में कोई वो नहीं रहता।
2: कोई बात नहीं,
3: गाँव में कहे है जो पूर्व परदेश गए देवता पितर सबसे गए। हाँ, तो इसको हम लोग याद रखे है, ये जो कहा है एक नंबर की बात बोला है।
2: वो तो है।
3: हाँ, तो यहाँ अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे?
2: ये तो बात सही है बिल्कुल आपकी।
3: व्रत भी है, व्रत भी रखना जरूरी है। वैसे हो काम की नहीं खाने पर भी चल जाएगा, तब तो व्रत करना सही है। और आप लोग सही है ना?
2: जी हम सब ठीक है।
3: चलिए, तो आज फरमाइश यही रहेगा, जन्माष्टमी के ही अवसर पे एक बढ़िया सा कोई सोहर बजा देना।
2: अच्छा।
3: जिसमें राधे कृष्ण का हो चर्चा सोहर की, कोई सोहर बजा देना अपने पसंद से आज।
2: जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
3: पूरे जितने लिसनर सुनने वाले हैं सबको, और आप तीनों को, सोनू सर सुनेंगे वो भी सुन लेंगे, डायरेक्टर सर वो भी सुन लेंगे।
2: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रिमझिम 90.4 FM।
3: चलिए ठीक है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
0: मेरा हाल ठीक है।
1: क्या हो रहा है
0: अभी तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
1: उस समय से कॉल लगा रहे हैं, मैं कॉलेज
0: तो कॉल पे बातें हो रही थी ना।
1: अच्छा, पहचान रहे हैं कि नहीं?
0: गणेश जी
1: जी, और सब बताइए।
0: मेरा ठीक है, आप करिश्मा जी का बताइए कैसी हैं?
1: करिश्मा जी थोड़ा तबियत डाउन चल रहा है।
0: अच्छा,
1: सर्दी खोखी बुखार ऐसा ही हो रहा है। सभी लोग तबियत खराब है मेरे घर में, पापा के, मम्मी के, करिश्मा की।
0: तो होगा ही, इसीलिए एक बचा के थोड़ा रहना पड़ेगा और क्या।
1: नहीं तो बारिश में थोड़ा टाइम चलता है, करिश्मा नहा लेती है बारिश में।
0: नहीं तो बाद में नहीं नहाना चाहिए, ये थोड़ा ठंडा गर्म इधर लगता है तो तबियत जल्दी ही खराब होता है।
1: मनोरमा दीदी कहाँ थे?
0: वो भी अपने काम में लगी है।
1: तो मनोरमा दीदी रिकॉर्डिंग नहीं करती है क्या?
0: करती है,
1: बात करने भेज।
0: हाँ तो 12 बजे के बाद उनसे बात कीजिए, हो जाएगा।
1: फिर अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर 12 बजे के बाद क्यों करेंगे?
0: हाँ, मतलब आपको बता दे रही हूँ, फिर कभी करना होगा तो कर लीजिएगा।
1: नहीं तो आप करना होगा तो रिकॉर्डिंग मान लीजिए एक बार हो गया तो दोबारा करेंगे, दिक्कत होगा ना। उसका बोली बहुत अच्छा लगता है ना।
0: हाँ हाँ, बहुत मीठा है।
1: इसीलिए
0: तो आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: गाना मेरे को सुनना है, आप तो जन्मअष्टमी है तो इसी के गाना बजा दीजिए, राधा कृष्ण जी के।
0: कौन सा गाना
1: आपका पसंद से जो भी सुना दीजिए।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, देवी को, पूरा रेडियो रिमझिम को सुनाना है।
0: का गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: कैसे हैं मैम?
6: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
7: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं? परापरी दोनों आदमी लेती हैं लोग का कॉल।
6: हाँ हाँ, अभी तो मेरा चल रहा है, बाद में उनका चलेगा।
7: अच्छी है ना? तो आज हमको सॉन्ग सुनवाइए विवाह मूवी से, खुदा की कसम खा के कहते हैं हम। हेलो।
6: हाँ
7: हाँ, खुदा की कसम खा के कहते हैं हम, और सुनवाना है सबसे पहले आपको
6: जी,
7: और मुनर्मा मैम को भी, सोनी मैम को, अख्तरी को, कमरान रशीद को, राघव जी को, असलम भाई को, और फिरोज भाई को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
6: ओके, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: थैंक यू मैम। योर वॉइस योर चॉइस चलेगा क्या मैम?
6: जी जी बिल्कुल चलेगा।
7: हाँ चलिए, आज मेरा नंबर है, अगले जुम्मा को किए। अब मेरे तरफ से सभी भाई बहनों को जुम्मा मुबारक।
6: जी जी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
1: मैं विनय कुमार गौरव तहसील कुवाया जिला शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और अभी सुन रहे थे तो अचानक आपका चैनल आ गया रेडियो रिमझिम।
0: जी
1: 4-5 दिन हुए लगभग। अच्छा लगा, आप लोगों का नंबर बताया वो भी नोट कर दिया हमने, लगाते रहे फोन भी लग गया।
0: अच्छा जी
1: और अच्छा लगता है कार्यक्रम आपका।
0: चलिए बढ़िया, आपको अच्छा लगता है इसके लिए धन्यवाद।
1: और हमारा अनुरोध आप लोगों से है कि कृपया हिंदी भी गाना है कुछ अधिक सुनवाया कीजिए, क्योंकि भोजपुरी हम लोग इतना समझ में नहीं आता है ना, हम लोग उसी के हैं।
0: आधे घंटे के लिए भोजपुरी गाना चलता है वो शाम को
1: इसी फरमाइशी कार्यक्रम में ना,
0: और इसमें जो फरमाइश करते हैं तो उनकी पसंद का होता है, तो अब हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। मान लीजिए आप जो आपकी पसंद है वो आप बताइएगा तो मैं तो सुनाऊंगी।
1: अच्छा अच्छा, आप क्या कुछ का कार्यक्रम होता है उसका बताएंगे टाइमिंग क्या रहता है? सुना था हमने एक बार।
0: हाँ हाँ, उसका भी टाइमिंग है।
1: उसका प्रसारण तो सुबह में होता है, कोई टाइम है?
0: 12 से 1:30 बजे के बीच में होता है रिकॉर्डिंग।
1: और प्रसारण उसका कब होता है?
0: उसका प्रसारण संडे को ही होता है, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगता है और बढ़िया है।
0: जी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: हमारी फरमाइश है एक फिल्म है अर्पण,
0: और गाने की बोल
1: गाने के बोल है तौबा कैसे है नादान, आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत है रजनीकांत प्यारेलाल का, गीत आनंद का है। और यहाँ पर हमारा कहना है इस गाने में जो नायिका है वो घुंघरू के माध्यम से मन की कथा अपनी कहती है, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं मतलब हारमोनियम वगैरह प्ले करता हूँ और संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरीके से अच्छा लगता है हमको इसे सुनना और बजाना, गाना सब अच्छा लगता है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: नहीं, सभी को सुनवाना है, जितने लोग सुनते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, सभी को सुनवाना है।
0: बिल्कुल जी, तो आपका गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार,
6: कैसे हैं मैम?
5: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: हम भी अच्छे हैं मैम। और सब आरजे लोग कैसे हैं?
5: जी सभी आरजे ठीक हैं।
6: तो मैम गाना सुनवा दीजिए।
5: जी बता दीजिए कौन सा?
6: बोल राधा बोल तुमने ये क्या किया,
5: और ये गाना किसी को सुनवाना है?
6: रेडियो रिमझिम के जितने भी श्रोता है सभी सुनेंगे।
5: अच्छा, और ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम है।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते। आज आपको कितना बार ट्राई करना पड़ा?
0: आज तो बहुत कम ही करना पड़ा।
1: ये सब तो अच्छा है कि आज ट्राई नहीं करना पड़ा ज्यादा। क्या हाल है आपकी?
0: ठीक है भाई, ठीक है। आपने बताइए।
1: लोग भी ठीक है।
0: तो मौसम कैसा है आज का उधर?
1: मौसम तो काफी सुहाना डेली बन रहा है, कहीं अच्छा लग रहा है।
0: और तो पानी आ ही गया होगा नदी में?
1: पूरा पानी आ गया है,
0: पूरा फुल हो गया है। और सब बताइए।
1: और सब ठीक।
0: आज कृष्ण भगवान का बजा दीजिए।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: कोई सा अच्छा जो हो बजा दीजिएगा।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: पहले नंबर आप सुनिएगा, जो सुनने वाले हैं सब।
1: अच्छा, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए। 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: चित्रगुप्त सिद्ध चालीसा रोमार्थ प्रस्तुत करते हैं KK सिंह, KK रिकॉर्ड मास्टर बशारत को।

0: कर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।